0: वॉक टॉक
1: रेडियो। जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम नहीं बढ़ाते। अगर आप कहीं जा रहे हैं और सोचे कि बहुत दूर है और वहाँ के लिए आप निकल ही ना पाओ, तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम ही सही अपने एम की तरफ बढ़ाते हो, तो धीरे धीरे करके रास्ता पार हो ही जाएगा।
2: Tune in for a better life.

0: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे।
1: आई वॉज नेवर दिस कॉन्फिडेंट इन लाइफ।
0: ओके, आई हैड अ फेज वेयर आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। दैट वॉज बिकॉज ऑफ यू नो जो आउटसाइड सर्कमस्टेंसेज होती हैं, जो तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे तुम बहुत यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फेस करते हो। आई वॉज गोइंग थ्रू दैट बैड फेज ऑब्वियसली। After, you know, 2 years of going through that phase, I realized that, oh, where is that charm that was in me? You know, something is missing. I have stopped talking. I have stopped going out. Why? Then I understood that. And उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई. And then, you know, I traveled throughout that year. मैंने उस year में 10 जगहें इंडिया में travel करी. You know, to sort of get back my confidence. And उसके बाद I understood that, you know, जो भी outside circumstances थी, जो which were, you know, pulling me down, they could no longer affect me after that 1 year. And then I started, you know, getting back on the track, meeting people, doing some things जो मुझे अच्छी लगती थी, doing events, going out to different places and working with different people, and उनसे सीखा मैंने बहुत कुछ। मैंने 12th तक science पढ़ी, उसके बाद मैंने mass communication किया, उसके बाद मैंने events किया, ठीक है? तो I think I had enough backups को shun away करना, and then I came to this conclusion that I have to do this. And I am meant to see the operations of things. So, अगर आज की डेट में आप पूछे मेरा बैकअप प्लान क्या है, I technically don't have a backup plan. But if I have to do something, I know I can do operations very well. Operations of any company, of any job, I can do that very well. Because मैंने एक master operations वाली field में काम किया हुआ है, जो events है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ operations देखने होते हैं। तो if I can do this, I can see the operations of any place and any business. Walk Talk Radio.

0: एक इंसान के अलग अलग मूड्स होते हैं। कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी नर्वस होते हैं तो कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जब हम म्यूजिक सुनते हैं ना, कोई भी गाना सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसी म्यूजिक के मूड में चले जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक। हेलो, हाय, नमस्कार, दिस इज आरजे गौतम और आज मेरे साथ हैं एक और गौतम, गौतम थापा। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो इनकी आवाज जरूर सुनी होगी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू गौतम इन वॉक टॉक रेडियो।
1: थैंक यू सो मच।
0: कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके?
1: बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, सो थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, बट हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है, अभी फीलिंग गुड है।
0: तो उस नर्वसनेस को एक म्यूजिक का फील देते हैं और गाने से शुरुआत करते हैं।
1: श्योर।

0: बात है गौतम, क्या गाया है।
1: थैंक यू सो मच।
0: मुझे भी खुशी हो रही है, मजा आ गया मतलब सुन के।
1: अरे थैंक यू सो मच।
0: तो आपने जैसे अभी हिंदी गाना गाया
1: जी,
0: तो ऐसी और कितनी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप गाना गा लेते हैं?
1: मैं इंग्लिश सॉन्ग्स भी गाता हूँ, कुछ पंजाबी हो गए और कुछ सूफी हो गए। थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ आजकल, जो हमारी कम्युनिटी लैंग्वेजेस हैं, कुछ गढ़वाली गाने प्रिपेयर कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि फरमाइशें काफी आती रहती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कुछ गोरखाली सॉन्ग्स की फरमाइशें आती रहती हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस चल रही है आजकल।
0: आप गिटार तो बजाते ही हैं?
1: हाँ जी।
0: साथ में और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजाते हैं या आपको आता है?
1: थोड़ा बहुत कीबोर्ड प्ले कर लेता हूँ मैं, बाकी गिटार मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट है। अकोस्टिक गिटार ही प्ले करता हूँ ड्यूरिंग माई परफॉर्मेंसेज एंड ऑल। और अभी रिसेंटली 2 सालों से मैंने अपना बैंड फॉर्म किया है। तो एक बैंड, फुल बैंड में आपको पता ही है कि 4 लोग होते हैं, एक वोकलिस्ट होता है, लीड गिटारिस्ट होता है, बेस गिटारिस्ट होता है और ड्रमर होता है। तो बेस गिटारिस्ट की जगह हमारे पास थी नहीं, तो बेस गिटार भी आजकल मैं प्ले करके ही गाता हूँ।
0: क्या बात है।
1: तो ऐसी चीजें हैं बस।

0: जिन लोगों को दूसरे के सुनने की आदत नहीं है, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं। आपको आगे बढ़ते देखने में बाकी हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको भटकाने की। तो आपसे मेरा यही कहना है कि सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो दोस्तों, क्योंकि यहाँ टांग खींचने वालों की कमी नहीं है।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: एक आर्टिस्ट के लिए ना उसका पहला गाना बहुत ही स्पेशल होता है।
1: हाँ जी।
0: तो आपको कुछ याद आ रहा हो आपका पहला गाना आपने लिखा हो, गाया हो, या कोई भी मेमोरी हो ऐसी?
1: जी, पहला गाना जो मैंने कंपोज किया है, मेरा खुद का सॉन्ग है, जो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो ये खुला आसमां जो है उस गाने के बोल हैं। तो ये गाना मैंने बहुत पहले, आई बिलीव बैक इन 2004 मैंने ये गाना लिखा था, तो कभी मौका मिला नहीं, कंपोज भी खुद ही किया था बीच में, क्योंकि कभी हम लोग इस फील्ड में थे नहीं पहले म्यूजिक में। म्यूजिक में मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, पर हाँ जब आया हूँ तो बड़े अच्छे तरीके से ही आया हूँ। तो तब मैंने इस गाने पे और काम करना शुरू किया, तो जो पुराने लिरिक्स थी उस गाने की वो भी थोड़ी सी मॉडिफाई करी इस टाइम के हिसाब से। तो दैट सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, गाने का नाम है ये खुला आसमां।
0: जैसे आपने अभी म्यूजिक में आने की बात करी
1: जी,
0: तो ये म्यूजिक का शौक, ये सिंगिंग का शौक, ये आपने सिर्फ एक एज अ शौक करा है या इसकी आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है?
1: जी, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है। मेरे गुरुजी हैं पंडित मुरलीधर जगुड़ी जी, तो वो मेरे ही स्कूल में म्यूजिक टीचर थे, तो उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि मुझसे म्यूजिक सीखो। तो मैंने 6 साल का विशारद किया है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, वोकल सीखे हैं, मतलब वोकल सीखे, पर उसके बाद मैं प्रोफेशनली कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि वही आपको पता ही है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो घर से आपको प्रेशर होता है कि पहले पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई के बाद फिर नौकरी करो तो वो वाला प्रेशर था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली ये सब करने के बाद मैं आया म्यूजिक की फील्ड में। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग, 4 साल मैंने नौकरी करी। नौकरी के दौरान मैंने USB ट्रैवल किया, मेरी कंपनी ने मुझे बाहर भेजा, मतलब वेल सेटल्ड जॉब थी। फिर मैंने वापस आके दोबारा देहरादून में वापस आया, फिर मैंने MBA किया, MBA के बाद भी मैंने 2-3 साल नौकरी करी। पर जब एक पॉइंट आ जाता है आपकी लाइफ में कि नहीं यार, ये चीज़ के लिए मैं बना नहीं हूँ, एक आपको हिट मिलता है कि मतलब ये चीज़ ना आप नहीं कर पाओगे, फॉर अ लॉन्ग रन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बचपन से ही शौक था म्यूजिक में आने का। ठीक है, कॉलेज लाइफ में भी हम स्टेज शोज में परफॉर्म करते थे, तो सोचते थे कि यार अब स्टेज वर्क ही करना है। अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती थी, पर क्योंकि नौकरी में इतना व्यस्त होते थे कि आपको नहीं मिलता था इतना टाइम कि आप जाके परफॉर्म भी करो। तो धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप हुई। 2018 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे म्यूजिक ही करना है। तो अपने आप को प्रिपेयर करा मैंने 3-4 महीने काफ़ी, क्योंकि जब आप स्टेज शोज करते हो, जब आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, तो आपको एक स्टैमिना चाहिए होता है,
0: बहुत बहुत चाहिए,
1: राइट? आपको कम से कम 2-2.5 घंटे या 3 घंटे आपको परफॉर्म करना है।
0: बिल्कुल।
1: तो आपके वोकल कॉर्ड्स, वोकल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप 3 महीने तक कंटिन्यू, 3 महीने बोल रहा हूँ सॉरी, 3 घंटे तक आप कंटिन्यू गा सके। 3 महीने इसलिए निकला मेरे मुंह से क्योंकि 3 महीने मैंने प्रिपरेशन करी थी डेली। तो उसके बाद मेरे को पहला ब्रेक जो मिला वो मुझे मिला जयपुर में। जयपुर से मेरी स्टार्ट हुई 2018 में। 6 महीने मैंने वहाँ के क्लब्स एक्सप्लोर करे, धीरे धीरे अपना बिल्डअप किया, अपने सॉन्ग लिस्ट चेंज करता रहा, क्योंकि एक टाइप के सॉन्ग्स अगर आप गाते रहेंगे तो आपकी ऑडियंस भी बोर हो जाती है। एग्जैक्टली, आपकी ऑडियंस बोर हो जाती है। फिर आपको इतने गाने प्रिपेयर करने हैं क्योंकि आपके रिक्वेस्ट बहुत आती हैं। अब कुछ रिक्वेस्ट मैं फुलफिल कर पाता हूँ क्योंकि मैंने वो गाने सुने हैं, मैं वो गाने प्रिपेयर कर चुका हूँ, कुछ कभी कभी नहीं हो पाता। फिर 2019 में मैं देहरादून आ गया, जब मुझे पता चला कि देहरादून में भी लाइव म्यूजिक का स्कोप बढ़ रहा है, बहुत सारे क्लब्स यहाँ पे खुले थे। सबसे पहला क्लब था ग्रेट इंडियन पब, जो कि आपके राजपुर रोड में है। फिर आपका टॉनिक है, जो कि आपके टूवर्ड्स बल्लूपुर रोड में है। तो टॉनिक से मेरी शुरुआत हुई थी, और अभी ऐसा है कि 5 साल हो गए मुझे टॉनिक में परफॉर्म करते करते। तो बस जर्नी वहीं से शुरू हुई म्यूजिक की, और कंटिन्यू है अभी तक।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: आपने जर्नी की बात करी और अपनी पूरी कहानी के बारे में हमें बताया, लेकिन एक ऐसा जो आप एक पॉइंट आता है जब बंदे को हिट करता है,
1: हाँ जी,
0: यार नहीं अब नहीं करनी जॉब, अब मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, तो वो इंसिडेंट या वो पॉइंट कब था?
1: ये बहुत ही एक अमेजिंग किस्सा है। मैं गया तो था बिजनेस ट्रैवल के लिए अपनी कंपनी की तरफ से। आई यूज टू वर्क फॉर एन MNC उस टाइम पे, 2016 की बात है। हम चैटानूगा गए थे, ऑफिस का क्राउड पूरा, एक प्रोजेक्ट लेने के लिए गए थे। तो 2016 में जब चैटानूगा में थे, टेनेसी एक स्टेट है US का, वहाँ पे एक सिटी है चैटानूगा। फिर चैटानूगा से हम नैशविल गए थे, विच इज़ अ म्यूजिक सिटी। तो नैशविल में, नैशविल से वैसे आपको मैं बता दूँ कि बहुत सारे सिंगर्स वहाँ से नैशविल के ही हैं, मतलब
0: जैसे जैसे
1: जैसे आपने सुना होगा एल्विस प्रेस्ली, बहुत ही 60s के जाने माने, अभी तक उनके गाने सुनते हैं, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू उनके सॉन्ग्स हैं, माइली साइरस जो कि लोगों ने सुना ही होगा काफी नाम, शी इज ऑल्सो फ्रॉम नैशविल। तो वो म्यूजिक सिटी है, वहां पे मतलब हर 10 बंदों में से 9 बंदे जो हैं गिटार बजाना जानते हैं। तो वैसी क्लब हॉपिंग चल रही थी हम लोगों की, हमारी छुट्टी थी, हम घूम रहे थे। तो एक कैरियोके नाइट था वहां पे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़े इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, गा लेता हूँ, तो मैं भी चढ़ गया स्टेज पे कि मैं भी गाऊंगा। सो वहां पे लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि यू आर एन इंडियन, हाउ कैन यू सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स एंड ऑल। तो मैंने कहा नहीं मैं गाता हूँ। तो जॉन डेनवर एक कंट्री आर्टिस्ट हैं, 60s 70s के ही हैं ये, तो उनका सॉन्ग है एनी सॉन्ग। तो मैंने जब वो एनी सॉन्ग गाया तो लोग वहाँ पे थोड़े वो हो गए कि यार ये तो बढ़िया गा रहा है लड़का,
0: इंडियन आदमी ने इतना अच्छा इंग्लिश गाया है।
1: बिल्कुल। तो वहीं उनसे, वहीं पे एक जेंटलमैन बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि यू हैव अ वेरी लवली वॉइस एंड यू शुड डू समथिंग विद योर वॉइस। तो वो बात मुझे काफ़ी हिट करी। तो नैशविल में मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार अब तो कुछ करना है, अब नौकरी ज़्यादा नहीं हो सकती है, कुछ अपना ही करना है।
0: तो नैशविल से मतलब आपने अपनी गाड़ी मोड़ ली?
1: बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से आने के बाद 6-7 महीने मैंने थोड़ा और काम किया, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में था। उसके बाद मैंने अच्छे से अपनी जॉब छोड़ी, पूरा अपना क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पीरियड होता है वो,
0: नोटिस पीरियड
1: सर्व करके मैंने नौकरी छोड़ी और फिर मैं अपनी म्यूजिक जर्नी मैंने स्टार्ट करी।
0: आपने अभी नैशविल की कहानी सुनाई हमको
1: जी,
0: तो एक गाना फिर इंग्लिश में भी हो ही जाए।
1: इंग्लिश में मैं वही गाना सुनाता हूँ आपको जो मैंने
0: बिल्कुल बिल्कुल

0: थैंक यू।
1: अब मैं समझा कि वहाँ पर आपको क्यों उस आदमी ने बोला कि भैया अपनी गाड़ी घुमाओ। आप म्यूजिक के फील्ड में इतने टाइम से हैं और काफी तरह के गाने आपने सुने होंगे, गाए भी होंगे, और इतने बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं इस म्यूजिक की फील्ड में।
0: हाँ जी।
1: तो आपका भी जरूर कोई ना कोई रोल मॉडल रहा होगा।
0: हाँ जी, मतलब मेरे तो बहुत सारे रोल मॉडल्स रहे, क्योंकि मैंने हर एक आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखा है। हर एक आर्टिस्ट की जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो ग्रैब करने की मैं कोशिश करता हूँ। बहुत सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट को मैं सुनता हूँ, एल्विस प्रेस्ली हैं, बीटल्स बैंड हैं, ठीक है, जॉन डेनवर हैं, ये तो हमारे वो हो गए। बाकी हमारे जो इंडियन वो हैं, किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, 90s का किड हूँ, तो अपने कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, इन सबको सुन के बड़ा हुआ। और मेरे जो पसंदीदा अभी के जो हैं, मतलब जिनको मैं अभी तक मानता हूँ, हरिहरन साहब हैं, सुखविंदर सिंह, उनके जैसी आवाज किसी की नहीं है, मतलब वो डिफरेंट है। और आज के दौर में अगर बात करें तो अरिजीत की टक्कर के सिंगर तो कोई है नहीं, आप सबको पता है और ये सब मानते भी हैं, क्योंकि वो उनका ऐसा जॉनर है कि वो मतलब कोई भी गाना गा सकते हैं और विद दैट ईज वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा है, तो मतलब इंस्पिरेशन मैं हर जगह से लेता हूँ, ऐसा नहीं है। सोनू निगम सर है ना,
1: उनकी जैसी आवाज भी,
0: उनकी भी आवाज जैसी कोई नहीं है,
1: कोई आवाज नहीं है।

0: रेडियो।
1: जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसको करने का तरीका कुछ अलग सा होना चाहिए। आप उस काम को कितनी शिद्दत से करते हैं, कितना क्रिएटिव तरीके से करते हैं, ये जरूरी है। और किसी भी काम को करने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। अगर खुद पर विश्वास हो तो वो काम फोकस के साथ होता है। सोचो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में कभी आपके साथ हुई हो बचपन में, स्कूल टाइम में, जहां हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने काम में होता था, फिर चाहे वो कोई खेल क्यों ना हो। इसीलिए आप कोई भी काम कर रहे हो तो फोकस के साथ करें।

0: जब ऐसे म्यूजिक की फील्ड में हम जाते हैं या कोई भी इंसान एंटरटेनमेंट की फील्ड को चुनता है तो इनिशियल डेज में काफी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आपके क्या वो चैलेंजेस थे?
1: मेरी लाइफ के तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक वेल सेटल्ड जॉब में था, मुझे

0: बहुत अच्छा ऑफर भी था, सैलरी भी अच्छी थी, जो कि हर माँ बाप को चाहिए होती है कि चलो बेटे को पढ़ाई करवाई है तो बहुत अच्छे से ये काम भी कर रहा है। तो उस समय ये डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, पर दिल से तो करना था, दिल तो मान नहीं रहा था कि अब नौकरी तुमसे होगी नहीं। तो जब मैंने नौकरी छोड़ दी थी तो मैंने 6 महीने तक अपने घर पे नहीं बताया था, मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि ये, मतलब क्योंकि मैं दिल्ली में था तो घर वालों को कोई आइडिया नहीं था इसने नौकरी छोड़ दी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जयपुर से शुरुआत करी, तो 6 महीने मैंने जयपुर में शोज करे और वो वीकेंड पे मेरे कुछ मैं अपने फेसबुक में या इंस्टा पे पोस्ट कर देता था, तो घर वालों को लगता है चलो सैटरडे संडे इसकी छुट्टी होती है तो ये अपनी
1: शौक
0: पूरा कर रहा है। एग्जैक्टली। पर जब मैं 2019 में वापस आया और जब मैंने बताया घर वालों को कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, तो आपको, आप जानते ही हैं इंडियन पेरेंट्स थोड़े से, तो बिल्कुल खफा हो गए मुझसे। काफ़ी समय तक मेरे से बातचीत नहीं हुई, बातचीत भी नहीं करी, मुझे रोज समझाते थे ये क्या डिसीजन ले लिया तुमने इस एज में, हम तो सोच रहे थे तुम सेटल हो गए हो, तुम्हारी शादी करवाएंगे। पर नहीं, मैंने सोचा था जो करना है तो अब करना ही है, क्योंकि दिल में एक बार ठान लिया था कि अब तो भाई म्यूजिक ही करना है और इसके अलावा मैं कुछ और कर नहीं सकता क्योंकि मैं इसी चीज में अच्छा हूँ। तो बस डिफिकल्टी यही थी कि घर वाले मान नहीं रहे थे, तो बहुत टाइम लगा उनको समझाने में। फिर एक डिफिकल्ट टाइम और आया था, वो तो सबकी जिंदगी में ही था, जब कोविड का टाइम आया था तो आपके पास कोई लाइव शोज की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उस समय काफी तगड़ा झटका लगा था। उस समय एक बारी के लिए दिल में ख्याल भी आया था कि यार ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कि अभी अगर नौकरी में होता तो कम से कम सैलरी तो आ रही होती। पर वही है कि जैसे कहते हैं लोग कि जहाँ चाह है वहीं राह है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: मुझे जूम शोज बहुत मिले, मैंने घर में बैठे बैठे शोज करे उसके बाद, सो आई यूज टू गेट पेड थ्रू यू नो जहाँ पे जूम मीटिंग कर रहे हैं लोग, तो जूम मीटिंग में लोग मुझे कहते थे कि आपके पास सेटअप है, मैंने कहा बिल्कुल है, तो मैं उनके लिए एक एक घंटे परफॉर्म कर रहा हूँ, वो घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। मजा कम आता था लेकिन उनके लिए वो फन था और मेरे लिए मेरी मतलब रोजी रोटी टाइप आप कह सकते हैं। तो कोविड के टाइम पे मैंने जूम में बहुत शोज करे तो ठीक ठाक चला, बहुत अच्छा समय भी नहीं था पर मैं ये कहूंगा कि बहुत बुरा समय भी नहीं था, पर कोविड के टाइम पे मुझे टाइम बहुत मिला अपने आप पे काम करने में, तो ये पॉजिटिव पार्ट था। उसके बाद तो मैंने इतने गाने प्रिपेयर कर लिए कि मतलब अब मेरे पास गानों की कमी नहीं है।
1: बैंक भर लिया
0: मैंने अपना। एग्जैक्टली।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: अभी हम लाइव रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहे थे, लाइव शो की बात कर रहे थे
1: जी।
0: तो एक स्टूडियो में रिकॉर्ड करना
1: जी।
0: और लाइव शोज करना
1: जी।
0: काफी डिफरेंस होता है
1: कि
0: आप एक कॉन्सर्ट में या लाइव शो में आप मिस्टेक नहीं कर सकते।
1: ना ना बिल्कुल भी।
0: तो लाइव शो करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं?
1: लाइव शो करने के देखिए डिसएडवांटेज तो मैं कुछ कहूंगा नहीं कि कुछ है, क्योंकि लाइव शोज में एक तो आपको क्राउड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। आप जब आप परफॉर्म कर रहे हो और आपके सामने कोई क्राउड ही नहीं है तो आपको वो फील ही नहीं आएगी, यू नो। अब हम गाते ही हैं लोगों के लिए और अपने लिए भी गाते हैं, ऐसा नहीं है, बट जब लोग सामने बैठे हों और थोड़ा म्यूजिक को अप्रिशिएट कर रहे हों, जो सुनने वाले लोग हों, तो उनके सामने परफॉर्म करने में बहुत मजा आता है। और जैसा आपने कहा कि क्या डिफरेंस है स्टूडियो और लाइव में, स्टूडियो में आप रीटेक ले सकते हैं, लाइव में आप रीटेक नहीं ले सकते, तो ये पार्ट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अपने बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा सा और बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड फ्रॉम स्कूल टिल योर कॉलेज क्या क्या आपने कराया?
1: स्कूल मेरा केंद्रीय विद्यालय हाथीबड़कला से है, फिर मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, बीएससी मैंने करा है आपका डीएवी कॉलेज से, फिर आफ्टर डीएवी पीजी 4 साल मैंने नौकरी करी है। मैंने आपको जैसे बताया कि 7-8 साल मैंने नौकरी करी है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में करी है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में करी है। पहले मैं शिपिंग कंपनी में था, फिर मैं एक स्टाफिंग कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल कंपनी थी गुड़गांव में, वहाँ पे था। तो 4 साल वहाँ जॉब करने के बाद 2013-14 में मैंने MBA किया है, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से मैं MBA हूँ। फिर मैंने बिग बाज़ार में एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम किया है, जो बिग बाज़ार यहाँ देहरादून में आया था। फिर मैं वापस नोएडा मूव हुआ, दिल्ली और नोएडा, तो EXL सर्विसेज में काम किया है। फिर ये सब जब हो गया, क्योंकि किसी भी कंपनी में मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं शायद बना ही म्यूजिक के लिए था, तो इसलिए मैं हर 2-2 साल में स्विच कर लेता था फॉर द ग्रोथ एज वेल। पर वही है कि काम में, किसी भी काम में मुझे मज़ा नहीं आया, और जब से मैं म्यूजिक में आया हूँ फिर मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं करता।
0: बिल्कुल, काम में मजा आना ना बहुत जरूरी,
1: बहुत जरूरी होता है।
0: तो जब गौतम थापा एक स्टूडेंट था या एक नॉर्मल कॉलेज का लड़का था
1: जी,
0: और जब अब आप एक फेमस सिंगर बन गए हैं, शहर में गाते हैं, लोग आपको जानने लग गए हैं
1: जी,
0: तो लोगों के नजरिए में कुछ बदलाव देखते हैं क्या आप?
1: बदलाव एज इन ऐसा कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में तो आपको बस आपके फैकल्टीज जानते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स जानते हैं, कॉलेज के लोग जानते हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने जब ग्राफेस्ट होता है तो परफॉर्म किया है, तो कॉलेज में थोड़ा बहुत फेमस हो गया था, और जब से अब यहाँ देहरादून में करता हूँ तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हूँ मैं, बट हाँ थोड़ा बहुत थोड़े लोग जानते हैं अब देहरादून में कि हाँ कि गौतम थापा इस क्लब में परफॉर्म कर रहा है, तो चलो हम इस क्लब में चलते हैं आज सुनने के लिए।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और वॉक टॉक रेडियो में मैं हूँ आपके साथ किरण। वॉक टॉक रेडियो पर जो हमारी पॉडकास्ट सीरीज है उसपे बहुत सारे अलग अलग लोग अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर और अपने बहुत सारे थॉट्स को लेकर हमारे साथ बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और इसी पर आज हमारे साथ हमारी पॉडकास्ट सीरीज में मेरे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद है उनके बारे में आपको बता दूं। इनका नाम है कृतिका गुरुंग और एक बहुत ही प्यारा सा स्टार्टअप इनका है जिसका नाम है एवांते। तो सबसे पहले कृतिका बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
2: थैंक यू सो मच किरण फॉर हैविंग मी।
1: कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: रेडियो का मतलब क्या है आपकी लाइफ में?
2: रेडियो का मतलब है टू कनेक्ट पीपल थ्रू आवर वॉइसेस, थ्रू आवर स्टोरीज, थ्रू आवर जर्नीज।
1: हाँ, सो कृतिका सबसे पहले जो है मैं आपसे ये पूछूंगी कि कृतिका गुरुंग कौन है, क्या करती है और क्या करना चाहती है लाइफ में आगे, क्योंकि जो हमारे लिसनर्स सुनेंगे उन्हें आपके बारे में अभी कुछ नहीं पता।
2: सो कृतिका गुरुंग, शी इज अ ऑर्डिनरी गर्ल हु लव्स शॉपिंग, हु लव्स क्रिएटिविटी एंड छोटे से शहर से है, छोटी सी जगह से है, डोईवाला।
1: हाय फाय, मैं पासी से हूँ।
2: पास पास वाली जगह से हैं।
1: हाँ।
2: और मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ग्राफिक एरिया हिल यूनिवर्सिटी से।
1: ओके।
2: इंग्लिश ऑनर्स, देन एमए इंग्लिश 2021 में कंप्लीट हुआ है। सो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, खाली थी और क्लासेस भी ऐसी चल रहे थे, ऑनलाइन चल रहा था, तो क्या हुआ कुछ ना कुछ चलता रहता था क्रिएटिविटी ना, कि क्या किया जाए, मतलब कुछ ना कुछ लाइक स्क्रैप बुक वगैरह हो गया या फिर कार्ड्स बनाना, ये सारी चीजें मुझे पहले से बहुत पसंद था। एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि एक आईडी बना लेते हैं, तो फिर माइंड में आया कि चलो स्क्रंची से स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रंची से स्टार्ट किया मैंने एंड उस टाइम पे मेरे जो जूनियर्स रहे हैं कॉलेज के इंग्लिश ऑनर्स के बैच के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे ना।
1: कैसा सपोर्ट?
2: उन्होंने काफी ज्यादा पोस्ट वगैरह शेयर किया, खरीदा मुझसे काफी स्क्रंचीज, तो मेरे लिए वो काफी मोटिवेटिंग था उस टाइम पे ना। अगर आप कुछ सामान बना रहे हो या फिर कुछ आपने लाके रख दिया दुकान में, आपने दुकान भी खोली, कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई कस्टमर ही नहीं है, तो एक बहुत ज्यादा ना डीमोटिवेशन टाइप का हो जाता है आपके लिए। हाँ, लेकिन आपने कुछ स्टार्ट किया एंड लोग आपको
1: अप्रिशिएट
2: कर रहे हैं, आपको आगे वो कर रहे हैं, फेमस टाइप का कर रहे हैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा करके, लेकिन हाँ वो काफी मेरे लिए उस टाइम पे मैटर करता था, उस टाइम पे अभी भी मैटर करता है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ एवांते का जर्नी।
0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो।
1: कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे ही हौसलों का बहाना लिया हो।

0: Walk Talk Radio.
1: So, जब ये स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो बिल्कुल पढ़ाई वाला है एकदम. और ये जो आप काम कर रहे हो एवांते के अंदर, वो एक क्रिएटिव साइट है आपका. तो उस टाइम पे घर वालों को ऐसा नहीं लगा कि क्या कर रहे हो, कॉलेज तो किसी और चीज की फीस हम दे रहे हैं और तुम जो चूज कर रही हो, काम कर रही हो, वो कुछ और ही है. तो उनका क्या रिएक्शन था उस पे?
2: बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफरेंट. बट मेरा ये है कि अगर मैंने कुछ चीज स्टार्ट किया है या फिर कुछ ठान लिया ना, फिर फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी बोले. तो करना है तो करना है, चाहे मैं रात के 2 बजे तक करूँ, चाहे 3 बजे तक करूँ, और मॉर्निंग में उठ के और फिर मुझे कॉलेज भी जाना पड़े ना 7 बजे. तो चलता है मेरे लिए ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है.
1: बड़ी बिंदास था आपका जो थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे, था
2: ये चीज माइंड में थी तो फिर करती गई. हाँ, पेरेंट्स बोलते थे कि कुछ जॉब वॉब का देख लो, बाकी साइड में अपना पढ़ रही थी उस टाइम पे, और कॉलेज भी फिर खत्म हो गया, और कॉलेज में कुछ प्लेसमेंट का भी कुछ आया नहीं उस टाइम पे. तो एक तरह से ना माइंड में थोड़ा डिप्रेसिंग भी हो रहा था वो साइड बाय साइड. बट एवांते मेरे लिए ना एक वो था खुद को हील करने का ना. हम किसी न किसी चीज के थ्रू खुद को हील करते हैं, कोई घूम के करता है ना. और तो मेरे लिए वो थी क्रिएटिविटी.
1: अच्छा.
2: तो उसी में मैं बिजी रहती थी, कभी उसका कंटेंट बनाने में, कभी उसको बनाने में उसी चीज को, या फिर उसको पिक्चर्स क्लिक करने में, फिर सोचने में कि अरे इसका क्या नाम रखना चाहिए, इस वाली स्क्रंची का इसको कैसे हम डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे रीच बढ़ाया जाए. तो माइंड में वो चलता रहता था. तो मैंने ज्यादा ना उस चीज को, जो चीज है नहीं उस चीज को मैंने ना ज्यादा उस टाइम पे सोचा नहीं कि जॉब नहीं है करके. तो इसी सोच के लेके मैं आगे बढ़ती गई. तो ऐसे ही अब 2 साल भी हो गए एवांते को.
1: हाँ. मतलब वो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उस बात का दुख नहीं मनाया, बट ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने आप को टाइम दिया उस टाइम के लिए कि कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं तो करने दो, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी.
0: Walk Talk Radio. Tune in for a better life.

0: या तो दिन आपके अनुसार चलता है या आप दिन के अनुसार चलते हैं। जो प्रेरित होना चाहते हैं वो किसी भी चीज से हो सकते हैं। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। शानदार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी काबिलियत बस आप ही पहचान सकते हैं।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: Walk Talk Radio.
1: कि जब आपके घर वाले आपका सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जो बाहर वाले होते हैं ना, वो बहुत बड़े हमारे क्रिटिक्स बहुत सारे आते हैं इधर उधर से, कुछ कहते हैं, लेकिन कई लोगों को ना वो चीज तोड़ देती है.
2: Like मैंने आपको बताया, मैंने स्क्रंचीज से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मार्केट में जाके फैब्रिक चूज करती थी. अगर आप कुछ अपने लिए लहंगा भी बना रहे हो या फिर नॉर्मल एक सूट या कुर्ती ले लो, तो आप कुछ फैब्रिक देख के, लड़के को होता है ना, खुद को इमेजिन कर लेती हो कि इसका ये वाला इस फैब्रिक का कि ओके इस फैब्रिक में और इस प्रिंट में और इस एम्ब्रॉयडरी में ये स्क्रंची बहुत अच्छी लगेगी.
1: एस्थेटिक सेंस.
2: हाँ, तो वो चीज था पहले से ना. बट सुनने में ये आता है कहीं से, पता लगता है कि ये ना बचे हुए कपड़ों का बनाती होगी ये लड़की, उन्हें पता भी नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं वांथे में चल क्या रहा है. बट बातें कैसे बनाएंगे ना फिर, अगर देख लेंगे तो. तो ये चीज सुनने में आती थी, तो लगता था कि भाई क्या ही, क्यों ही बोलना ऐसे लोगों से. सोचने दो उन्हें जो सोचना है, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो. सो लेट इट बी. आप जाओ, आप जिसको जो बातें करनी है करो. मैं ऐसी खुश हूँ, मैं ऐसी कर रही हूँ.
1: तो उस वक्त, अब ये तो रही क्रिटिसिज्म वाली बात, एप्रिसिएशन की बात करूँ या फिर कॉम्प्लीमेंट्स की बात करूँ आपके वर्क को लेके, लेकिन जब किसी का कॉम्प्लीमेंट आता है, जब कोई कह देता है यार बहुत अच्छा कर रही हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, तब सेटिस्फेक्शन होता है, हाँ मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ. तो वो कॉम्प्लीमेंट्स कौन कौन से थे, कहाँ से आए हो?
2: जब स्टार्टिंग में क्या हुआ, नॉट स्टार्टिंग, लास्ट ईयर की बात है, जब मैंने एक मैम है, दैट सिली वॉन्डरर करके उनका इंस्टाग्राम में नेम है, मिनर्वा मैम, उनका नाम मिनर्वा है. तो उस टाइम पे मैंने उनको कोलैबोरेशन के लिए पूछा था, तो उन्होंने पेज वगैरह चेक किया, उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कोलैबोरेट किया. और उनके मतलब जब उन्होंने कोलैबोरेशन किया, तो काफी फॉलोवर्स भी आए और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज को ना, काफी अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया अपने कोलैबोरेशन वाली रील पे. तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ना एक माइलस्टोन टाइप था. अच्छा, उस टाइम पे. हाँ. ओके, और उसके बाद चीजें काफी अच्छी होने लगी. यू नो, फैमिली फ्रेंड्स जब कुछ भी गिफ्ट विफ्ट भी हो, छोटी मोटी चीजें वो मेरे से ही आके पैक करवा रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो मेरे लिए काफी वो था, वो ओवरवेलमिंग था काफी कि ओके नाउ इवांते इज देयर फर्स्ट चॉइस, आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है सही चल रही हूँ.
1: ओके. Walk Talk Radio. Tune in for a better life.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो,
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हालात कैसे भी हों, वक्त अच्छा हो या बुरा हो, अगर आप हंसकर मुश्किल का सामना करते हैं तो यार मुश्किल भी एक दिन शर्मा के भाग जाएगी।
0: वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio.
1: आपने अभी कोलैबोरेशन की बात करी और अगर मैं बोलूं कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आइडिया से एक स्टार्टअप किया है और सोच रहे हैं कि उसको एक उस जगह तक पहुंचाएं जहां तक वो चाहते हैं, तो सोशल मीडिया के

0: साथ कोलैबोरेट कर लिया वो भी पेड कोलैबोरेशन फर्स्ट और लास्ट टाइम था वो जहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स भी बहुत दिए ठीक है और पेड कोलैबोरेशन था पैसे भी दिए लेकिन ना उसमें एक फॉलोवर आया ना उसमें कोई कुछ रिव्यू वगैरह इतना कुछ था नहीं क्योंकि उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया और वो भी चीज बार बार बार बार बोलने पे एंड जब आप बार बार किसी को बोलते फिर वो बोलते हैं कि यू आर रेस्टलेस व्हाई यू आर बीइंग सो रेस्टलेस तो हम बोलते हैं ना जैसे अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं आई नॉट से कि वो बुरी है या वो लेकिन जब आप कुछ काम कर रहे हो आप उस चीज पे प्रोफेशनली उस चीज को डील कर रहे हो तो भले वो स्मॉल बिजनेस हो या बिग बिजनेस हो आप उस चीज को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया आपको पेमेंट मिल चुकी है तो आपको वो चीज भी उतनी ही श्रद्धा से करनी चाहिए जितनी आपने बाकी चीज को किया है एंड वो चीज उन्होंने की नहीं तो वो बहुत डिसहार्टनिंग था मेरे लिए तो ये चीज भी आई डोंट नो कि कितनी आनी चाहिए उस सोशल मीडिया में लोगों को कैसे पता लगना चाहिए कि हाँ कौन फेक है कौन ऑथेंटिक है कौन रॉ है और कैसे कर रहा है अपनी चीजों को सबका अपना अपना वे है बट इन सब चीजों में बिजनेस ओनर्स को मैं यही बोलूंगी कि बहुत सोच समझ के स्टेप ले जब हम कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर्स कैसे आते हैं स्टार्टिंग में ठीक है एक टाइम पे एक वो हाइट पे भी चले जाते हैं कि बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं बट फिर वही ना जैसे हम बिजनेस में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं
1: हाँ.
0: बहुत ऊपर भी जाते हो तो फिर उसी हिसाब से नीचे भी आते हो तो वो बैलेंस करना भी है तो जब हम किसी पे स्पेंड कर रहे हैं कोलैबोरेशन वगैरह में तो सोच समझ के उतना आपको रीच आना भी चाहिए जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं.
2: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

0: betrayed you.
1: A lion will never have to tell you that he's the king of the jungle. The eagle will take its flight knowing it owns the sky. And the shark will go about casually in the ocean just making its presence. You know, friends, it's never that noise you should make that will prove your value and people will hear it. But it is the skill, it's a hardship, it's the work which you might be doing constantly and people are noticing it. You don't need to prove yourself to the other people who will always try to pull you down. But you need to continuously work on yourself. Walk on the road marked by you. That consistency and persistence is needed in your this journey. The success ultimately comes. People would follow you. People would praise you. But people would praise you for your hardship, your determination. So stop seeing here and there what people are thinking about your work, whether they're praising or pulling you down. Just go ahead.
2: हाय, मेरा नाम शुभ बिश्नोई है. मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड. आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो तीन चीजों की अगर हम बात करें, पेड़, पानी और फार्मिंग के लिए लैंड. तो पेड़ हमें देते हैं ऑक्सीजन, बिना पानी के कोई जिंदगी नहीं. और फूड की बात करें तो बिना फार्मिंग के कोई फूड नहीं. लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है, नदियों को नाला बनाया जा रहा है और खेतों पे कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब बनाई जा रही हैं. लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज हमारी जिंदगी के लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए. बिना नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ना आगे कभी जिंदगी होगी, ना ये कभी कोई जानने के लिए बचेगा कि ह्यूमन रेस या फिर एनिमल रेस करके कोई होता था. अगर हम बात भी करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तो सिर्फ बातों तक या डिबेट्स तक ही सीमित रह जाती है. अगर हम बात करें कुओं की तो गाँव में जो कुएं होते थे उनको भर दिया जाता है और उनपे जमीन बना के उनपे कब्जा कर दिया जाता है. सारी नदियों में इतना कचरा, इतना इंडस्ट्री की फैक्ट्री का कुछ ना कुछ रसायन डाल के उनको हम नालों में कन्वर्ट कर देते हैं. और खेतों की तो बात ही क्या करें, वहां हर जगह कंस्ट्रक्शन होती है. लेकिन ये बात गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा ही अलार्मिंग लगी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स निकाले और विलेजेस में वापस वेल्स या कुओं को वापस खोदना शुरू किया गया. और इसके बेस्ट एग्जाम्पल आज हिंदुस्तान में राजस्थान और महाराष्ट्र हैं, जहाँ पे वापस से कुएं खोदे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वाटर टेबल कम हो रही है और लोगों को पानी की आगे फ्यूचर जनरेशन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. एक और अगर हम बात करें कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज की तो वो माइनिंग की आती है. अब आप देखेंगे कि अगर कहीं पे भी माइनिंग होगी, चाहे वो कोल की हो चाहे क्रूड ऑयल की हो, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरियाज और कहीं पे भी रिजर्व एरियाज में होती हैं. तो ये एक और बात ये होगी कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. अगर माइनिंग होगी तो जंगल के पेड़ कटेंगे. जितनी भी हमारी माइनिंग के लिए डिगिंग की जाएगी, हमें जितनी भी हमारी मशीन्स लगी जाएंगी, वो किसी ना किसी कोल या पेट्रोल या डीजल या किसी ना किसी चीज़ पर चल रही होगी. उसके तहत हमें और पॉल्यूशन बढ़ेगा, डिफॉरेस्ट्रेशन होगा, बर्निंग ऑफ ऑयल होगा. और साथ ही साथ जब हम इस क्रूड ऑयल को माइनिंग करके कुछ भी कहीं भी ले जाएंगे, फैक्ट्रीज में उसे रिफाइन करने के लिए पोल्यूशन और होगा. और लास्ट में हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, चाहे पेट्रोल हो, हम हर दिन ट्रैफिक में जाते हैं, कहीं ना कहीं हम सभी को जाना होता है, वहाँ पे भी पोल्यूशन होगा. पोल्यूशन सिर्फ एक व्यक्ति के वजह से नहीं होता है, पोल्यूशन हम सब कर रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बनते हैं. अगर आप कहीं पे भी चाहे आप अपने उत्तराखंड के देहरादून की बात करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप देखेंगे लोगों को एक ही ऑफिस में जाना होता है लेकिन वो फोर व्हीलर से एक फोर व्हीलर में एक व्यक्ति बैठा होता है. तो उससे क्या पोल्यूशन बढ़ता नहीं है? पार्किंग की दिक्कत आती है, हर किसी को गर्मियों में छाए में पार्किंग और सर्दियों में उनकी गाड़ी गर्म रहे तो धूप में पार्किंग चाहिए होती है. नेचुरल रिसोर्सेज की बातें सिर्फ बात ना रहे, हम इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट और बच्चों के फ्यूचर जनरेशन का इंपॉर्टेंट हमें दिमाग में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करना है. हम सब सोचते हैं कि हमें अपने घर को बचाना है, घर को साफ रखना है. तो सबसे पहला घर अगर आपको मानना है तो आपका सबसे पहला घर ये धरती माता है. ये धरती है मदर नेचर जिसे आप कहते हैं. आपका घर सिर्फ चार दीवारी तक सिमटा हुआ नहीं है. आप ये सोचिए कि आप किस तरीके से नेचर को सेव कर सकते हैं और पर्यावरण के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कुछ छोड़ के जा सकते हैं. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो.
0: ये है वॉक टॉक रेडियो.
3: चलते रहिए अपने रास्ते पर. चलने में माहिर बन जाइए, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे.
0: Tune in for a better life. Tune in for-

0: स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर, बस में चलते हुए, सड़क पर चलते हुए, कहीं भी, कभी भी, क्या पता कौन हमसे किस बात पर बुरा व्यवहार करके चला जाए। तो जवाब में हम क्या करें? दोस्त अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। तो बुरे के लिए हम भी क्यों बुरा बने। आप जैसे हैं वैसे ही रहे और ऐसे ही बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: अगर जिस दिन आपने खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया ना, तो उसी दिन से आपने लाइफ को जीना छोड़ दिया। आपकी लाइफ में आपकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन एक बार जब आप दूसरों को खुद से कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो आप दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर दोगे। आपको आपके पास जो भी है आप खुश नहीं रहोगे, आप हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते रहोगे, जिसके चलते आप कभी भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, तो फिर रिमोट भी आपके हाथ में होना चाहिए। इसलिए दूसरों के बारे में सोचना या फिर खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो।
1: Walk Talk Radio। नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर, और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे, जॉइंट फैमिली। तो हिंदुस्तान बहुत चीजों के लिए जाना जाता था, जिसमें से तीन महत्वपूर्ण चीजें थी हमारी, वेल्थ, हेल्थ और फैमिली। जब ब्रिटिशर्स या इन्वेडर्स आए, वो हमें लूट के, हमारी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को लूट के चले गए, जहाँ पे हमारी वेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ा। जो हमारी हेल्थ थी, हमारी आयुर्वेद और योगा, जो पूरे वर्ल्ड या पूरे विश्व में बहुत आज भी प्रसिद्ध है, उसको खत्म करने के लिए हमें जो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी इंग्लिश दवाइयां हमारे ऊपर थोपी गई। और तीसरी चीज, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी फैमिली, ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जॉइंट फैमिलीज, और प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर की सोच डाली जा रही है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए पांच लोग हैं, तीन भाई और दो बहनें। अब उनके हस्बैंड्स भी होंगे, वाइफ्स भी होंगी, और उनके बच्चे भी होंगे, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये 25-30 या उससे आगे का, ज्यादा का एक परिवार बन जाता था। अब हर एक व्यक्ति की, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसकी एक ना एक व्यक्ति से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी, चाहे वो भाई की बहन से हो, चाहे एक बच्चे की ताऊजी से या बुआ से या चाचा से, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी और खूबसूरत होती थी, जहाँ पे वो सब कुछ खुल के शेयर कर देते थे। खूबसूरती तो जॉइंट फैमिली की एक और है, वो कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा सबके लिए इक्वल होता था, कोई अलग नहीं, कोई अपना नहीं, सब अपने होते थे, सब इक्वली ट्रीट किए जाते थे। अगर घर में शादी भी होती थी तो कुछ ना कुछ करके शादी इतने प्यार और आराम से निपटती थी कि किसी एक व्यक्ति पे बोझ ही नहीं आता था। लेकिन आज वही जॉइंट फैमिली टूटने लग गई है, फैमिलीज रिश्तेदारी में बदल गई है, जो सिर्फ आते हैं और थोड़ा बहुत काम करा के चले जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी भारतीय संस्कृति को इतना मजबूत रखें कि चाहे कुछ हो जाए, हम वो कॉन्फिडेंस और वो जितना भी हमारी स्ट्रेंथ थी वो कहीं जाने ना दें। तो क्या किया जाए कि अगर जॉइंट फैमिली नहीं है, उसे जॉइंट फैमिली फिर से बनाया जाए? तो मेरा मानना है कि महीने में, 15 दिन में एक डिनर क्यों ना किया जाए, जगह बैठकर एक किसी के हर दिन घर चूज करके वहां पे जाया जाए, डिनर किया जाए, बॉन्डिंग की जाए, ताकि आपको शेयर करने के लिए आपके भाई बहन बने। दो लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त नहीं है, मैं क्या करूं, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। आई होप ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: वॉक टॉक रेडियो। कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे ही हौसलों का बहाना लिया हो।

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर, और अब हम बात करेंगे कि आप सभी खुश रहो। तो खुशी है क्या? खुशी एक मन में होने वाली एक सुखद अनुभूति है, एक फीलिंग है जिसमें आप बस सुखी हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने रावण के बारे में सुना होगा। रावण के पास क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था, लेकिन तब भी वो सुखी नहीं था। उसने सीता माता का अपहरण कर लिया। और दूसरी ओर आप दूसरे पहलू को देखें तो हमारे प्रभु श्री राम जो राजपाट वगैरह सब कुछ छोड़ के आ गए और एक छोटी सी कुटिया में अपने एक भाई के साथ वन में रहते थे। तो खुशी कोई चीज नहीं है जो आप कहीं से लेके आ सकते हैं। लोग पूछते हैं कि मेरे को खुश रहना है, मैं क्या करूं, मैं खुश कैसे रहूं? तो खुशी एक चीज नहीं है कि आप जाके दुकान से ले आए या मार्केट से ले आए, या फिर ये कोई लिविंग की स्टाइल नहीं है। खुशी तो तब मिलती है जब आप सुखी हैं, टेंशन नहीं है लाइफ में, जैसे हैं जो है उसके साथ आप सैटिस्फाइड है। था मैंने ये कहीं सुना था कि केमिस्ट्री में जैसे हमें पढ़ाया जाता था कि जब एटम या न्यूक्लियस कुछ टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसी तरीके से जब आप दुखी होते हैं, आप टूटते हैं कहीं से, आपका मन टूटता है तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है। तो अपने आप को थैंकफुल करिए कि आपकी जो एनर्जी है इसको आप सही जगह डाल के आप खुशी के माध्यम या खुशी के रास्ते जा सकते हैं। ये एनर्जी को आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुश होता है ना, उसकी अलग ही दुनिया होती है, वो उसी में मग्न होता है। अब एक स्टूडेंट या यूथ की लाइफ में एग्जाम्स एक बहुत बड़ी चीज होती है, कॉम्पिटिशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपने पूरी मेहनत की, आप खुशी से मेहनत कीजिए, और 1% को अगर जो चीज आप जिस लक्ष्य की तरफ आप जा रहे हैं वो नहीं हो पाए, तो ये सोचिए कि आपका प्रायोरिटी क्या थी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुशियां थी। आपके पेरेंट्स के लिए भी आपका सक्सेसफुल होना जरूरी तो है, परंतु वो चाहते हैं कि आप खुश रहिए, वो पहली प्रायोरिटी रहती है। तो आप ये जान चुके हैं कि खुश रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाकी सब छोड़ के आप खुशी की तरफ बढ़ेंगे तो आपके 10 दरवाजे और खुलेंगे। तो अब आप ये बताइए कि आप खुश हैं? क्या आपको खुशियां ढूंढनी जरूरी है? जो आपकी लाइफ जैसे है, क्या उसमें सेटिस्फाइड नहीं है? जो लोगों को चीजें नहीं मिलती, क्या आपके पास वो नहीं है? मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर अभी अपने मन में जरूर ढूंढेंगे, और इसका उत्तर आज जब भी आप ये सुन रहे हैं आज जरूर ढूंढिएगा। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: कुछ बनना है तो अपने आप की तरह बनो। किसी और की तरह कोई ना कोई हर रोज यहाँ बन रहा है। तैयारी ही सफलता है।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हम बात करने वाले हैं राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। आप ज्यादा नहीं, बस 20 साल पहले देखिए, जब मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था, पुराने लोगों को ज्यादा अच्छा फील होता था, क्योंकि जब फोन नहीं थे वो अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनकी अलग हॉबीज होती थी। लेकिन जब से फोन आया है, जब से हमारे पास सोशल मीडिया और इंटरनेट आया है, तब से हमें अनयूजफुल, फेक, मोल्डेड और फैब्रिकेटेड न्यूज और इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलती, और जिसमें हमें ज्यादातर हमारी जो मेन फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें छुपा दिया जाता है। मेरा मानना है कि अगर सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, अगर इसका हम सही इस्तेमाल नहीं करें तो ये एक बीमारी है जो ड्रग से भी खतरनाक है। एक इंसान पूरे दिन सोशल मीडिया पे बस स्क्रॉल कर सकता है, बिना कुछ खाए, एक ही जगह पे बैठे हुए, एक ही पोजीशन पे बैठे हुए, बिना कुछ कंस्ट्रक्टिव किए वो बस सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर सकता है। इसका एक और एग्जांपल है, अगर आप किसी बच्चे को अपना मोबाइल दे दें और वो पूरे दिन बस उस मोबाइल पे गेम्स खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, और आप शाम को रात में उससे जाके पूछिए कि आज आपने पूरे दिन फोन यूज किया, आपने आज क्या सीखा, तो आंसर आपको एक ही मिलेगा कि कुछ नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि सोशल मीडिया का जहाँ पे हमें सही उपयोग करना था, वहाँ पे हम उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट में सिर्फ गलत प्रभाव ही हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी की पहले से और आज में बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी लाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एजुकेशन में बहुत हेल्प किया है। नेचुरल डिजास्टर्स होते थे, आपके पास सूचना पहुंच सकती है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, सरकार लोगों के पास आराम से पहुंच सकती है, आपको सही गलत के बारे में बता सकती है, डॉक्टर कंसल्टेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ जिंदगी में आसान हो गया है। इसी का अगर हम उदाहरण लें तो पहले अगर आपको ट्रेन की रिजर्वेशन करानी होती थी तो आप जाने के लिए तो यहाँ से कहीं जहाँ पे आप हैं वहाँ से करा सकते थे, लेकिन लौटने की रिजर्वेशन के लिए आपको एक चिट्ठी भेजनी होती थी जहाँ से आपको लौटने की रिजर्वेशन करानी है, वहाँ पे वो एक ट्रेन से जाती थी, दो दिन वहाँ पे अप्रूव होती थी, फिर एक ट्रेन से वापस आती थी। लेकिन आज आप विद इन सेकेंड्स आप बुक भी कर लेते हैं और उसे कैंसिल भी कर लेते हैं। आपको एक व्यक्ति, आपके माता पिता आपको सही दिशा और सही रोड दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए चॉइसेस नहीं बना सकते हैं। ये आपको चूज करना होगा कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है आज के लिए और कल के लिए, क्या आप उस सोशल मीडिया के माध्यम से या उसके सही उपयोग के माध्यम से आप अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप नेशन को कुछ वापस दे रहे हैं, जितना भी नेशन ने आपको दिया है क्या आप उसे घूम फिर के नेशन को भी कुछ दे रहे हैं, इस बात पे जरूर सोचिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी क्या रजा है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को इतना ऊंचा कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि खुदा तुमसे खुद पूछे, तुम क्या चाहते हो भाई, क्या दूं तुम्हें।

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। और आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेशन, जिसे आप पलायन भी जानते हैं। बाकी नहीं, हम अपने उत्तराखंड की बात करें जो 2000 में बनाया गया था। इसमें बहुत सारे रीजंस थे उत्तराखंड को बनाने के लिए, लेकिन उसमें से दो तीन रीजन ये थे कि उत्तराखंड एक छोटा स्टेट रहेगा, उसमें डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है और रोजगार मिलेगा, लोग पलायन नहीं करेंगे। लेकिन आज शहरी जिंदगी के आकर्षित होकर जो हमारे युवक हैं और अन्य लोग हैं उत्तराखंड के, वो पहाड़ छोड़कर शहरी जिंदगी जीने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं। वो दिल्ली जाते हैं, अलग शहरों में जाते हैं और वहां जाते ही उनके सपने टूट जाते हैं। एक छोटा सा कमरा होता है, रोजगार के लिए छोटे मोटे उन्हें काम करने पड़ते हैं, वो लौट के नहीं आते हैं, जिंदगी में वैसे ही निकल जाते हैं। पहाड़ों पर होते हैं वो ये सोचते हैं कि शहर में उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, वहां जाके उनकी कमाई अच्छी होगी। लेकिन वो एक चीज ये भूल जाते हैं कि शहरी जिंदगी में शहरी खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं, तो जितना वो पहाड़ों पे उन्हें मिल रहा था उतना ही उन्हें शहर में भी मिलता था। सरकार ने बहुत सारी नीतियां निकाली हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों के लिए, होम स्टे जैसी चीजें, छोटी मोटी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने, उन्हें प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बहुत सारी चीजें प्रयास करी है। अगर आप उत्तराखंड में ही रहें और उत्तराखंड को देखें, उत्तराखंड में क्या कुछ नहीं है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उत्तराखंड में। केदारनाथ हमारे पास है, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स हमारे पास हैं, क्योंकि पहाड़ों पर आप पे खुद का घर है, खुद की जमीन है, खेती है, अलग तरीके के रिसोर्स हैं, दोस्त हैं, एक हिम्मत बनती है, कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन तब भी हमें वो शहरी जिंदगी, जो वेस्टर्न कल्चर हमारे दिमाग में बहुत पहले डाल दिया गया था, वो अभी तक निकला नहीं है। हमें अभी भी दिखावटी रूप में शहरी जिंदगी जाना है ताकि हम बोल सकें कि मैं शहर में नौकरी करता हूँ। लेकिन वो दुख और जो तकलीफें शहर के व्यक्ति को प्लान करके जो सहनी पड़ती हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो क्यों ना हम अपने यूथ को और आसपास जितने भी, उन सभी को समझाएं। आप खुद ये सोचिए कि क्या नहीं हो सकता है उत्तराखंड में। इसे हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, और देवभूमि जिसे हम देवों की भूमि कहते हैं, तो क्या देवों का आशीर्वाद नहीं होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, इको पार्क स्टार्ट कर सकते हैं, होम स्टेज हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, अन्य चीजें हैं, आयुर्वेदों से जड़ी बूटियां हो सकती हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो आप इस बारे में सोचिए कि क्या पलायन करना जरूरी है, क्या उत्तराखंड में रोजगार नहीं बनाया जा सकता, नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आइडियाज जागरूक नहीं किए जा सकते। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Radio.
1: Hi guys, my name is Kavya और मैं अपने बारे में क्या कहूँ? I think मैं एक rural entrepreneur हूँ जो गांव में रहती हूँ, इनफैक्ट जंगल में रहती हूँ. बहुत पसंद करती हूँ भारत की कला और एक विजन है मेरा कि मैं आदिवासी जनजाति को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना चाहती हूँ ताकि उनका हेरिटेज, उनका क्राफ्ट्स बना रहे, और यही कोशिश है. सो दैट इज़ वॉट आई एम. एंड बाय एजुकेशन आई एम एन MBA ग्रेजुएट, और कभी नहीं सोचा था कि क्राफ्ट, ट्रैवल और इस तरह के गांव के इकोसिस्टम में काम कर पाऊंगी. आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स MBA बाय एजुकेशन, बट आई थिंक गॉड हैज़ बीन रियली ग्रेशियस. आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान एंड नाउ आई लिव फ्रॉम अ फॉरेस्ट इन कोरापुट इन ओडिशा. दैट्स अबाउट मी.

वो कहते हैं ना, जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं उनके सपने भी सपने बने रह जाते हैं। पर कोई बात नहीं, जो होता था अच्छे के लिए होता था।

अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। आपका स्वभाव ही आपको लोगों के करीब लेकर आता है और आपका स्वभाव ही आपको लोगों से दूर लेकर जाता है। गौरतलब करिए कि आपके होने से क्या लोगों में खुशी होती है, उनमें हैप्पीनेस आती है, लोग आप लोगों से चहक के महक के बात करना चाहते हैं या आपको देख के इग्नोर करते हैं, आपको देख के दूर चले जाते हैं। हमारे जीवन की हर कड़ी हमारे खुद के स्वभाव से जुड़ी हुई है। अपने स्वभाव को चेक करें और जब जहां जाएं अपने स्वभाव अपने व्यवहार से खुशियां बांटें। Walk Talk Radio.

आई थिंक क्राफ्ट पोटली का सफर कहाँ से शुरू हुआ, मैं ये कहूँगी 2009 के आसपास शुरू हुआ। हम सभी जब पहली जॉब में होते हैं, पहली सैलरी मिलती है, उसके बाद अपने पैशन खोजने लगते हैं, एंड तब ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था। तो आई थिंक तब मेरा ये था कि मुझे एक ऐसा, एंड तब क्राफ्ट के भी बहुत मार्केट प्लेसेस या ऑनलाइन स्टोर्स नहीं थे, तो तब मेरा ये सपना था कि यू नो आई हैव टू क्रिएट दिस वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग हैंडमेड इन इंडिया, ऐसा मैं सोचती थी। तो क्राफ्ट है और वो सब एक पोटली है, क्योंकि मेरी दादी यूज टू ऑलवेज कैरी दिस पोटली, एंड ऑलवेज शी वुड कैरी दिस मुरमुरे एंड सम नट्स, एंड मी बींग कमिंग फ्रॉम अ फैमिली वेयर माई फादर हैज 10 other brothers, sisters. So we were lots of kids, you know, in Rajasthan. So she would always have this and she would give something from her potli to kids. So I was like, okay, craft potli. And back then, wo domain mujhe mil gaya. Toh wo tab se raha. But uske baare mein, I did nothing. For 10 years, I kept working. And iski shuruaat aise hui ki pandemic aaya. And I think hum sabhi ne apne aap ke baare mein thoda kuch jana. I also understood ki jo main rural travel kar rahi thi for my fun, विद द जॉब ऑन वीकेंड्स, वो रियली ट्रैवल नहीं था। मैं वापस आती थी अपने कम्फर्ट जोन में, जॉब करती थी, सैलरी लेती थी। इट वॉज पैंडमिक दैट मेड मी रियलाइज कि इफ आई हैव अ पैशन देन मुझे उसका टेस्ट लेना चाहिए कि वो पैशन रियली है भी या नहीं, कैन आई लास्ट दैट। सो आई टुक दिस मैसिव जर्नी, इट्स कॉल्ड काव्या ऑन क्वेस्ट। थोड़ा सा अच्छा उसका गूगल अट्रैक्शन है, आप देखिएगा। सो आई टुक दिस विद महिंद्रा ऑन 2nd October. द आइडिया ऑफ काव्या ऑन क्वेस्ट वॉज दैट नॉन स्टॉप आई विल बी ऑन द रोड्स कवरिंग विलेजेस ऑफ इंडिया एंड टेलिंग देयर स्टोरीज विदाउट अ सिंगल डे ब्रेक, विदाउट फॉलिंग इल। आई थिंक आई वुड बी, आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस, आई टुक 42 कोविड टेस्ट इन 6 months ऑफ टाइम। I started this journey on 2nd October 2020 after first pandemic and ended this journey in end of May 2021 and covered non-stop without staying in hotels or taking any guides, just covering crafts of India. Early in this journey, I figured ki while I am from Rajasthan, which is like a craft hub or Kutch, I thought that the focus has to be to Eastern India, जहाँ पे बहुत सारा culture है but ज़्यादा दिखाया नहीं जाता है। तो जब मैं वहां पे गई, आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज जनवरी 2021, आई फर्स्ट एंटर्ड द लैंड ऑफ उड़ीसा। एंड उड़ीसा के हम जब भी बात करते हैं, वी जस्ट नो पुरी और भुवनेश्वर। आई एंटर्ड इन टू अ लैंड वेयर आई सॉ जेम्स कैमरून अवतार मूवी कमिंग टू लाइफ। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि ऐसे रोलिंग जंगल्स हैं, क्लाउड्स हैं, एंड उसमें आदिवासी पीपल लिव फ्रीली। इट वॉज लाइक अवतार मूवी केम इन फ्रंट। आई हैड नेवर सीन, लाइक आई हैव बीन टू लद्दाख, आई हैव बीन टू beautiful places like Spiti, Andaman, but Koraput was something else for me. And when that journey ended in June, I was like, either go back to my job in Gurgaon, which was paying me well, or do something about your life. And I had 2-3 options. So I thought, okay, ya to West Bengal mein kahin pe jaate hain, ya Chhattisgarh mein, or Odisha. Now, Odisha being very well connected by air, and generally since I also live solo, I felt it was a great opportunity for me to kind of relocate. So I relocated to Koraput and started with something really small. Craft Potli started its operations with a mere turmeric bar that has now become a case study with the Tata Institute of Social Sciences in Bombay. It was a breakthrough product in itself. First 6 months of me living from August 21, when I moved to the village, till about, I would say, October or November 21, I would just go village to village, go to Adivasi Haats on weekly basis. घूमती रहती थी, उन लोगों को लगता था ये कौन सी लड़की है, क्या कर रही है। तब मैंने डिस्कवर किया कि ईस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा हल्दी उगता है, which is not getting utilized and it doesn't go out of their own villages. So coming from the learning that I was having with my jobs, with a fashion brand that I was working before pandemic, we decided to turn that turmeric bar into a bathing bar. Now these people jinke mein hum baat kar rahe hain, wo log ek particularly vulnerable tribe ko belong karte hain, jo aaj bhi subah uth ke jungle jate hain and fruits tod ke laate hain, uske basis pe ya thoda haldi ugate hain ya kuch coffee ugate hain ya sabzi ugate hain, usi pe hi zinda rehte hain. For them that is their lifestyle. So to make them learn how to make a bathing bar was a challenge in itself. We gathered about 62 women from 5 villages. All of them belong to the Kondha tribe, and they learned in 7 days how to mix the right proportions, the right percentage, usko dry kaise karna hai. Ye sab seekh liya, lekin beche kahan?
That was the major question. So friends and family came into picture. I think every entrepreneur does that. I can say that now. So I sent these bars packed in brown paper, jo hum bachpan mein use karte the kitabe chadhane ke liye. Usse bheja and the reviews were fantabulous. It was something that I had not expected. People kept on repeating. My own relatives kept on asking. And that's where we thought, okay, let's increase the production. Thoda sa apna paisa dala and we worked on the packaging a little bit. Then it was, I think, April 2022, very recently, that a Bangalore customer reached out to us that, can you make a lot more of this bar? Like, volume aap kar sakte ho. So we said, haan, abhi humare paas 14 women actively work kar rahe hain, but we have 62 trained and we can train more people. So, yeah, and I think that was the pivot for Craft Kotli. In April 22, we started supplying to one of the United Nations agency in Guatemala in Central America. And that is where volumes came in. When volumes came in, we got some confidence to add more products to Craft Kotli and also define ourselves ki we will not be working in rural, but Adivasi belts of the country. And that was like a long story to a short question that Craft Kotli ki shuruaat kaise hui.

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए। रुकना और वापस जाना, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए।

मैं शेयर करना चाहूँगी मेरा एंट्री इंटू विलेज, क्योंकि बहुत टाइम तक लोग ऐसा सोचते थे. अभी मुझे आई थिंक मैं अगस्त 21 में शिफ्ट हुई थी फुल टाइम इंटू अ फॉरेस्ट विलेज. तो लोग पहले ऐसा सोचते थे कि ये लड़की मिट्टी के घर में रहती होगी लेकिन ऐसा नहीं है. बट बहुत टाइम लगा मुझे, तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है. जो भी आज हम काम कर रहे हैं बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू बिग स्टार्टअप्स. कई लोग मुझसे बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने एक साल में क्या किया. मैं देखती हूँ कि यू नो वन ईयर में बहुत सारे स्टार्टअप्स पिवट कर जाते हैं, बट हम लोगों का ग्रोथ हैज़ बीन वेरी स्लो एंड माइंडफुल. बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस उन सभी लोगों के लिए जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की ओर देखते हैं, कि आई थिंक स्लो ग्रोथ एंड एक्सेप्टेंस इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया. तो मैं ये बताना चाहूँगी ये इंसिडेंट कि मुझे 6 महीने लगे टू स्टार्ट माई फर्स्ट प्रोडक्ट. क्योंकि हो सकता है कि पहले आप किसी नोशन को लेके किसी गांव में आओ, वो चीज़ आपके लिए काम ही ना करे. पहले मैंने सोचा था कि मैं किसी ज्वेलरी पे काम करूंगी, बट वो नहीं वर्क किया. आई हैड नेवर थॉट कि मैं टर्मरिक पे काम करूंगी, यू नो. एंड उसके बावजूद भी लोगों गांव में जनरली भरोसा धीरे धीरे आता है, और जब एक बार

आ जाता है, फिर वो लोग आपके लिए कुछ भी कर देंगे. तो फॉर मी दैट टुक अ लिटिल टाइम, मुझे 6 months लगा टू ब्रेक दैट आइस बोलें या हम केमिस्ट्री बोलें. एंड जब वो 6 महीने का पीरियड पास हुआ एंड इट वेंट थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, चाहे आप टैटू कह लीजिए मेरी बॉडी पे, या आप जितने भी फेस्टिवल्स, या आप मेरा इंस्टाग्राम में स्टोरीज देखेंगे, तो आई थिंक इट टुक मी अ वाइल, बट जब वो एक बार वो हो गया देन इट वॉज अ इजी राइड फॉर मी, आई वुड से.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आपको हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपकी खूबियों को नजरअंदाज करके सिर्फ आपकी कमियों को ही दर्शाएंगे। हो सकता है बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, लेकिन आपको सिर्फ ये सोचना है कि दुनिया का तो काम ही है आपको बार बार गिराना, और हमारा काम है ढीठ बनकर बार बार उठ खड़ा होना। इसलिए जब जब आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाए, तो याद करिए अपनी उन तमाम खूबियों को जिनको आप जानते हैं, और करते रहिए कोशिश लगातार, और बनते रहिए बेहतर हर बार।
0: Tune in for a better life. Tune in.

0: अरे सबके बस की बात नहीं है, छोटे शहर की लड़की है, एक्टिंग में कहाँ जा सकती है। ये सब बातों को अनसुना करके एक लड़की सपनों की नगरी मुंबई जाती है। MS धोनी, रणबीर कपूर, अरमान मलिक सबके साथ काम कर जाती है। हाय, दिस इज RJ गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और यार, देहरादून की ना काफी चीजें फेमस हैं, जैसे कि मोमोज, FRI, यहाँ का घूमना, यहाँ का मौसम, यहाँ की एजुकेशन, शिक्षा, और अब इस लिस्ट में जुड़ गई हैं दून की दीक्षा। A very warm welcome to you, दीक्षा चाटवाल in Walk Talk Radio.
1: Thank you so much. Wow, it's a great feeling. I'm super excited to be here and have a great conversation with you guys.
0: सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करी आपने?
1: मुझे एक्टिंग का मुझे शुरू से ही था एक्चुअली, बचपन से, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था और अंदर से मुझे वो आई नेवर हैड द करेज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई वांट टू गेट इनटू इट। मतलब आई लव्ड वाचिंग फिल्म्स जब मैं छोटी थी। आई यूज्ड टू इमिटेट एक्ट्रेसेस आल्सो। आई यूज्ड टू लव डांसिंग
0: एंड
1: yeah, and my grandfather, he was a musician, and my dad, he sings. So, वो कहीं ना कहीं अंदर genes में है. But Mumbai आने से पहले, I used to work for Indigo Airlines. I used to fly with them as a cabin crew. और मेरा promotion होने वाला था, but कुछ चीजें ऐसी हो गई वहाँ पे. I was based out of Hyderabad. तो मुझे ऐसा लगा कि no, I think I should just stop and probably just you know follow my heart now. तो दिल वहाँ नहीं था, दिल कहीं और था। तो आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट एंड आई मूव टू बॉम्बे।

जैसे अंधेरे के बाद रोशनी आती है, ठीक वैसे ही बुरे के बाद एक अच्छा वक्त भी तो आता है। सोचने वाली बात है कि जिंदगी में हम इतना घबरा जाते हैं मुश्किलों को देखकर, हम लड़ते नहीं है, लड़ना नहीं चाहते। देखिए, लाइफ को जीना है ना तो वॉरियर बनना पड़ेगा, खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और जब तक हम खुद को स्ट्रांग नहीं करेंगे, दूसरे लोग हमारी मुश्किलों का हमारा फायदा उठाते जाएंगे। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए। कभी भी किसी के सामने झुको मत, बस काम पे फोकस करो, और कभी भी डरना नहीं है। सिचुएशन हर किसी के साथ होती है, प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ आती है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को समझना है और उन्हें सॉल्व करना है, और उसके लिए खुद को टाइम भी तो देना है। इसीलिए जिंदगी में वॉरियर बने। Walk down.

0: काफी सारे ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किया है, काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने अभी तक काम किया है।
1: हाँ जी, मैंने कोको कोला के लिए काम किया है, मैंने फेसबुक के लिए और मूव और GSK, कैरेट लेन, मैकडॉवल्स नंबर वन सोडा, एंड मैंने म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। मैंने अंकुर तिवारी के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है फॉर MTV साउंड ट्रिपिन, एंड रिसेंटली मैंने एक और म्यूजिक वीडियो किया है जो टी सीरीज में आने वाला है। सो यस एंड या।
0: तो ये फीलिंग कैसी होती है जब आपने सपना देखा था कि मैं मुंबई जाती हूँ, कुछ करती हूँ, और अब जब आपकी वीडियो आती है, आपका एड आता है, आप बड़े पर्दे पे आते हैं और घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है?
1: आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो वो फीलिंग ही अलग ही होती है। मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, बिकॉज दैट इज वॉट आई लव टू डू। आई मीन कैमरा, आई लव कैमरा, आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग विच आई लिटरली कैन नॉट एक्सप्रेस। इट्स लवली।
0: टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक?
1: So, I have not really gone to college. I don't have a degree. I have a diploma in acting and production. Mm-hmm. I was in Noida Film City after my school. After my schooling, I told my family that मुझे बॉम्बे आना है, but लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया बॉम्बे.
0: I was
1: मैं बहुत ज़्यादा young थी उस time, and my dad never like took me seriously कि आ रे यार कहाँ इतनी छोटी हो अभी, तुम बॉम्बे जाओगी, auditions वगैरह दोगी, you know, नहीं जाना। तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ना रिबेलियस हो गई थी कि नहीं यार, फिर मुझे भेजा ही क्यों आपने, यू नो, नोएडा क्यों भेजा आपने मुझे ये कोर्स करने के लिए। तो आई वाज लाइक अब तो मुझे निकलना ही है घर से। तो मैंने रैंडमली फिर जॉब अप्लाई कर दिया इंडिगो में, एंड आई गॉट थ्रू एंड आई गॉट द जॉब, एंड मैं भूल गई अपना, यू नो, एक्टिंग वैक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माय जॉब। बट
0: वो कहते हैं ना कि जहां पहुंचना होता है इंसान को,
1: हाँ,
0: तो कैसे भी पहुंच जाता है।
1: एग्जैक्टली, आई थिंक वो चीज है, वो चीज मैं समझ चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करके ना, वो लाइफ इज लाइक अ सर्कल, तो कहीं ना कहीं वो आपको पहुंचा ही देती है जहाँ पे एक्चुअली आपको पहुंचना होता है। सो इट इज लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो चीजें आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ में, वो कभी नहीं होती, वो कभी नहीं होती है। सो आई फील दैट इट्स बेटर नॉट टू प्लान थिंग्स। आई डोंट नो, इट्स जस्ट Let life happen to you.

कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।

0: So you work in Bombay, but you are a Dunite girl. So quickly answer Bombay and or Dehradun and why?
1: Always, always, always Dehradun. I think मैंने काफी travel किया है और travel करके मुझे यही पता चला कि Dehradun जैसी city इस दुनिया में नहीं है. I think Dehradun is an emotion and हर चीज मैं देहरादून के मिस करती हूँ जब भी मैं बॉम्बे में रहती हूँ. देयर इज नथिंग व्हिच आई डू नॉट मिस अबाउट देहरादून.
0: जैसे क्या क्या चीजें हैं जो आप मिस करती हैं देहरादून की?
1: फर्स्ट इज मोमोज. आई लव मोमोज. मतलब एक तो बॉम्बे का खाना इतना खास है. ऑफकोर्स हम नॉर्थ इंडियंस हैं तो यार हमें चाहिए थोड़ा स्पाइसी और बटर चिकन प्रॉपरली, यू नो, मोमोज की चटनी ये वो सब कुछ. तो आई मिस द फूड, आई मिस द वेदर, I miss the people from Dehradun because यहाँ पे वो simplicity है लोगों के अंदर अभी भी लोग इतने grounded हैं. मतलब it's just I miss that thing a lot from Dehradun.

0: और आपको क्या लगता है एक एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ मैनेज करना?
1: आई थिंक इट इज डिफिकल्ट. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. मतलब वो आपकी वायरिंग पे डिपेंड करता है, हाउ यू बेसिकली परसीव थिंग्स. बट बॉम्बे में सब कुछ इतना ज़्यादा फास्ट है, सब लोग भाग रहे हैं, लाइक पीपल आर जस्ट रनिंग बिहाइंड थिंग्स. तो कभी कभी ऐसा होता है कि यू जस्ट लूज इट, आप खो देते हो खुद को भी. हाँ हाँ, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ, हाउ यू परसीव थिंग्स, एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ all these things that you need to keep your personal life separate and your professional life separate, because har cheez aapke kaam ke aas pass revolve nahi karti. Everything doesn't revolve around your work. You have a personal life also which is separate, and just enjoy it. I mean, theek hai
2: yaar, kahan ho? I've been trying your number for past 3 days. Tumse gaana nahi ban raha to mana kar do. But we don't have any more time to waste, okay? Please complete this as soon as possible.

0: काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेले चलना शुरू कर तो सही। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: रेडियो। सो व्हाट इज दैट फीलिंग जब आप वापस आती है मुंबई से या बॉम्बे से काम करके देहरादून आ रही होती हैं, तो कैसा लगता है आपको?
1: मतलब आई थिंक दैट इज वन फीलिंग विच आई लिटरली लिव फॉर, जो मैं ये चीजें जो मैं कर रही हूँ वो मैं इसी फीलिंग के लिए कर रही हूँ, इज दैट कि जब मैं शूट के बाद जब मैं वापस घर आ रही होती हूँ या मैं अपने बॉम्बे वाले घर या यहाँ पे आ रही होती हूँ, आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग विच इज, मतलब एक वो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है कि यार आज कुछ किया है, आज मैंने वो किया है जिससे मैं प्यार करती हूँ, यू नो, लाइक आई लव व्हाट आई डू राइट नाउ एंड आई एम गोइंग बैक होम डूइंग दैट। तो दैट वो फीलिंग के लिए आई लिव फॉर दैट फीलिंग, सो आई थिंक वही है।
0: और बहुत कम लोग होते हैं जो ना अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कर रहे हैं तो वो उसी में रह जाते हैं, यार काश मैं ये बन जाता या काश मैं वो कर लेता।
1: एग्जैक्टली exactly.
0: लेकिन आपने बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स के साथ भी काम किया है, रणबीर कपूर, अरमान मलिक, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, जिनको आपने पहले कभी टीवी पे देखा है या सुना है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था?
1: वो एक्सपीरियंस मतलब जब मुझे व्हेन आई गेट दीज प्रोजेक्ट्स, तो वो बहुत मुझे ऐसा ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा एक्साइटमेंट नहीं हुई कि यार आज मैं ओ माय गॉड इनके साथ काम कर रही हूँ उनके साथ, बट द एक्सपीरियंस द फीलिंग आपको वो तभी आती है जब आप सेट पे उनके साथ होते हो, देन यू गेट दैट कि यार ओके आई एम एक्चुअली वर्किंग फॉर दीज, इट इज हैपनिंग, आई एम एक्चुअली वर्किंग विद दीज पीपल। बट व्हेन आई वर्क्ड विद एमएस धोनी, आई डिड दिस एड, ओ माय गॉड, आई थिंक ही

0: so sweet.
1: Captain Cool.
0: Very like humble and grounded, and he's talking to me. He's like, even my wife is also from Dehradun. So I was like, I'm also from Dehradun. And he's just like, तब मुझे ऐसा लगा कि वाओ यार, लाइक ही इज सच अ,
1: ही इज एमएस धोनी, और एमएस धोनी होके भी इतना काम और
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली.
1: आपने अभी ट्रैवलिंग की बात भी करी, आप अपने काम के सिलसिले से ट्रैवल करती हैं, और जब इंडिगो में थी तब भी ट्रैवलिंग होती थी. तो व्हेन यू वर्क इन सच अ फील्ड, तो हाउ डज ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज और इवन कंट्रीज इवॉल्व्स यू एज अ पर्सन?
0: इट डज इवॉल्व यू, एंड आई थिंक ट्रैवलिंग इज वन थिंग. के मुझे ऐसा लगता है कि काम के अलावा आप, हम सबको ट्रैवल करना चाहिए. मतलब आप जितना भी कमा रहे हो उससे थोड़ा सा आप अपना 20-30% पैसा अलग करके, वी ऑल शुड ट्रैवल. मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ विच विल इवॉल्व यू इनटू अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. सो सर्टन थिंग्स जो मैंने लाइफ में अडेप्ट करी है वो ट्रैवलिंग से ही करी है. आप जिस तरीके के लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग लाइफ स्टाइल, अलग अलग कल्चर्स देखते हो, इट्स सो डाइवर्स आउट देयर. सो या इट विल चेंज यू समवेयर.
1: मैंने कहीं पे पढ़ा था आपने एक गाना लिखा भी, आप लिखती भी हैं.
0: हाँ.
1: तो उस गाने की अगर एक दो लाइन अगर आप गा दें या बता ही दें, मतलब कि
0: हाँ हाँ मैंने गाने लिखे हैं एक्चुअली. देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु इज वन ऑफ द रेनाउंड लिरिसिस्ट इन द इंडस्ट्री, तो उनके साथ मैंने काम किया है. बट एक गाना है जिसमें मुझे एक्चुअली एज अ लिरिसिस्ट मेरा नाम आया था, which is called Killer Haseena for T-Series, and this one was for Arjun Kanungu and Tulsi Kumar. So me and the other person Vayu, hum dono ne saath mein ye gana likha tha. So not just this, I do write stories also. I am right now learning copywriting and content writing also. So basically I am going to be working on advertising and brand campaigns. तो आई जस्ट वॉन्ट टू, एज एन आर्टिस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर,
1: क्रिएटिविटी होनी चाहिए.
0: हाँ मतलब और जगह भी मुझे एक्सप्लोर करना है. सो इस वजह से अभी मैं कॉपी राइटिंग में भी घुस रही हूँ. सो बेसिकली आई विल बी अ कॉपी राइटर, सर्टिफाइड कॉपी राइटर नेक्स्ट मंथ. तो मेरा नेक्स्ट मंथ मेरा कोर्स खत्म हो रहा है.
1: अच्छा
0: या yeah.

इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत सिर्फ कुछ चुनिंदा घरों में ही होती है। आज के जमाने में हर व्यक्ति अपना फायदा चाहता है, मैं ये बन जाऊं, मैं वो कर लूं, मैं सबसे आगे, फिर चाहे वो दूसरे का नुकसान पहुंचा के क्यों ना मिले। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को शॉर्ट टर्म में खुशी मिल सकती है, लेकिन आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें खुद भुगतने पड़ते हैं।

0: किलर हसीना की कोई हुक लाइन या दो लाइंस कुछ भी।
1: किलर हसीना हसीना आ जान ले ले किलर हसीना।
0: तो ये डांस और पेपी टाइप का सॉन्ग होगा।
1: इट्स अ प्रॉपर बॉलीवुड नंबर, मतलब ये तो बहुत मजा भी आता एक्चुअली इसको लिखने में, बट प्रॉपर बॉलीवुड नंबर है ये।
0: तो ये लिखने की जो जर्नी है ये भी बहुत पहले से ही है या अभी साथ साथ आप लिखने लगे हैं?
1: ये बहुत पहले से है एक्चुअली, बचपन से है, पर लेकिन अब मैंने इस पे प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया है बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट टू गेट इन टू समथिंग विच इज कि कैमरे के पीछे भी क्या होता है, मतलब मुझे उस पर भी काम करना है। दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू स्क्रिप्ट राइटिंग एंड यू नो लाइक एक एड को, मैंने एड्स वैसे बहुत सारे किए हुए हैं एज एन एक्टर, बट नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट एड्स ऑल्सो।
0: बनता कैसे है,
1: बनता कैसे है, लिखते कैसे है, यू नो प्रॉब्ली आई वॉन्ट टू डायरेक्ट ऑल्सो वन डे एड्स और फिल्म्स व्हाटसोएवर। सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग इन टू कॉन्टेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग।
0: बहुत ही अच्छी बात है कि सीखने की चाह हर चीज में है। हाँ। किसी एक चीज को आप स्टिक नहीं कर रही हैं।

वो कहते हैं ना कि बांटने से प्यार बढ़ता है। फिर चाहे हम अपनी खुशियां बांटें, अपना गम बांटें, खाने की चीजें बांटें या कुछ भी चीज शेयर करें, जब हम किसी के साथ कुछ बांटते हैं तो उस इंसान के चेहरे पे एक स्माइल आती है और फिर वो भी आपके साथ चीजें बांटना शुरू करता है। रिश्ते गहरे होते हैं। तो यार, जब भी मौका लगे अपनी फीलिंग्स, अपना लंच, अपनी खुशियाँ शेयर करके देखो, अच्छा लगता है।

0: वॉक टॉक
1: मनुष्य के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। बोला भी गया है, मीठा मीठा बोले सबसे, सबसे करे हम प्यार। अगर आप सबसे अच्छे से व्यवहार करोगे तो आप जरूर सबके चहेते बन जाओगे।

ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।

0: कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो। ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक
2: रेडियो। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा वेपन यानी हथियार क्या है, तो हो सकता है आप कहें कि न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अगर आपके दिमाग में दुनिया को बदलने का विजन है, आपका मन चाहता है कि आप कई बातों में दुनिया को बदल कर रख दे, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। अगर हमें दुनिया बदलनी है, मेंटालिटी बदलनी है, अपने समाज को बदलना है, अपनी सोसाइटी को बदलना है, तो उसके लिए जरूरी है कि एजुकेशन हर एक तक पहुंच जाए। यानी अगर हम एजुकेटेड हैं, तो हम अपने आने वाली जनरेशन को भी एजुकेट करके दुनिया को सही दिशा में बदल सकते हैं।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: कभी कभी ना हम दूसरों की बातें दिल पे ले लेते हैं, अरे यार उसने ऐसे कैसे बोल दिया एक्सेट्रा। हम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं और यही चीज हमें लाइफ में काफी डिस्ट्रैक्ट करती है। हम अपना सारा काम छोड़कर दूसरों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। सोचो हम खुद के साथ, खुद की लाइफ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर जरा गौर करना। हमेशा जो है दूसरों की बातें दिल पर लेने की बजाय एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो और अपने टाइम को सही यूटिलाइज करो, क्योंकि वक्त जब एक बार चला जाता ना दोस्त, दोबारा वापस नहीं आता, उसके बाद सिर्फ पछतावा होता है। इसलिए पछताने से अच्छा है खुद को टाइम दो।
1: वक्त

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसे ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: रेडियो।
1: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।
0: वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक
3: रेडियो।
2: सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
4: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो। कुछ बनना है तो अपने आप की तरह बनो, किसी और की तरह कोई ना कोई हर रोज यहाँ बन रहा है, तैयारी ही सफलता है।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमें कभी छोटी छोटी परेशानियों या हार से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए ही हो रहा है। इसलिए हर वक्त हर हाल में हमें जीतने का जज्बा रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। ऐसी और बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।

0: बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: परिवर्तन और संघर्ष से डरने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। परिवर्तन इस संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, सुबेरे हुई है शाम होगी, कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदलती। लेकिन अगर हम हार्डकोर हो जाते हैं, किसी बात पे अड़ जाते हैं, तो दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है, बदलिए और देखिए, आप खुद नहीं बदलेंगे, आप अपने आसपास की सिचुएशन को भी बदलने का मौका देंगे। संघर्ष से डरना, पीछे रह जाना, हमेशा डरते रहना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हिम्मत करिए और फेस करिए अपनी उस प्रॉब्लम को, ऐसा फेस करिए कि प्रॉब्लम भी आपसे डर जाए, और देखिए जिन चीजों से आपको डर लग रहा था वो कितनी आसानी से दूर हो जाती है। कोशिश तो करके देखिए।
0: वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक
0: रेडियो।
2: सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Walk Talk Radio.
1: फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई ना आ सके, समझ रहे हैं आप?

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आज की डेट में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज कमाना क्या है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप किसी बहुत महंगी, किसी लग्जरियस कार का नाम लेंगे और कहेंगे कि इसे कमाना बहुत मुश्किल है। शायद हो सकता है कि आप बहुत बड़े घर का नाम ले लें और कहेंगे कि उस बंगलों को खरीदना बेहद ही मुश्किल है। या हो सकता है कि आप ये कहें कि चांद पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सबसे ज्यादा अगर हम अपनी हकीकत की दुनिया में वापस लौटे, तो शायद आज की डेट में सबसे ज्यादा महंगा है किसी का विश्वास जीतना, जिसे हम खरीद तक नहीं सकते। तो यदि जीतना है किसी को, तो किसी का भरोसा जीतिए, इंसान को जीतिए, बाकी के काम तो आपके बनते ही चले जाएंगे। ऐसे ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल बातों को सुनने के लिए बने रहिए वॉक टॉक रेडियो पर।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक रेडियो।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: दोस्त, खुद को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर कब तक दूसरों के टाइम के लिए तरसते रहोगे? खुद को वैल्यू दो। हम लाइफ में बहुत कुछ प्लान करते हैं और सबके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या कभी खुद से कोई भी बात डिस्कस की आपने करते हैं? अगर हमें कुछ भी बोलना है या फिर कुछ भी फैसले लेने हैं, तो क्या हम तनिक सा अपनी लाइफ के बारे में खुद से सवाल करते हैं? लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो क्लियर नहीं होती। अगर आप एक बार खुद से बात करना शुरू कर दोगे ना, तो वो जो क्लैरिटी है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आने लगेंगी। इसीलिए खुद को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना खुद को टाइम दोगे उतना ही खुद को समझोगे। और कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोचना जरूरी है कि ये जो फैसला है ये आपने खुद से लिया या दूसरों के कहने पे आप ये फैसला ले रहे हो।
1: वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक
3: रेडियो।
2: सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
4: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
5: ट्यून इन।

0: मेरे दोस्त, सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे। तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में, तू चाहे वो वक्त ले।
1: ये है वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Talk Talk Radio. ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पीछे हटूंगा ना हारूंगा हौसले, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है।
1: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.

0: रेडियो।
1: उस काम को कभी ना छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं।
0: Mock Talk Radio, tune in for a better life.
2: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
3: वॉक टॉक रेडियो,
0: वॉक

अगर आपकी लाइफ में जितना स्ट्रगल होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। राहों में बस कहीं तुम भटक मत जाना, चलते चलते कहीं तुम थक मत जाना। ठान लिया है ना अगर मंजिल को पाना, बस मुसाफिर बनकर चलते रहो, कदम से कदम आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि जिंदगी में स्ट्रगल जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। और हर इंसान सफल होने के लिए ही कड़ी मेहनत करता है, कड़ी धूप में चलता है।

0: अब शायद ही कभी मिलना हो, ये जानते हुए भी वादे सबने बहुत किए स्कूल फेयरवेल में कि मिलते रहेंगे, टच में रहेंगे। आज इतने सालों बाद सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, लेकिन एक चीज जो आजकल किसी के पास नहीं है वो है टाइम। मिलते हैं यार किसी दिन, लेकिन वो किसी दिन आता नहीं है। तो दोस्त, किसी को तोहफे में कुछ देना है तो मिठाई, कपड़े, घड़ी, ये सब नहीं, अपना टाइम दीजिए, अपना कीमती समय दीजिए। समय से ज्यादा कीमती आजकल कुछ भी नहीं है।
1: Tune in for a better life.
2: ये है Walk Talk Radio.
3: Walk Talk Radio.
2: Tune in for a better life. Tune in.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।
1: इस कॉम्पिटिटिव दुनिया की भीड़ में अगर आप भी अपने आप को दूसरों से कम आंकते हैं, तो इन शब्दों को बार बार जरूर अपने मन में दोहराइए कि आप अमेजिंग है, आप इम्पोर्टेंट है, आप बहुत स्पेशल है, आप यूनिक है, आप बहुत ही काइंड है, आप बहुत ही अनमोल है, आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोचते हैं।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो,
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: इस बेहिसाब जिंदगी में हिसाब देना भी जरूरी है, गैरों से ज्यादा खुद पर विश्वास करना भी जरूरी है।

माना कि हालात कभी कभी बेकाबू से हो जाते हैं, अपने दूर हो जाते हैं और कुछ राहों में छूट जाते हैं। कौन सही है, कौन गलत है, कभी कभी ये भी हम सोच नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये पल भी तो गुजर जाते हैं और वक्त भी तो बदल जाते हैं। दुखों के बाद खुशियों के पल ही आते हैं।

हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली यानी कि आपका देवानंद जूनियर। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio. Walk Talk.
0: Walk Talk Radio.
2: Come, shall we do a radio talk with a radio called Say What? Walk Talk. Hi, मैं हूँ अनुष्का. I'm a singer, songwriter and rapper. और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर.
3: Walk Talk दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी. Walk Talk Radio.
4: Walk Talk

वॉक टॉक रेडियो सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: भाई मैं तो थक ही गया।
1: अमिताभ बच्चन का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं सिर्फ उनकी आवाज़ निकाल

रहा हूँ, उनके आसपास भी आप नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि ये आवाज निकाल के ना मैं कुछ कुछ उनके आसपास पहुंच जाता हूँ। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला राजा। मेरे शो कहानी वाला में मैं कहानी आपके लिए लेकर आता हूँ, और बच्चन साहब की आवाज से आज मैंने जो शुरुआत करी है अपने शो की, वो इसीलिए क्योंकि आज की कहानी उनकी जिंदगी से जुड़ी कहानी है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लाइफ लेसन है जो उन्हें दिया था उनके पिता ने, यानी कि महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन, जिनकी लिखी मधुशाला तो आपने कई बार सुनी है। उनकी जिंदगी ने कुछ ऐसा दिया अमिताभ बच्चन साहब को जो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। आपको पता होगा कि बच्चन साहब ने अपने जमाने में बहुत स्ट्रगल किया। जैसे बताया जाता है कि 11-12 फ्लॉप फिल्में आने के बाद उन्हें एक बड़ी फिल्म ऑफर हुई, जंजीर, या फिर ऑल इंडिया रेडियो पर जब वो गए थे रेडियो जॉकी बनने तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, या 80s के दौर का वो महानायक 90s आने के बाद अचानक से अपनी जगह बचाने के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था। आप मानिए ना मानिए, एक वक्त ऐसा था जब बच्चन साहब ने अपने घर से यश चोपड़ा जी के घर तक, जो उनके पड़ोस में इलाका करते थे उस समय, नंगे पांव जाकर उनसे काम मांगा था। कहा था कि मुझे काम की सख्त जरूरत है, क्योंकि उनकी बनाई हुई कंपनी कर्ज में थी, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी। उन्होंने म्यूजिक कैसेट्स में अपना एक वेंचर शुरू किया था, बिग बी म्यूजिक, ABCL नाम से एक कंपनी शुरू की थी जिससे वो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, और हर तरफ नुकसान हो रहा था और कर्ज बढ़ता जा रहा था। बच्चन साहब खुद कहते हैं कि उन्होंने उसके बाद हर एडवर्टीजमेंट के लिए हाँ कहा, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते थे। पर ये उनके स्ट्रगल की कहानी नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। जो कहानी मैं सुना रहा हूं वो है उस दौर की कहानी जब वो कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, या कहिए स्कूल के दिनों की बात। शेरवुड में वो पढ़ते थे, और शेरवुड में जब थिएटर वो कर रहे थे तब उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मौका मिला था। वो नाटक का मेन किरदार था, वो चाहते थे कि उसमें जी जान लगा दे, उस किरदार को ऐसा निभाएं कि लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। प्ले होने से कुछ दिन पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और अमिताभ बच्चन साहब का फ्रैक्चर हो गया। वो बेडरिडन थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, और वहां से उस वक्त निकल पाना मुमकिन नहीं था। जहां वो पढ़ते थे वहां, ये मान लीजिए कि एक पहाड़ी के छोटे से हिस्से पर ऊपर की तरफ उनका कॉलेज था, जहां लाउडस्पीकर पे कुछ होता था तो नीचे के हिस्से में आवाज आया करती थी, और नीचे उनका हॉस्पिटल था, तो उन्हें उस प्ले की आवाजें आ रही थी। उन्हें पता चल रहा था कि वो उस प्ले का हिस्सा नहीं है, कोई और उनका किरदार निभा रहा है, और ये बात उन्हें बड़ी दुख दे रही थी, परेशान कर रही थी। रोना आ रहा था, हाथ से चीज फिसल गई। आप चाहते थे वो नहीं हुआ, और जो हुआ कितना बुरा हुआ। तब बाबूजी आए उनसे मिलने, हरिवंश राय बच्चन, और उनका दुख कम करने के लिए बाबूजी ने कहा कि देखो जो हुआ वो अच्छा, और जो नहीं हुआ वो और अच्छा, क्योंकि जो हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल थी, यानी तुम जो चाहते थे वो हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी पर खुदा की मर्जी उसमें शामिल थी, यानी ऊपर वाले की मर्जी थी उसमें। तो वो ऊपर वाला जो है वो नहीं चाहता, इसलिए वो चीज नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो कोई कारण होगा। वो कारण कब पता चलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमेशा ये याद रखो कि जिंदगी में जो हुआ वो अच्छा, और जो नहीं हुआ वो और अच्छा, क्योंकि जो नहीं हुआ वो खुदा की मर्जी है। याद रखिएगा, कभी भी डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में आया है उसे हैंडल करना है तो हमेशा जो हुआ वो अच्छा, जो नहीं हुआ वो और अच्छा। बड़ी छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ा कमाल कर गई, बच्चन साहब के लिए तो करी गई, हमारे लिए भी कर जाएगी। अब सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा थोड़ी देर में एक और कहानी लेकर। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मैं कर्नल अजय कोटियाल हूँ। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी होती है, कोई एक्सक्लूसिव फीलिंग होती है, तो आप वॉक टॉक रेडियो में आए और यहाँ पे आकर के अपना आइडिया शेयर करें और डाउनलोड करें वॉक टॉक रेडियो, बहुत सारे लोगों की अच्छी जानकारियों को जानने के लिए।
0: वॉक टॉक रेडियो।

पैनिक अटैक जानते हैं क्या होता है? पैनिक अटैक ये वो चीज होती है जो आपको तब आती है जब आपकी लाइफ से कुछ छिन रहा हो, कुछ छूट रहा हो, वक्त कम पड़ गया हो, कोई डेडलाइन आ गई हो, या एक इमरजेंसी की सिचुएशन है और आपको उसे हैंडल करना है। तो अक्सर मेरा मानना है शायद 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैनिक अटैक आ जाता है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो महेंद्र सिंह धोनी की तरह कैप्टन कूल रह पाते हैं, इतने सारे शोर, इतनी सारी प्रेशर में भी अपना खेल स्मूथ और ओरिजिनल रख पाते हैं। सिचुएशन से जिनकी जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ता वो कैप्टन कूल कहलाते हैं। असल आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत, शो चल रहा है कहानी वाला। और अब जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये उस सिचुएशन की है जब पैनिक अटैक आता है ना तो हमें पता नहीं होता करना क्या है। हम यहाँ वहाँ हेडलेस चिकन की तरह घूमते तो रहते हैं लेकिन वो डेडलाइन कैसे मीट करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में सोल्यूशन नहीं मिलता। तो उसे लेकर मैं कहानी लाया हूँ। ये कहानी एक किसान की कहानी, किसान की घड़ी की कहानी, सुनिए। तो एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास जो अनाज की कोठी थी उसमें काम कर रहा था। काम करने के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वो घड़ी उसके पिताजी ने जब पहली बार वो खेत पर हल चलाने आया था, जब उसने पहली बार अच्छा काम करके दिखाया था, तो पिताजी ने खुश होकर वो घड़ी खरीद के उसे दी थी। जब किसान को वो घड़ी मिली थी ना तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि उस जमाने में घड़ी एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था, हर एक के हाथ में नहीं होती थी। जिसके हाथ में है उसका वक्त अच्छा चल रहा है, ये बात वो घड़ी साबित कर देती थी। घड़ी को लेकर एक छोटा सा किस्सा है कि दो लोग थे, दो दोस्त थे, दोनों ने हाथ में घड़ी पहनी थी। तो एक के हाथ में एक मामूली सी घड़ी थी, दूसरे के हाथ में एक बहुत स्टाइलिश ब्रांडेड घड़ी। तो दूसरे ने, जो दोस्त था जिसने मामूली घड़ी पहनी थी, उसने मजाक में कहा कि यार देख मेरी 200 रुपए की है, तेरी 2000 की, लेकिन वक्त तो सेम बताती है। तो जिसकी 2000 की घड़ी थी उसने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो घड़ी ये बता रही है कि तेरा वक्त कैसा चल रहा है और ये घड़ी ये बता रही है कि मेरा वक्त कैसा चल रहा है। सोच सोच का फर्क है। वापस आते हैं हमारी किसान की घड़ी पर। तो किसान की वो जो बहुत ही खास घड़ी थी जो उसके फादर ने उसे गिफ्ट करी थी, उसके पापा ने, वो खो गई।

और उसका बड़ा अटैचमेंट था उस घड़ी से, उस स्टेटस सिंबल के साथ साथ में उसके पापा की निशानी भी थी। उसने वो घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, स्कोटी का हर कोना कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। वहाँ बहुत सारा अनाज था, बोरियां थी, एक छोटा सा कमरा था, अंधेरा था, लेकिन घड़ी नहीं मिली। आखिरकार वो बिल्कुल निराश हो गया और कोठी के बाहर आ गया। वहां देखा तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने बच्चों को पास बुलाकर अपने पिताजी की वो घड़ी खोजने का काम सौंपा। उसने कहा कि जो घड़ी ढूंढ देगा उसको मैं इनाम दूंगा। इनाम का लालच था तो बच्चे लगे घड़ी ढूंढने। कोठी के अंदर जाकर बच्चों ने घड़ी ढूंढने के लिए अपनी जान लगा दी। इधर उधर, यहाँ वहां, हर जगह खोजने पर घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक गए, उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की उम्मीद खो दी थी। बच्चों के जाने के बाद वो कोठरी में उदास बैठा रहा। तभी एक बच्चा वापस आया। उसने किसान से बोला कि वो एक बार फिर से ढूंढने की कोशिश करेगा। किसान ने कहा, ढूंढ लो, पर अब मुझे देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो किसान को जाने की जल्दी भी थी। बच्चा जो था वो कोठी के अंदर गया और कुछ देर बाद वो अकेला ही था उस कोठी में। उस वक्त कोठी बंद की अंधेरे में, कुछ देर बाद वो वहां से बाहर आया और उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वो घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि आखिर तुम कैसे ढूंढ पाए इसे, जब कोई और बच्चा नहीं ढूंढ पाया, मैं भी नहीं ढूंढ पाया, तो तुम्हें कैसे मिली। पूछने पर बच्चे ने कहा कि कोठी के अंदर जाकर ना वो एकदम चुपचाप अंधेरे में जाकर एक कोने में खड़ा हो गया और बस ध्यान लगाकर सुनने लगा। उस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे उसका इंतजार कर रहा था और आखिर वो सुनाई दी। उसी डायरेक्शन में ढूंढा तो पता चला कि अनाज का एक बोरा था, उस बोरे के पीछे की तरफ एक आला था, एक शेल्फ। उस शेल्फ में वो घड़ी पहुंच गई थी किसी तरह से। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी, इनाम दिया, और उस बच्चे ने किसान की उस घड़ी के साथ में हमें दे दिया एक छोटा सा लेसन, एक कहानी के फॉर्म में। शांति, पीस हमारे मन और हमारे दिमाग दोनों को ना फोकस्ड फॉर्म में ले आती है, उसे एकाग्र कर देती है। जब हमारे मन की स्थिति एकाग्रचित होंगे, जब हम एक डायरेक्शन पर फोकस कर पाएंगे, तब जिंदगी में फैसले लेना आसान होगा। ऐसे ही जब कोई पैनिक सिचुएशन आएगी, उसमें जब आप फोकस्ड होकर डिसीजन लेंगे, आपका जो मन है वो आपके काबू में रहेगा। अगर अंदर एक शांति होगी तो आप घड़ी की टिक टिक सुन पाएंगे, आप वो सही डायरेक्शन ढूंढ पाएंगे जहां पहुंचकर आप अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। तो जिंदगी में परेशानियां बहुत आएंगी, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी, जिंदगी में ऐसे पैनिक सिचुएशंस बहुत आएंगे, जब आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है, दो मिनट रुककर अपने मन के अंदर ना वो एकाग्र चित्त वाला भाव लाने की कोशिश करना, वो शांति, वो पीस लाने की कोशिश करना, देन यू विल फाइंड आउट द वे, यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन वे टू गो। समझे? सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो, यहाँ पर हम जिंदगी बदलने की कहानियां सुना रहे हैं आपको। शो का नाम है कहानी वाला, मैं हूँ कहानी वाला रजत, और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: हाय, लगी तो नहीं? अरे
1: आई एम गुड, आई एम गुड।
0: चलो मैं सिखाती हूँ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो. वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
1: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है. पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है. बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है.

0: इसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद का।

कभी कभी कुछ बातें जो किस्से कहानियों में नहीं समझ आती हैं, वो शेर शायरी कविताएं समझा देती हैं। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, एक ऐसी जगह जहां पर जिंदगी बदलने की छोटी सी कोशिश की जाती है। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूँ कहानी वाला रजत, शो का नाम कहानी वाला। किस्से कहानियां सुनाने के साथ साथ मुझे लगा कि आज कुछ शायरियां आपको सुना दूं जो जिंदगी पर लिखी हैं कुछ महान शायरों ने, द ग्रेट राइटर्स, जैसे जॉन एलिया साहब। उन्होंने लिखा, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कही। बशीर बद्र साहब ने लिखा है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और इमाम बख्श साहब ने कुछ ऐसा लिखा है जो आप बरसों से सुनते आए हैं, लेकिन आपको नाम नहीं पता था कि लिखा किसने। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये फिल्मों में डायलॉग्स थे ना, ऐसा लगता था किसी फिल्मी राइटर ने लिखा होगा। और फिराक गोरखपुरी साहब, एक बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट भी रहे, वो लिखते हैं कि मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं है। बहरहाल ये तो जिंदगी के नाम लिखी वो शायरियां हैं जो जिंदगी की डेफिनेशन बनाने में मदद करती हैं। तो वाकई मौत का इलाज है, जिंदगी का नहीं है। जिंदगी अपने दर्द देती है, अपने रास्ते भी बताती है, फिर भी हम इसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसी कोशिश में कहानी सुन लेते हैं। ये बेंगलुरु की कहानी है। बेंगलुरु के गोल्फ क्लब में कैडी, आपको पता है गोल्फ में कैडी क्या होता है? कैडी होता है खिलाड़ियों के पीछे बैग जो होता है ना उनका, वो गोल्फ जिसमें सारी स्टिक्स होती हैं, उनको उठाकर चलने वाला लड़का। तो जो कैडी का काम करता था उस लड़के की कहानी है। उसका नाम है चिन्ना स्वामी मनियप्पा। तो ये लड़का जो कैडी का काम करता है, जिसके माँ बाप उस गोल्फ क्लब में मजदूरी किया करते थे, उसने कमाल करके दिखाया और वही कमाल कहानी बनी। कमाल था कि चिन्ना स्वामी मनियप्पा ने 11 अक्टूबर 2009 को $12.5 लाख की हीरो होंडा इंडियन ओपन चैंपियनशिप जीतकर सबका सर चकरा दिया था। जब DLF गुड़गांव गोल्फ क्लब के मैदान पर चिन्ना स्वामी ने साउथ कोरिया के सबसे प्रेस्टीजियस खिलाड़ी ली सुंग को हराया ना, तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। कर्नाटक के चिन्ना स्वामी मनियप्पा के बिना, उन्होंने बिना किसी कोच के अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह कॉम्पिटिशन जीत कर ये साबित कर दिया कि अगर आप पूरी लगन, पूरे डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस के साथ कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं। कमाल की बात है कि चिन्ना स्वामी आज तक कर्नाटक गोल्फ क्लब के मेंबर नहीं बन पाए। जैसा मैंने बताया था कि उनके माँ बाप कर्नाटक के उसी गोल्फ क्लब के मजदूर हुआ करते थे और आज बेटा वहाँ गोल्फ प्रैक्टिस करता है। चिन्ना स्वामी ने गोल्फ की बारीकियां कैडी का काम करते करते सीखी और वो प्रोफेशनल गोल्फर बन गए। मतलब ये वही हुआ कि कोई लड़का है जो किसी वर्कशॉप में मैकेनिक है और एक दिन उसी ने वो गाड़ी बनाई और वो उस वर्कशॉप को अब ओन करता है और वो गाड़ियां भी बनाता है। भाई हमें गर्व है कैसे हिंदुस्तानी पर, जिसने एक इंस्पायर किया हर एक शख्स को और बताया कि आर्थिक मजबूरी, फाइनेंशियल सेटबैक्स अगर आपकी लाइफ में रहे हैं तो वो चैलेंजेस नहीं है, आप उसको बड़े आराम से पार कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर एक कैडी गोल्फर बन सकता है, $12.5 लाख का एक गोल्फ चैंपियनशिप जीत सकता है, तो आप उससे बहुत बेटर सिचुएशन में हैं अपनी जिंदगी में। आप सोचिए आप क्या नहीं कर सकते। मुझे यकीन है आप कर सकते हैं, बस किसी ने आपको यह एहसास नहीं दिलाया कभी कि आप बहुत स्पेशल हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, यकीन मानिए। मैं हूं कहानी वाला रजत, कहानियां सुनाता हूं इसीलिए ताकि उन कहानियों में से कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में चला जाए जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग थॉट बनकर सामने आए। एक लाइफ चेंजिंग थॉट भी काफी है, शुरुआत तो बस सोच से होती है जनाब। सुधरे वॉक टॉक रेडियो, कहानियां सुनाऊंगा, कहानियों के साथ साथ दूंगा कुछ ऐसी एडवाइस जो शायद आपकी जिंदगी बदलने में आपके काम आए। मैं हूँ कहानी वाला रजत, ये है वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो। हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो जब अपनी टीनेज में रहे होंगे तो हर छोटी छोटी बात पर हमने अपने घर पे कितनी जिद की होगी ना। कभी आइसक्रीम वाले का भौंपू सुनते ही रोज आइसक्रीम खाने की जिद, बाजार गए तो महंगे अच्छे कपड़े लेने की जिद, हर बार नए नए जूते खरीदने की जिद। तब माँ बाप की कही बातों के मायने हमें समझ नहीं आते थे, लेकिन आज जब हम उस जगह पहुंचते हैं, उस स्टेज पर पहुंचते हैं, तो वो सारी बातें हम समझ पाते हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो बात आपको पसंद नहीं आ रही वो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्या पता उसी बात में आपका ही भला छुपा हो।
1: Tune in for a better life.
2: Tune in for a better life.
3: On the stage, right now.

कुछ कहानियां इसलिए नहीं जरूरी होती कि वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐड कर देती हैं या आपको एक जिंदगी का लेवल अप करने का मौका देती हैं। कुछ कहानियां इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि वो आपको वो चीजें याद दिलाती हैं जो आप भूल गए, और शायद उन्हें याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत, और कहानियां सुनाना मेरा काम है, ये तो आप जानते ही हैं। आप जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानियां होती हैं। तो अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी है एक घंटा। शाम का वक्त था, ऑफिस से घर आने के बाद पापा जो थे वो बहुत ज्यादा बिजी थे ऑफिस की फाइल्स में, तो टेबल पर बैठ गए और पूरा ध्यान फाइल्स में था। तभी उनका 7 साल का बेटा उनके पास आया, रात के 9 बजे थे। बोला, पापा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो बिना फाइलों से नजर हटाए पापा बिजी थे, पापा ने बोला, हाँ पूछो। उसने बोला, पापा आप एक घंटे का कितना कमा लेते हैं? बहुत अजीब सवाल था, पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे, क्यों बेकार के सवाल पूछ के मेरा टाइम खराब कर रहे हो, देखते नहीं मैं काम कर रहा हूँ? पापा मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए ना आप एक घंटे का कितना कमा लेते हैं। तो बेटा जिद करने लगा। पापा ने कहा, 500 रुपए। ओ 500 रुपए? तो बेटा सर झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर उठकर बोला, पापा आप मुझे 300 रुपए उधार दे देंगे? ये सुनना था कि पापा को गुस्सा आ गया। वो पापा को बोले, बेटे को बोले कि अच्छा तो तुम इसीलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई खिलौना खरीदना है या कोई चीज लेनी है? अब एक शब्द बिना कहे ना अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारे फालतू डिमांड्स पूरी करता रहूं, बस जाओ। बेटे का चेहरा उतर गया, भारी कदमों से वो वहां से चला गया। पापा कुछ देर तक तो बेटे की बात पर नाराज रहे और काम में लग गए। काम खत्म हुआ, तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। पापा की नाराजगी भी खत्म हो गई, उनको लगा कि बेटे के लिए वो काफी रूड रहे। वो सोचने लगे कि बेटे ने यार सच में कोई जरूरी चीज हो सकता है उसे खरीदनी हो तभी 300 रुपए मांगे, क्योंकि वो पहले कभी पैसे नहीं मांगता इस तरह से। फिर वो अपने बेटे के कमरे में गए, देखा तो उनका जो बेटा था वो बिस्तर पर लेटा था। तो उन्होंने पूछा कि सो गए क्या बेटा? तो उठकर बोला, नहीं पापा मैं तो जागा हूँ। तो बोले कि बेटा मैं काम की वजह से थोड़ा परेशान था, पर तुम बुरा मत मानना, मेरा गुस्सा तुम पर निकल गया, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये 300 रुपए लो, जो टाइम उस टाइम तुम मुझसे मांग रहे थे ना ये लो। उसने कहा कि थैंक यू पापा। 300 रुपए एक तरफ रखकर उसने अपने तकिए के नीचे से कुछ नोट निकाले और उन्हें गिनने लगा। पापा ने देखा कि इसके पास पैसे हैं फिर भी मांग रहा है, फिर गुस्सा हो गया। बोले, जब तुम्हारे पास पहले से पैसे थे तो मुझसे क्यों मांग रहे थे? तो उसने कहा, पापा मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे ना, अब हैं। ये सब मिला के और वो 300 रुपए मिला के पापा पूरे 500 हो गए। ये लीजिए 500 रुपए, क्या मैं आपका एक घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप कल घर जल्दी आना ना, अपन डिनर साथ में करेंगे, और काम मत करना कम से कम उसे एक घंटे में। बेटे की बात सुन के पापा शॉक थे। हम पैसे कमाने की जद्दोजहद में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारी जो फैमिली है ये पीछे छूट जाती है। हमारे पास अपने फैमिली, हमारे रिलेटिव्स के साथ बिताने के लिए वक्त नहीं है। ये वक्त धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, और ये बीता समय कभी लौटेगा नहीं। ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है, लेकिन फैमिली में क्या कोई हमें रिप्लेस कर पाएगा? अब सोचिए कि आपको किसे ज्यादा वक्त देना है, ऑफिस, फैमिली, पैसे या काम? सोचिएगा इस पर। मैं हूँ कहानी वाला रजत, कुछ कहानियां आपको सुनाता हूँ, बस यूं ही बैठे रहिए और मेरे साथ मेरी कहानियां एंजॉय करते रहिए। वॉक टॉक रेडियो पर ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टे ट्यून्ड ऑन वॉक टॉक रेडियो।

बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: जब भी आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए तो थोड़ा सा ठहर जाना, एक लंबी सी गहरी सांस तुम लेना, अपने अच्छे से अच्छे वक्त को उस वक्त तुम याद करना, अपनी मंजिल को तुम याद करना, खुद से वादा तुमने जो किया है उस वादे पर ध्यान करना। अगर सपने बड़े हैं तो मुश्किलें भी बड़ी होंगी, बस इरादे पक्के होने चाहिए। इसलिए जिंदगी में जब भी अप्स एंड डाउन्स आए तो थोड़ा सा खुद के बारे में जरूर सोचिएगा।
1: कपड़े तो पहन ले।
2: दादी मिल गई से।
1: मतलब ये उन लोगों में से है।
3: कल्चर की तो कुछ परवाह कर।
4: अब आपको समझ
3: कैसा ही होगा।
4: लड़की वगैरह चल।

अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आज की आखिरी कहानी है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत। कहानी वाला शो पर लेकर आया हूं एक कहानी एक लड़के की। ये कहानी ये सिखाती है हमको कि जिंदगी में ना नथिंग कैन बी, यू कैन नेवर बी लेट फॉर समथिंग। इन अ वे इट्स नेवर टू लेट। कैसे, कहानी सुनते हैं। एक लड़का जो जब 5 साल का था तब उसके फादर की डेथ हो गई। माँ नौकरी पर जाती थी तो वो घर पर खाना बनाता। अब वो लड़का 7th क्लास तक स्कूल गया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, माँ ने दूसरी शादी कर ली और ये जो लड़का था ये घर से भाग गया। तो शुरुआती जिंदगी में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। कभी स्टीम बोट में नौकरी की, फिर एक इंश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन बनने की कोशिश की, फिर रेल रोड में फायरमैन का काम किया। 16 साल की उम्र हुई ना तो अपनी उम्र गलत बताकर वो आर्मी में शामिल हो गया, क्यूबा में नौकरी करने लगे। 1-2 साल में वहां से भी उनकी छुट्टी हुई। 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और बताते हैं कि कुछ साल बाद ही उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उनके पास काम नहीं था, वो बेरोजगार हो गए थे या फिर पैसे कमाने के जरिए नहीं थे। उनकी एक बेटी भी थी, वो चाहते थे कि बेटी को अपने पास रखे चाहे वाइफ उन्हें छोड़ जाए तो भी। तो उन्होंने अपनी बेटी को ही किडनैप करने की कोशिश की, बट दैट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट। अब सवाल ये हुआ कि उन्हें अपनी वाइफ को मनाना पड़ा कि तुम वापस घर आ जाओ। तुम्हारी वाइफ ने कहा तुम काम शुरू करो, तो उनके पास करने के लिए काम नहीं था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या काम करें। फाइनली उन्हें पता चला कि वो एक ही चीज सबसे अच्छी करते हैं और वो खाना बनाने का काम, जो बचपन में किया करते थे ना वो, और उसमें भी चिकन बहुत कमाल का बनाते हैं। तो 40 साल की उम्र में वो चिकन बनाते थे और जो उनके सर्विस स्टेशन पे या जहां पर वो चिकन बनाते थे वहां रुकता था वो उनका चिकन जरूर खाता था। अब तब वो पॉपुलर तो हो रहे थे पर उनके पास कोई रेस्टोरेंट नहीं था। चिकन की क्वालिटी ऐसी कमाल की बनाने लगे, उनकी बिक्री बढ़ने लगी और फिर वो 142 सीटर होटल के मेन शेफ बन गए। तब ये बहुत बड़ी बात थी। वहीं पर उन्होंने चिकन पकाते पकाते ना एक नया तरीका इजाद किया जिसे प्रेशर फ्रायर चिकन कहने लगे लोग। अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि 60 साल की उम्र ना रिटायरमेंट की उम्र होती है। इस शख्स ने अपनी रिटायरमेंट की उम्र से पहले कई बार हाथ पांव मारे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, कोई एक ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, पर किस्मत ने उनका साथ ही नहीं दिया। फिर एक मौका आया, एक मौका ऐसा आया कि उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी ना वेस्ट हो गई है, वो अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए, एक शेफ रहे उससे ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए। तब उनकी जो वाइफ थी वो उन्हें छोड़कर जा चुकी थी और पैसा जो था वो कमाया, लेकिन जब नौकरी छोड़ी तो उन्हें सरकार की तरफ से $105 की एक पेंशन मिली, जिसके बाद ये साबित हो गया कि यार मैंने शायद अपनी जिंदगी में वो किया ही नहीं जो मुझे करना था। वो एक आम सी जिंदगी, एक बिलो एवरेज जिंदगी लेकर अपनी जिंदगी खत्म करने वाले थे। उनको लग रहा था कि बस अब मैं अपनी वसीयत लिख देता हूँ, जो मेरे पास है वो मेरी फैमिली को मिल जाए, मेरा कोई भरोसा नहीं। 60 साल की उम्र में उन्होंने जब अपनी वसीयत लिखने का फैसला किया, ही रोट दैट डॉक्यूमेंट, और लिखते लिखते उन्होंने लिखा कि कितना मुश्किल था अपनी वाइफ को उनके लिए मनाना, फिर भी वो मनाकर वापस लाए सिर्फ इस दम पर कि वो बहुत अच्छे कुक थे, तो उन्हें खाना बनाना तो आता था, उन्होंने तो चिकन की नई रेसिपी भी इजाद की थी, क्यों ना वो उसे बेचे। वही लिखते लिखते उन्हें जब ख्याल आया तो उन्होंने रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। ऐसे ही रूमर्स भी हैं और लोग कहते भी हैं कि उन्होंने 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए थे और हर एक ने उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, हम आपकी ये रेसिपी नहीं ले सकते। धीरे धीरे करके जब वो इतनी बार ना सुनते गए तब फाइनली एक रेस्टोरेंट, सोचिए 1000 रिजेक्शंस झेलने के बाद एक रेस्टोरेंट ऐसा था जो तैयार हुआ कि हाँ हम आपकी रेसिपी को ट्राई करें। उन्होंने वो चिकन वहां पर सेल किया और वो पॉपुलर हो गया। इस बिजनेस की शुरुआत, इस चिकन को बेचने की शुरुआत उन्होंने केंटकी में की थी। उनका बिजनेस जबरदस्त पॉपुलैरिटी के आसमान को छू रहा था। केंटकी के जो गवर्नर थे रूबी लफून, 1935 में उन्होंने इस शख्स को एक उपाधि दी, एक टाइटल दिया, केंटकी कर्नल, क्योंकि कभी ये फौज में रहे थे। तो केंटकी कर्नल सॉन्डर्स ने शुरुआत की KFC की, केंटकी फ्राइड चिकन। आपने देखा होगा ना वो KFC के बकेट्स जो लोग लिए बैठे रहते हैं KFC के कॉर्नर्स पर, जिनका वो लिप स्मैकिंग टेस्ट, वो डिलिशियस स्वाद, वो जो भी, अगर आप चिकन लवर हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट थिंग, दैट जूसी फ्राइड चिकन जो वहां पर सर्व होता है, इट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एक ऐसी यूनिक रेसिपी है जिसकी वजह से KFC की जब शुरुआत हुई तब, मतलब आप सोचिए 1964 में $2 मिलियन में KFC का हिस्सा कर्नल ने 1964 में बेचा था,
कर्नल ने कनाडा में अपनी फ्रेंचाइजी बेची और खूब पैसा कमाया, मतलब इतना पैसा जो बाकी की पूरी जिंदगी के लिए काफी था, लेकिन इस चीज की शुरुआत 60 साल की उम्र में हुई। ये कितनी बड़ी बात है कि इस शख्स ने अपनी ढलती हुई उम्र को अपने हार जाने का कारण नहीं माना और जीतने के लिए कोशिश करी उस चीज के दम पर जो उसके लिए सबसे खास थी, कुकिंग। ऐसे ही कोई एक आपकी यूनिक स्ट्रेंथ होगी जो आपके लिए खास है, जो आपको खास बना सकती है, आप बस उसका इस्तेमाल करके देखिए, मैं कह रहा हूं जिंदगी बदल जाएगी। हमने सुनी है आज कर्नल सॉन्डर्स की कहानी। इनका पूरा नाम है हार्लन डेविड सॉन्डर्स। कर्नल इन्हें एक उपनाम मिला था, एक तरह का टाइटल मिला था फ्रॉम द गवर्नर ऑफ केंटकी, जहां पर इन्होंने शुरुआत की थी केंटकी फ्राइड चिकन की। केंटकी को KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन के लिए हमेशा सदियों तक जाना जाएगा। 5 साल की उम्र में वो लड़का जब अपने घर पे खाना बनाता था, जब उसकी माँ नौकरी पर जाती थी, तब उसने नहीं सोचा था कि एक दिन यही चीज उसके इतने काम आएगी जो KFC बनकर दुनिया के सामने आएगी। हमें नहीं पता कि पजल के कौन से पीस से कौन सी पिक्चर बनने वाली है, पर ये छोटे छोटे हिस्से, वो छोटी छोटी कोशिशें हैं जो हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बनाने की। वॉक टॉक रेडियो पर कहानी वाला के साथ आज कहानियों का सफर बस यहीं तक। मेरे जाने का वक्त हो चला है, मैं भी चलता हूँ, फिर भी यहीं मिलता हूँ वॉक टॉक रेडियो पर, जो आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूँ कहानी वाला रजत, जल्द फिर मिलेंगे।

शीली वो रातों में, गहरी सी अपनी वो यादों में मैं रहा, अनकही सी बातों में, मीठी सी वो मुलाकातों में मैं रहा। बहुत सहा मेरे सारे जख्मों को दिए तूने बहुत दवा, लोग साले अपनों को देते रहते बहुत तका, बहुत खफा इन सपनों से बहुत खफा। तू भूल जाती छिपकों में अपनों

क्यों तुझे क्या तू तो मेरी हो के यू मैं किस वफा की उम्मीद रखूं तेरे ताने सुन लेता तो गाना ये आज मेरे साथ ना रहता काश बहाने ना देता तो तू शायद आज मेरे साथ ही रहता काश ये काश का जिक्र ना रहता सियाही भी पन्नों से बस कफा रहता और आज भी खुद को मैं कहता ही रहता तू साथ में होती तो ये सब

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।
0: वक्त आ

0: tune in for a better life.
1: अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते।
2: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज की दुनिया में बहुत से दोगले लोग पाए जाते हैं जो अगर आपके दोस्त बन जाए तो दुश्मनों की भी कमी नहीं महसूस होने देते। इसीलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से बचे रहें और हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं और आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्रा, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: Every day.

0: जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे एफर्ट से आपका गोल धीरे धीरे पूरा होता है। हर दिन की मेहनत काउंट होती है। एक एक दिन जब आपने अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया, आपके दोस्त घूम रहे थे लेकिन आप अपने गोल को पाने के लिए काम कर रहे थे, यही तो टेस्ट है मेरे दोस्त। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन पूरे मन से पूरी लगन से लगे रहना, और जब आखिरकार वो गोल आप अचीव करोगे तो ट्रस्ट मी, माउंट एवरेस्ट चढ़ना और वो गोल अचीव करना एक ही जैसी फीलिंग होगी।
1: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: कुछ करके दिखाने की चाह रखने वाले रास्ते में आने वाले पहाड़ों से नहीं डरते। कुछ ऐसी ही बुलंद हौसले रखने वाले एक इंडियन, जिनके बारे में हमने अपनी किताबों में भी पढ़ा है, अनसंग चैंपियंस में आज मैं उनकी कहानी लाई हूँ, जिन्होंने एवरेस्ट के साथ साथ हमारे दिलों पे भी एक हिम्मत की छाप छोड़ दी। कहानी है बछेंद्री पाल की, उत्तराखंड में जन्मी एक ऑर्डिनरी लेडी की, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट से हम देशवासियों को सिखाया कि जो आपकी ट्रू कॉलिंग है वो आपको किसी भी तरह से अपने पास बुला ही लेती है। बछेंद्री जी का जन्म भारत की देवभूमि यानी उत्तराखंड में नाकोरी गांव में 1954 में हुआ था। उनके पिताजी श्री कृष्ण सिंह पाल जी एक किराने की दुकान चलाते थे। बछेंद्री जी एक बैकवर्ड गांव से बिलोंग करती हैं। आज के टाइम पे इतनी अवेयरनेस के बाद भी गांव के लोगों की मेंटेलिटी थोड़ा नैरो ही होती है, तो सोचिए उस समय कितना मुश्किल रहा होगा अपने मन की इच्छा पूरी करना और सोसाइटी के संग चलना। बछेंद्री जी को पढ़ाई से बहुत प्यार था। गांव में लड़कों को तो पढ़ाया जाता था, पर लड़कियों के लिए 10वीं पार करना भी बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी। बछेंद्री जी को लोगों ने पढ़ने से बहुत रोका टोका, फिर भी बछेंद्री

और फिर उन्होंने अपनी एजुकेशन लाइन शिफ्ट करी। बछेंद्री ने एमए किया संस्कृत में और देहरादून के डीएवी कॉलेज से बीएड भी किया और वो अपने गांव से पहली लड़की थी जिन्होंने डिग्री हासिल की थी। एजुकेशन खत्म होने के बाद बछेंद्री जॉब ढूंढ रही थी और एक साल तक बेरोजगार बैठी रही। उनको एमए बीएड के अराउंड ही जॉब चाहिए थी। कहते हैं कि वो बहुत कठिन समय था उनके लिए, क्योंकि इतनी मुश्किलों से लड़कर पैसे इकट्ठा करके पढ़ाई पूरी करी, लेकिन उसके बावजूद उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। लोगों से ताने भी पड़ने लगे कि पढ़ाई लिखाई करके घर पे बैठी हैं। उस दौरान बछेंद्री की मुलाकात कर्नल प्रेमचंद से हुई, जो एक रिनाउंड माउंटेनियर थे। उन्होंने बछेंद्री को सजेस्ट किया कि तुम स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो और पढ़ी लिखी भी हो, तो तुम माउंटेनियरिंग को एज अ करियर क्यों नहीं चुन लेती। वो माउंटेनियरिंग का कोर्स करने के लिए बछेंद्री को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं थी, उनके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो बछेंद्री ने अप्लाई किया और बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करना शुरू कर दिया। इसी बीच बछेंद्री को एक चिट्ठी आई इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से कि वो प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए सिलेक्ट हो गई हैं, और बछेंद्री को उसका विलिंगनेस का रिस्पॉन्स भेजना था, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लकीली उन्हें वहां से फिर एक रिमाइंडर आया, तो अब वो चिट्ठी लेके गई अपने कोच के पास और उन्होंने समझाया बछेंद्री को कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा डोर नॉक कर रही है, इसे मत जाने दो। यहाँ से संघर्ष शुरू हुआ उनका एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी का। बछेंद्री कहती हैं कि उस समय वो 100% फोकस्ड हो चुकी थी और उन्हें एवरेस्ट किसी भी कीमत पे चढ़ना था। जब हम कुछ भी बड़ा करने लगते हैं तो हमारे रास्तों में मुश्किलें तो आती ही हैं। जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी तो गांव के लोग उन्हें ताने सुनाने लगे। पिताजी की तरफ से उनको ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन उनकी माँ को नहीं पसंद था उनका ऐसे पहाड़ों पे जॉगिंग जाना, लोगों के ताने सुनना। इसलिए कोई ये ना बोले कि बछेंद्री टाइम वेस्ट कर रही है, वो पहाड़ों से लकड़ियाँ चुनके ले आती थी। इससे दोनों काम हो जाते थे, उनकी प्रैक्टिस भी और घर का काम भी। बछेंद्री काफी जिद्दी थी अपने गोल्स के लिए। जैसे उन्हें पढ़ाई पूरी करनी थी वो उनका पहला गोल था, वो पूरा करके दिखाया। फिर उन्हें एवरेस्ट पार करना था, वो भी पूरी लगन के साथ कर रही थी। लाइफ में ना आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे दूर चली जाती है। जैसे ही आप उसे जाने देते हो और फोकस शिफ्ट करते हो तो वो चीज आपके लिए वर्कआउट कर जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ बछेंद्री के साथ। जैसे ही प्रैक्टिस का थोड़ा फोकस शिफ्ट हुआ, उनको आया टाटा से जॉब ऑफर। उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। उनके छोटे से गांव में ऐसा ऑफर आना, वो भी किसी लड़की के लिए, बहुत ही सम्मान की बात थी। गांव की तरफ से जो सोशल प्रेशर पड़ रहा था उस पे रोक लग गई थी। फिर उन्होंने अपनी ट्रू कॉलिंग सुनी। निकल पड़ी बछेंद्री एवरेस्ट के सफर पे। चढ़ते हुए भी सफर बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन वो ऑलरेडी लाइफ का एक एवरेस्ट पार कर चुकी थी, पढ़ाई करके, जॉब करके। तो इस एवरेस्ट को पार करने के लिए उनमें पूरी क्षमता थी। एवरेस्ट चढ़ते समय एक बार आधी रात को उन्हें एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आई। पहले उन्हें लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन फिर समझ आया कि उनकी बॉडी पे इतना वेट पड़ रहा है और वो एवलांच के नीचे दब गई हैं। एक पल के लिए उन्होंने मान लिया कि अब बच पाना मुश्किल है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके टेंट पार्टनर के पास नाइफ था और नाइफ के कारण दोनों बच गए। अपनी जान बचाकर उन्होंने अपने साथ वालों को भी वहां से निकाला। आसान तो बिल्कुल भी नहीं था ये सफर। माउंटेनियरिंग बहुत ब्रेवरी स्पोर्ट है और छोटे से गांव से आई हमारी आज की चैंपियन ने माउंट एवरेस्ट के साथ साथ लाइफ के भी एवरेस्ट का सामना किया और पद्मश्री, पद्म भूषण और अर्जुन अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स अपने नाम किए। देश के हर उस सिटीजन के लिए जिन्हें लगता है कि उनके पास एक्सपोजर नहीं है लाइफ में, उन सब के लिए एक मिसाल बनी बछेंद्री पाल। ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी। ऐसी ही कुछ और कहानियों के साथ लौटेंगे ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक
1: रेडियो। हम हमेशा उपवास रखते हैं खाने का, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? उपवास लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। सिर्फ अपनी बॉडी को डिटॉक्स मत करिए, अपने मन को भी करिए। अपने दिमाग से जो आपके बेकार थॉट्स हैं, उनको भी निकालिए।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

कुछ को जो तू अब समा गई है आके दीवानी तू है मगन हूँ मैं भी इसमें शामिल दिया है सब कुछ पर कर ना पाया कुछ भी हासिल ना हो कुछ टचवुड वो भी जाए तो ठहरे कातिल था मेरा सब कुछ अब आंसू

बातों से डरे, उजाले जिनके मुंह पे तो ये सूरज भी जले। मांगी मन्नतें भी काफी, जन्नत है जहाँ की तू अमर रहे सदा ही। बातें बाकी सफर में काटे काफी, गम को हम बांटे तो ये दिल क्यों मांगे माफी। क्यों खुश होता तेरी खुशी के साथ, क्यों तोड़ा गर्म मिजाज।

कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

मेरे दोस्त, सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे, तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में, तू चाहे वो वक्त ले ले।

0: रेडियो।
1: कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।

बात है 2018 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप्स की। सबकी नजरें थी ट्रैक पे भागते हुए खिलाड़ियों पर और उन्हीं खिलाड़ियों में भाग रही थी हिंदुस्तान की बेटी, जिसको उस समय शायद ही कोई जानता था, या यूं कहें कि शायद ही किसी को पता था कि ऐसी कोई लड़की भारत को वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट करने भी गई है। रेस खत्म होते ही इतिहास रचने की खुशी मनाती हुई और भारत का नाम ऊंचा करने वाली उस चैंपियन की बात कर रही हूँ मैं आज आपके साथ कविता, और शो का नाम है अनसंग चैंपियंस, जहां मैं आपके लिए रोज लेकर आती हूं दुनिया के ऐसे दमदार चैंपियंस की कहानियां, जिन्होंने अपने सपनों के सामने दुनिया की किसी भी मुश्किल को कभी ना आने दिया और मिसाल बने हम सबके लिए अपने जोश और जुनून से। आज हम शो में बात करेंगे भारत के लिए 2018 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला गोल्ड लाकर इतिहास रचने वाली हिमा दास की। अब तक हिमा दास कई सारे मेडल्स देश के लिए ला चुकी हैं और ये असम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हिमा ने मात्र 18 साल की उम्र में इतिहास रचने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक भारत का नाम बहुत से इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में रोशन करके हमें गर्व करने का मौका दिया है। हिमा के मन में बचपन से इंडियन जर्सी पहनने का जुनून था। वो सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानती थी और ये अक्सर उनको अपने इंटरव्यूज में कहते सुना गया है। हिमा की माने तो सचिन ही उनकी इंस्पिरेशन है, जिनके कारण उनके मन में इंडियन जर्सी पहनने का सपना घर कर गया था। यूं तो हिमा खेलना सिर्फ इसलिए चाहती थी क्योंकि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी और साथ ही साथ उनको लगता था कि स्पोर्ट्स की वजह से उनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। पर जब उन्होंने सचिन को जर्सी में देखा तो वो इंडियन जर्सी पहनना उनका लक्ष्य बन गया था। वो एक ऐसा सपना था जो हिमा किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती थी। हिमा दास के जन्म और घर की बात करें तो हिमा का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के नागांव जिले के ढिंग गांव में हुआ था और इसी वजह से वो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती हैं। हिमा एक फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो 6 भाई बहन हैं। हिमा को बचपन से स्पोर्ट्स में रुचि थी। उनके पापा भी फुटबॉल प्लेयर रहे हैं और काफी क्लब्स के लिए वो फुटबॉल खेलते थे, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इसे आगे ना ले जा सके। उनसे इंस्पायर होकर ही हिमा ने फुटबॉल खेलना शुरू किया और यही एक कारण है कि उनको अपने पिता का हमेशा सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि वो खुद एक स्पोर्ट्समैन थे और हिमा को समझ सकते थे। हिमा फुटबॉल तो अच्छा खेलती ही थी और उसमें आगे भी जाना चाहती थी, पर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फुटबॉल छोड़कर ट्रैक स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाया? चलो ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हिमा ने ट्रैक गेम्स को ज्वाइन किया और इतनी छोटी सी उम्र में इतना काम कर लिया। हिमा को स्पोर्ट्स में खूब दिलचस्पी थी और वो स्कूल के हर एक इवेंट में भी भाग लेती थी। रेसिंग, शॉट पुट, लॉन्ग जंप और बाकी और सब में गोल्ड हासिल करती थी, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी थी। हिमा के पास ना ही फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा ग्राउंड होता था और ना ही अच्छे जूते, इसलिए वो अपने खेत में गाँव के बच्चों के साथ खेला करती थी। कुछ समय बाद स्कूलों में प्रतियोगिताएं खत्म हो गईं। तब उनके स्कूल में एक योगा का नोटिस आया। ये एक महीने का कैंप था और सुबह 4:30 बजे से 6 बजे तक हिमा रोज इसमें जाती थी। हिमा योग को जिस डिसिप्लिन से फॉलो किया करती थी, उसी डिसिप्लिन को देख के हिमा के पीटी टीचर ने उन्हें एथलीट बनने का सुझाव दिया। उनका सुझाव मानकर हिमा ने इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। जिस तरह के बैकग्राउंड से वो आती थी, उन्हें डर था कि इस मुकाबले में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, पर पहुंचने पर हिमा को रियलाइज हुआ कि उनके पास भागने के लिए स्पाइक्स वाले जूते भी नहीं थे। हिमा ने जूतों की परवाह ना करते हुए रेस में पार्टिसिपेट किया और वो अपने साधारण जूतों में भागी और नागांव डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर हिमा दास डिस्ट्रिक्ट खेलती रही और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे स्ट्रगल करते करते धीरे धीरे हिमा ने अपने सपने को पाने की शुरुआत की। अब हिमा ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपना नाम बना लिया था, पर ऐसे जाने माने डिस्ट्रिक्ट के मैचेस तो साल में एक ही बार होते थे, तो अब सवाल ये था कि बाकी के समय क्या करें। ढिंग गांव में इतने प्रैक्टिस के ज्यादा साधन तो नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोबारा से क्लब में जाकर फुटबॉल खेलना शुरू किया,
ताकि उनका खेल से संबंध बना रहे। कुछ समय बाद 2017 आसाम गवर्नमेंट की तरफ से एक महीने के लिए फंड रेजिंग कैंप का आयोजन किया गया, तो हिमा ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने वहां मन लगाकर अभ्यास किया। हिमा के इस लगन और अभ्यास को फंड रेजिंग कैंप में दो शख्स गौर से नोटिस कर रहे थे। वो शख्स थे निपुण दास जी और अभिजीत जी। उन्होंने हिमा को गुवाहाटी आने को कहा क्योंकि वो हिमा की प्रतिभा जान गए थे। इस सुझाव को लेकर हिमा वापस अपने घर गई और उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस विषय पर चर्चा की। इस बात से उनकी माँ ज्यादा खुश नहीं थी, पर उनके पापा का उनको पूरा सहयोग था। उनके पिता रंजीत दास जी जानते थे कि एक प्लेयर का दिल कैसा होता है। वो हिमा का जज्बा समझते थे और आपको तो पता है माँ का दिल कैसा नरम होता है। वो नहीं चाहती थी कि हिमा उनसे दूर जाए, पर हिमा के जुनून ने अपनी माँ को भी मना ही लिया। जेब में सिर्फ 350 रुपए लेकर हिमा अपने गांव से गुवाहाटी को चली। हिमा मात्र 17 साल की थी। उनका इस जगह रहने का कोई ठिकाना न था। काफी दिक्कतों के बाद निपुण दास जी और अभिजीत जी ने गुवाहाटी के एक डॉक्टर के सहयोग से हिमा के रहने और खाने का इंतजाम किया। गुवाहाटी में 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद हिमा को खेलने के लिए हैदराबाद जाने का मौका मिला। उनका जो बचपन से सपना था कि वो एक दिन इंडियन जर्सी पहने, वो आखिर पूरा हो गया था। हैदराबाद में जूनियर यूथ एशियन चैंपियनशिप की एक सिलेक्शन लिस्ट निकली और उसमें बैंकॉक जाने की टीम में हिमा का भी नाम आया। हिमा फिर बैंकॉक गई। वहाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, पर हिमा वहाँ 6th पोजीशन पे आई। साहिर सी बात है, वहाँ का कंपटीशन लेवल भी बहुत हायर रहा होगा, लेकिन हिमा 6th आने से बिल्कुल निराश नहीं हुई, क्योंकि वो जूनियर यूथ एशिया चैंपियनशिप में जरूर 6th आई थी, पर इंडिया से तो वो पहली लड़की थी जिसका सिलेक्शन हुआ था। और इस बात की खुशी हिमा को कई ज्यादा थी। और इस इंडियन जर्सी पहनने का और इंडिया को रिप्रेजेंट करने की इच्छा का पहला कदम पूरा हुआ। जूनियर यूथ एशियन चैंपियनशिप के बाद हिमा वापस गुवाहाटी जाकर प्रैक्टिस करने लगी। तब उनके कोच निपुण जी ने हिमा को कहा कि अब सीनियर लेवल की तैयारियां शुरू करो। तो 18 साल की हिमा ने सीनियर लेवल की ट्रेनिंग शुरू कर दी और चेन्नई जाकर सीनियर लेवल पर परफॉर्म किया। उस कॉम्पिटिशन में हिमा सबसे छोटी थी और अपने से उम्र और तजुर्बे में बड़े प्रतियोगियों को देख के हिमा डर सी गई और ठीक परफॉर्म नहीं कर पाई। उस परफॉर्मेंस को देखकर उनके कोच से उनको काफी डांट पड़ी और डांट का असर कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन हिमा ने फिर गोल्ड लाके दिखाया। इस रेस को फेडरेशन के मेंबर्स भी परख रहे थे। कुछ समय बाद निपुण दास जी को फेडरेशन मेंबर्स ने कॉल करके कहा कि हिमा को इंडियन टीम भेज दो। हिमा की लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट था। हिमा काफी खुश थी। हिमा ने लगन के साथ इंडियन टीम के सीनियर से ट्रेनिंग ले, पटियाला, पोलैंड और भी अलग अलग जगहों पर जाकर ट्रेनिंग ले, और इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में बैक टू बैक इतिहास रचा। उनकी इस उपलब्धि के बाद एडिडास जैसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड ने उनको घर आते ही अपना ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया ही, साथ ही साथ उनके नाम के कस्टमाइज शूज भी बनवाए। जरा सोचिए कैसा रहा होगा वो पल एक लड़की के लिए जिसके लिए बचपन में कभी शूज अफोर्ड करना ही एक स्ट्रगल था, जो अपने साधारण जूतों पर एडिडास लिखा करती थी। आज वो उसी ब्रांड की एम्बेसडर बन गई हैं। 2019 का जुलाई का महीना हिमा का रहा। 20 दिनों के अंतराल में 5 गोल्ड मेडल, एक बड़ी उपलब्धि हिमा ने देश के लिए हासिल करी। हिमा दास ने अपने हुनर के बलबूते पर फेमिना, वोग जैसी मैगजीन के कवर पर अपना चमकता चेहरा पहुंचाया। ये वो मैगजीन्स हैं जिसपे खूबसूरती के मानक तय होते हैं। ऐसे मुकाम पर हिमा सिर्फ अपनी काबिलियत से पहुंची हैं। हिमा दास की कहानी हमें बताती है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लें, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ खुद को पहचानने की और मेहनत की। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको पसंद आई होगी। फिर से लाऊंगी कल एक और ऐसी कहानी। मैं कविता, शो का नाम है अनसंग चैंपियंस, और सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप कर लेंगे।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

तो दोस्तों, अगर हम कर्म की बात करें तो वो हमेशा कहता है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही वो लौटकर आपके पास आएगा। तो अगर कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसा हो कि आप किसी के साथ अच्छा करने चले हैं और वो आपके साथ हमेशा बुरा ही करता है, तो अच्छा करने से पहले कभी मत सोचना कि ये मेरे साथ बुरा करता है तो मैं भी इसके साथ बुरा ही करूँगा, क्योंकि जो भी हो कर्म हमेशा लौट कर आता है। और जीवन में एक ऐसा समय आता है जब कुछ लोग पछताते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत या धोखा क्यों किया। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहे मॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio.
1: लोगों को जानने से अच्छा है खुद को जानने की कोशिश करो। दोस्तों, दूसरों में कमियां निकालने से पहले खुद की कमियों को पहचानो और उनको ठीक करने की कोशिश करो। यस, जिंदगी यही कहती है कि हम लोग अपने आसपास हर चीज में कमी, दोष और सब चीजें ढूंढते रहते हैं, बट जो खुद नहीं देख पाते खुद में, अगर हम खुद में जान के देखते हैं और खुद से बात करते हैं तो हमें पता चलता है हम सब में कमी है, बट हम सब लोग एडमिट नहीं करते हैं। तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अपने आप को पहचानिए और उसी को कुछ चेंज करके एक नए रूप में जीने की शुरुआत करिए।
0: वॉक

0: रेडियो।
1: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।
0: वॉक टॉक रेडियो।

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में, जिसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। कोशिश इतनी सी है कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ पाए। है वैसे, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले लोगों में से एक हैं। लेकिन स्टिल कभी कभी होता है ना ऐसा कि बहुत ज्यादा अपन लो फील करते हैं, या हमको थोड़ा सा लगता है कि यार हमारे साथ में कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी हार मानता है, किसमें कितना पेशेंस है। और जितना ज्यादा पेशेंस है ना हमारे अंदर, या जितना ज्यादा हम कहते ना कि धैर्य रखने वाले लोगों में से हैं, उतनी ही हमारी जिंदगी इजी गोइंग रहेगी। क्योंकि ऐसे लोगों को हड़बड़ी नहीं होती, हालांकि बहुत ज्यादा धैर्य भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो जल्दबाजी भी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं वही वाली चीज कि हर एक चीज स्वादानुसार होनी चाहिए, मिर्च हो या नमक। हद से ज्यादा चीनी भी चीज को कड़वा बना सकती है, भले ही उसका टेस्ट मीठा होता हो। तो वो वाली चीज है, पेशेंस भी एक लिमिट का होना चाहिए, और इंपेशेंट भी अगर आप हैं तो एक लिमिट तक होना चाहिए इंपेशेंट, कुछ चीजों को लेकर के होना चाहिए। आप यूं ही हर एक चीज को ओके ठीक है आ जाएगी, कल को आपको एकदम से ब्लड की जरूरत है और आप आराम से धैर्य से बैठे हैं, कभी कोई आएगा तो मिल जाए, वो नहीं चल सकता ना। ऑपरेशन अगर जो अभी होना है तो ब्लड अभी चाहिए, वहां आपका धैर्य काम नहीं आएगा, वहां पर आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जाके लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो इंपेशेंट होना भी थोड़ा सा जरूरी है। एट द सेम टाइम जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, इनके साथ में किस तरह से सर्वाइव करना है, इनके साथ में जिंदगी जीना किस तरह से सीखना है, ये हमें ही देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इस दुनिया में कोई भी बीमारी नहीं है। इतनी सारी बीमारियां आई, नई नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और उनके साथ में हम कहीं ना कहीं जिंदगी को जीना सीख रहे हैं। जैसे अभी देख लीजिए ना, अनलॉक के फेज चल रहे हैं, अभी हम कोरोना के साथ में अपनी जिंदगी को सेटल करने की कोशिश में हैं। इनफैक्ट काफी हद तक कर चुके हैं, प्रॉपर सेफ्टी के साथ में हम बाहर निकल रहे हैं, हम हमारी रूटीन लाइफ को वापस लेकर के आ रहे हैं, और यही तो एक तरीका है। ये कोरोना जैसी चुनौतियां हैं, इनके साथ में अपनी जिंदगी में किस तरह से एडजस्ट करना है, ये हम ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी नीड बन चुकी है। ठीक वैसे ही हमारी मंजिल तक पहुंचने में जो मुश्किलें हैं, उनके साथ में हमको आगे बढ़ना सीखना होगा। हम ये चाहे कि नहीं यार मुश्किलें ही नहीं आए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जिस रास्ते में कोई मोड़ नहीं होते, वो रास्ता कहीं के लिए नहीं जाता। तो अगर जो कहीं जाना है तो रास्ते में मोड़ तो होंगे ही होंगे, रास्ते के गड्ढे भी जरूरी हैं जनाब, वरना अक्सर हम अपना ध्यान इधर उधर भटका लेते हैं। तो आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि ये जो चैलेंजेस हैं, ये हमारी जिंदगी में कितने जरूरी हैं, वरना उनका क्या असर हो सकता है। तो जापानीज का क्या है कि इनको ना मछलियां सालों से बहुत ज्यादा पसंद है। इनका जो फूड है, इनकी जो डाइट है, उसका एक ऐसा पार्ट है जिनको ये शामिल करते ही करते हैं। और जो फ्रेश मछलियां हैं, उनका टेस्ट इन लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों को खाते हैं या जानते हैं, तो उनका टेस्ट आप यूं पकड़ लेते हैं। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है, तो ऐसा ही इनके साथ में भी हुआ कि जो मछलियां हैं उनको मछुआरे समुद्र के बीच में से जाकर के लेके आते थे, लेकिन जब तक वो आती थी, शहर के अंदर आती थी, तब तक वो मर जाती थी, बासी हो गई। अब समस्या ये है कि वो फ्रेश मछलियों वाला टेस्ट तो उसमें आ ही नहीं रहा, तो लोगों ने बासी मछलियां खरीदना कम कर दिया। तो जो मछुआरे थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए ताकि लोग और ज्यादा खरीदें, ये बासी ना हो। तो मछुआरों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हमारी बोट में फ्रीजर लगा देते हैं, वो मछलियां पकड़ते उनको फ्रीजर में डाल देते हैं ताकि वो लंबे समय तक ताजी बनी रहती। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का भी टेस्ट पहचान लिया, उनको वो फ्रेश वाली मिली नहीं रही, उतनी टेस्टी नहीं है ये। तो ऐसे में लोगों ने उनको भी खरीदना कम कर दिया। मछुआरे फिर से एक बार टेंशन में कि अब क्या करें। फिर से उनकी पूरी मीटिंग हुई, बाकायदा सोचा, आइडियाज लिए गए, एक सोल्यूशन मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में एक फिश टैंक बनवा लिया, मछलियां पकड़ते और उन्हें पानी से भरे हुए फिश टैंक में डाल देते, और इस तरह से ताजी और जिंदा मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन अब इसमें भी समस्या, फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक तो इधर उधर चलती, लेकिन जगह ज्यादा नहीं थी तो एक ही जगह रुक जाती। अब जब तक मछुआरे किनारे तक पहुंचते, वो सांस तो ले रही होती, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली समुद्र में वो खुले में इधर उधर घूम रही हैं, तो न तो उनके अंदर वो एनर्जी है, तो उनका जो टेस्ट है वो भी बदल जाता, और लोगों ने चेक करके ये भी अंतर पहचान लिया कि ये ताजी तो नहीं है। मछुआरों को समझ नहीं आ रहा ये क्या करें क्या, टेंशन में आ गए वो, पूरा उनका एसोसिएशन, पूरा यूनियन बैठ करके डिसाइड कर रहा था कि क्या करें क्या करें, लोगों को बोलें कि हम फ्रेश नहीं दे पाएंगे। तो अचानक से एक छोटा सा बच्चा साइड से बोला, उसने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको प्रॉब्लम ये है ना कि फिश टैंक में मछलियां एक जगह रुक जाती हैं और इस वजह से उनकी उनका जो टेस्ट है वो बदल जाता है। आप एक काम करिए, एक छोटी सी शार्क लीजिए और उन मछलियों के बीच में डाल दीजिए। लोगों ने ये सुना, उनको आइडिया अच्छा लगा, और उसके बाद में उन्होंने यही किया, उन्होंने फिश टैंक में मछलियां डालने के बाद एक शार्क उसमें डालनी शुरू कर दी।
अब वो जो शार्क थी वो फिश टैंक के अंदर की कुछ मछलियों को खा तो जाती थी, थोड़ा सा नुकसान होता था, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी उनमें एनर्जी और ताजगी बनी रहती थी, क्योंकि शार्क है, उनसे बचने के लिए मछलियां भागती रहती थी, शार्क उनके पीछे, वो इधर उधर भाग रही है, डर के मारे पूरे समय इधर उधर मछलियां भाग रही है। यानी कि टैंक में है वो, लेकिन फिर भी फ्रेश है, और लोगों ने बड़े चाव से उनको लेना, खरीदना और खाना शुरू किया। उस छोटे से बच्चे की सजेशन की वजह से जापानीज मछुआरे जो थे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया। और यही तो हमारी जिंदगी में होता है। हमारी जिंदगी में भी ये शार्क के रूप में जो चैलेंजेस है ना, ये जब तक नहीं आते हम ऐसे ही बेजान पड़े रहते हैं। सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन जिंदा दिली हमें होती ही नहीं है, एक ही रूटीन में बंद के रह जाते हैं। 9 से 5, ये 9 से 5 इतना ज्यादा बोरिंग क्यों माना जाता है? क्योंकि लाइफ में कुछ और डिफरेंट है नहीं। सुबह उठकर के ऑफिस जाना, ऑफिस में पूरे दिन काम करना, शाम को वापस आना, सो जाना, खाना खा के और वही रिपीट करना। इसीलिए तो वीकेंड्स दिए गए ताकि हमारा रूटीन थोड़ा सा चेंज होता रहे, हम हमारी जिंदगी में कुछ नया करें, उन मछलियों की तरह बस एक धर्रे पर ना चले। और यही ट्राई करिए, चैलेंजेस हैं तो उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द सेम टाइम एक जगह मत पड़े रहिए, बोरिंग हो जाती है जिंदगी, और छोटी सी जिंदगी, एंजॉय करो इसको जो पल मिले। कुछ लोग होते हैं ना जो एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस में देते हैं, बैठे हैं आराम से, वीडियोस देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। बाहर इतनी बड़ी दुनिया है, बाहर इतने सारे लोग हैं, निकलिए, दुनिया को देखिए, जिए। वैसे भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट हम ऑफिस के अंदर ही दे रहे हैं, 24 घंटे में से हर दिन 9 घंटे ऑफिस के अंदर। इससे ज्यादा वक्त मत दो, स्मार्टली काम करो, टाइम पर काम निपटाओ और निकलो। और ये चैलेंजेस जो है इनको एक्सेप्ट करो, इनके साथ में रहना सीखो, इनके साथ में आगे बढ़ना सीखो, और उसके बाद में जो जीत होगी वो हमारी होगी। और ये हमें क्यों लगता है कि चैलेंजेस सिर्फ हमारी जिंदगी में है? जितनी बड़ी मंजिल उतने बड़े चैलेंजेस। जो हमारी मंजिल है ना वो भी उस समय पर जाते ही सफर

0: रेडियो आपके और आपकी सफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी है। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी कबूल हो जाएंगे।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमारी जिंदगी कभी भी कुछ मिनटों की मेहमान नहीं होती जो गिनती के पलों में बदल जाए। पर हाँ, अगर आप अपने फैसले कुछ मिनटों के आधार पर लेते हैं तो वो आपकी जिंदगी को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपनी लाइफ के छोटे या बड़े फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

वेलकम बैक, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो, एक कोशिश छोटी सी आपको मोटिवेट रखने की, आपको पॉजिटिव रखने की, और आपकी जिंदगी की जो समस्याएं हैं कोशिश करते हैं कि उनका हल थोड़ा सा मिल सके, ताकि आपकी जो स्माइल है ये खूबसूरत वाली, ये यूं ही बरकरार रहे, आपका चेहरा खिला खिला रहे और सेल्फी के लिए एक्स्ट्रा पाउट की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही स्माइल आप कर सके। सो बेसिकली आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मंजिल और सफर के बीच के अंतर की। एक बात समझिए, एक छोटी सी बात, कि हमारा जो आज है ये भी एक दिन कल हो जाएगा, और हमारा आने वाला जो कल है वो भी किसी दिन आज होगा, और वो भी गुजरा हुआ कल हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, आई मीन यही तो है पूरा प्रोसेस। हर किसी ने लाइफ में ना अपने टारगेट सेट कर रखे हैं, गोल सेट कर रखा है। हमको लगता है कि हमारी मंजिल, एक तो ना मुझे मंजिल वाली चीजें कभी समझ नहीं आती, क्योंकि इस दुनिया में ना ट्रस्ट मी मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। मैं दुनिया से बिल्कुल ही उलट बोल रहा हूं, लेकिन अब मैं प्रूव करूंगा मेरी बात को कि मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये एक इमेजिनरी दुनिया है जो हमने सोच ली है कि मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। मुकाम बोल सकते हो आप, लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल का मतलब ये हुआ कि अब आपका सफर हो गया है खत्म, आप पहुंच गए आपको जहां जाना था। सपोज आपको दूध लेने के लिए जाना है और आपको दुकान तक जाना है, आपकी दुकान है आपकी मंजिल, उसके बाद खत्म हो गया। आगे का प्रोसेस चलिए ठीक है, इग्नोर कर दीजिए। ऑफिस से आपको घर पहुंचना है, घर आपकी मंजिल है, आप घर पहुंच गए, आप घर रुक जाइए, सफर का अंत हो गया, ये है मंजिल। तो क्या हमारी जिंदगी में सच में कोई मंजिल है? नहीं, मुकाम बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि मुकाम किसी भी चीज का एंड पॉइंट नहीं है, मुकाम के साथ में भी जर्नी तो कंटिन्यू है। मंजिल हम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ना हमने अलग अलग कुछ गोल सेट किए होते हैं। किसी इंसान का गोल है कि उसके अकाउंट में कम से कम इतना पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, किसी इंसान का गोल है कि उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, किसी इंसान का गोल है कि उसको मैनेजरियल पोजीशन पर जाना है, मैनेजर बनना है, किसी इंसान का गोल कुछ और है। हर किसी के गोल अलग हैं, वो गोल तक पहुंचने को हम मंजिल मिलना तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एंड पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट वहां से एक अलग सफर शुरू होता है, थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार सफर शुरू होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज मेरा सपना है कि मुझे अपना एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जो कि इस शहर में सबसे बड़ा हो, जिसके बहुत सारे कंज्यूमर्स हों। मैंने बिजनेस खड़ा कर लिया, मैं वहां तक पहुंच गया, क्या मुझे मेरी मंजिल मिल गई? नहीं, सफर तो जाने मन अब शुरू हुआ है, बड़े चैलेंजेस तो अब आएंगे। छोटे रास्तों पर आप आराम से चल सकते हैं, बड़े रास्तों पर ज्यादा केयरफुली चलना पड़ता है। वही वाली बात कि जितने बड़े गोल्स होते हैं उतने बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। तो मंजिल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, मुकाम होते हैं। तो मुकाम के पीछे भागिए, मंजिल के पीछे नहीं, क्योंकि आप वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही आपके फिर गोल बदल जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा ना, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो बड़े छोटे छोटे से गोल्स होते हैं हमारे, बड़ी ही छोटी छोटी सी मंजिल होती है। जब तक हमारी जॉब नहीं लगी होती, हमको लगता है 15-20 हज़ार की कोई जॉब मिल जाए जिसमें हम हमारे खर्चे पूरे कर सकें, होता ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, मुझे मेरे घर वालों से पैसे नहीं लेना पड़े, मेरी जिम की फीस, मेरा पेट्रोल, मेरा ये वो, हमारी बस इतनी सी ख्वाहिश होती है। जब 15-20 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाती है, फिर हमको लगता है यार 50-60 हज़ार तो हूं कम से कम, यहां तक पहुंचते हैं तो फिर लाखों में होने लगता है। धीरे धीरे धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं।

जैसे जैसे हम हमारे गोल्स को अचीव करते जाते हैं, हमारे नए गोल सेट होते जाते हैं। कभी हमारा सपना सिर्फ साइकिल का होता था, फिर बाइक का हो गया जब साइकिल मिल गई, तो फिर जब बाइक मिल गई तो कार का हो गया, जब कार मिल गई तो फिर ऑडी बीएमडब्ल्यू का हो गया। बदलती जाती हैं चीजें, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि इच्छाओं को खत्म करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छाएं खत्म हो गई ना तो जिंदगी से रंग चले जाएंगे। हमारी इच्छाएं हैं और हम उन्हीं को पाने की या पूरी करने की कोशिश करते हैं, और वही तो फन है जिंदगी का। वरना एक पेड़ को देख लीजिए ना, बड़ा होता है, एक ही जगह रहता है और वैसा ही खत्म हो जाता है। सालों साल तक वही चलता रहता है प्रोसेस। उसकी जिंदगी में डिफरेंट कुछ नहीं है। सीजन आता है, फल आते हैं, लोगों को फल देता है, वापस पतझड़। हमारी जिंदगी, हम इंसानों की जिंदगी अलग है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में इतने सारे रंग हैं। जानवर हैं, उनके कोई ऐसे गोल्स नहीं है, उनका बस एक सर्कल चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है कि उनको खाना है, सोना है, खाना है, सोना है। मतलब इस एपिसोड में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक तो मंजिल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, मंजिल है ही नहीं कोई। पूरी जिंदगी सफर में जाती है और फाइनली गुजर जाते हैं हम। मिली है आज तक किसी को मंजिल? आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से जो मंजिल है, सफर वहां पर भी है। रास्तों की तरह जो एंड पॉइंट सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, जहां सड़क खत्म हो रही है, आपको लग रहा है कि ये खत्म है यहां पर सड़क, वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो वो एंड पॉइंट और आगे बढ़ जाता है और सड़क कहीं और खत्म हो रही होती है। बट असल में सड़क कहीं खत्म होती ही नहीं। यही बात है कि मंजिल जैसी कोई चीज नहीं है, मुकाम होते हैं और उन मुकाम की लड़ाई है हमारी ये पूरी जिंदगी जो हम लड़ते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। दूसरा, इच्छाएं खत्म नहीं होनी चाहिए, जीने का मजा ना खत्म हो जाता है। आप प्रोग्रेस करना बंद कर देते हैं, आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। लोग इसको लालच बोलते हैं, बट मुझे लगता है ये लालच नहीं है, ये पुश है। हम अगर जो सोचेंगे नहीं, उसके सपने नहीं देखेंगे, तो उसको पाएंगे कैसे? और कोई बुराई नहीं है इसमें। आई मीन, आज मेरे पास बाइक है, मुझे कार की चाहत है, आज मेरे पास कार है तो मुझे, अब सपोज मेरे पास हैचबैक है, मुझे एसयूवी चाहिए या फिर मुझे जीप चाहिए, तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, मैं पैसे इकट्ठा करूंगा, और वही तो फन है। ये लालच नहीं है, ये आगे बढ़ने का एक जुनून है, एक पुश है जो हमें पीछे से मिल रहा है और जो बहुत जरूरी है। तो अपनी इच्छाओं को बरकरार रखिए, मंजिल की लड़ाई मत लड़िए, मुकाम की लड़ाई लड़िए, क्योंकि मंजिल है ही नहीं इस दुनिया में। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए भी कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपको समझ आए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस भी हालात में है, हंसिए और मुस्कुराइए। एक बात बताइए, आज आपका बुरा वक्त चल रहा है या कुछ ऐसा हुआ जो आपके हिसाब से सही नहीं है? आपके हिसाब से इसलिए मैंने थोड़ा सा जोर देके बोला है क्योंकि कुछ चीजें हमारे लिए सही होती हैं जो आज गलत हैं। हम आज देख नहीं सकते उनका पॉजिटिव साइड। जिस तरह से दवा कड़वी होती है लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इफेक्ट है वो हमारे भले के लिए है, ठीक वैसे ही आज की मुश्किलें, आज का बुरा वक्त किसी न किसी के अच्छे दिन के लिए ही बना हुआ है। वो उस वक्त जाके हमको रियलाइज होता है कि अच्छा यार, ये हुआ, अच्छा ही हुआ। तो इसलिए आज का जो बुरा वक्त है, क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर टेंशन किस बात की, और अगर नहीं कर सकते तो भी टेंशन किस बात की? जीरो से शुरू किया था आपने, यहां तक खुद के बलबूते पर पहुंचे हो, ये याद रखना। और जब आप यहां तक पहुंच सकते हो ना, तो कितने ही नीचे गिर जाओ, आप फिर से वापस उतना ही ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। फेलियर्स को कभी भी दिल पे मत लेना, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड।

0: रेडियो।
1: जीवन में कितने भी परेशानियां क्यों ना आए, कितने भी दिक्कतें क्यों ना हो, तुम कभी कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज के तपन से समुद्र कभी सूखा नहीं करते।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

वेलकम बैक, माय नेम इज समर। शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। कैसे हैं आप? पहले से ज्यादा खूबसूरत? ऑफ कोर्स होंगे यार। ट्रांसफॉर्मर्स की कोशिश भी यही है कि थोड़े से आप स्माइल करते रहिए, और ये स्माइल है ना, ये बेस्ट मेकअप है इन दिस वर्ल्ड। आप थोड़ा सा स्माइल करिए, आप यूं ही खूबसूरत लगने लगते हैं। एक कहावत मेरे आसपास के जितने भी बुजुर्ग हैं वो जरूर कहा करते थे, मैंने बचपन में ये कहावत बड़ी सुनी है। तो वो ये बोला करते थे कि अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है। बेसिकली इस कहावत का मतलब ये था कि आपको जो काम करना है आप खुद करो, तभी आप उसको बेहतर कर पाओगे। अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है, किसी और के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो आप जैसा चाहते हो वैसा काम कोई और करके दे नहीं सकता। अगर आप किसी काम को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो तो कोशिश करो कि उसको खुद करो, क्योंकि जब आप खुद करोगे तो अपने तरीके से कर पाओगे। किसी और पर डिपेंडेंट रहोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। एक कहानी सुनाता हूं इससे जुड़ी हुई। तो एक बार एक गांव में किसान रहता था। उसके गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। उसका फसल बोने के कुछ दिनों के बाद में उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ वक्त बीता, चिड़िया ने वहां पर दो अंडे दे दिए। उन अंडों में से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आए और बड़े मजे से आराम से वो खेत में रह रहे हैं। कुछ महीनों के बाद में फसल की कटाई का वक्त आ गया। तब तक वो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों को यह टेंशन कि अब उनको इस खेत को छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब फसल की कटाई होगी तो उनका घोंसला वैसे ही बिगड़ना है। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते हुए सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसको खेत में भेजूंगा ताकि वो फसल कट सके। और यह सुनकर के चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो बच्चों ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे किसान आया था और वो ये बोल रहा था कि अपने पड़ोसी को भेजेगा और ये फसल कटवाएगा। आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पर, हमें रात में ही किसी दूसरी जगह के लिए निकल लेना चाहिए। चिड़िया ने कहा, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। इसके बाद में आराम से वो सो गए और चिड़िया की बात एकदम सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को किसान फिर से खेत में आया। खेत को जैसे का तैसा देख करके बुदबुदा

लगा कि यार ये पड़ोसी तो नहीं आया, ऐसा करता हूं कल अपने किसी रिश्तेदार को यहां पर भेजता हूं, वो फसल काटेगा। चिड़िया के बच्चों ने फिर से सुनी। चिड़िया जब वापस लौट करके आई, उसको फिर से बताया कि ये किसान आज बोल रहा था कि मैं किसी रिश्तेदार को भेजूंगा। चिड़िया फिर से मुस्कुराई, बोली तुम लोग चिंता मत करो, आज की रात तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। और ऐसा ही हुआ, अगले दिन किसान का रिश्तेदार नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान कि उसकी माँ जो बोल रही है उसकी सब बातें सही साबित हो रही हैं, ऐसे कैसे पता है इसको कि वो आएगा या नहीं आएगा। अगले दिन शाम को फिर से किसान खेत में पहुंचा, खेत की फसल देखी तो वैसी की वैसी खड़ी हुई। बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं है, कल मैं खुद आकर के अपनी फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात सुनी। जब उनकी माँ लौट के आई तो उन्होंने बताया कि आज किसान ये बोल रहा था कि कल मैं खुद आकर के अपनी कटाई करूंगा। तो चिड़िया बोली, बच्चों अब समय आ गया है इस खेत को छोड़ने का, हम आज की रात ही ये खेत छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। अब दोनों बच्चे हैरान कि इस बार में ऐसा क्या है जो माँ ने खेत छोड़ने को कहा है। उन बच्चों ने चिड़िया से पूछा कि आपको कैसे पता कि वो अब आएगा ही आएगा, दो बार उसने और भी बोला था तब भी तो नहीं आया कोई। तो चिड़िया ने कहा कि देखो, पिछली दो बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट था, उसने दूसरों को कह करके अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और इसीलिए वो जरूर आएगा। और उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ करके कहीं और चले गए। अगले दिन किसान आया, उसने अपनी कटाई शुरू कर दी। कहने का मतलब, दूसरों से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि तय समय पर खत्म हो और परफेक्शन के साथ में हो, वैसा ही जैसा आप चाहते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करता है। ये चीजें हमारे पापाओं से बहुत सीखने को मिलती है। अक्सर वो ताने मारने में कह देते हैं ना कि तुमसे काम करने से बेहतर है हम खुद ही कर लें, तो उसका रीजन भी यही है, क्योंकि जैसा काम वो चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। कभी आपने नोटिस किया है घर में ऐसा होता है, जो हमारे दादाजी होते हैं या बड़े लोग होते हैं, पापा जी चाचा जी, वो लोग हमसे काम करने को बोलते हैं, एंड ये बचपन में ज्यादा होता है। हमारा किया हुआ काम उनको पसंद ही नहीं आता है, कुछ ना कुछ कमी वो निकाल ही लेते हैं। मेरे दादाजी के साथ में ऐसा था, वो मुझे किसी काम के लिए बोला करते थे, मैं करता था, उनको पसंद ही नहीं आता था, चार कमियां निकाल के मेरा माथा खराब, एक तो काम करो ऊपर से इनकी मीन मेक सुनो, हर एक बात में कमी निकालने की क्या जरूरत है, कभी तो कोई अच्छा काम करा ही होगा ना मैंने। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, आज इतना बड़ा हुआ हूं, तो मुझे रियलाइज हुआ है कि वो हमको काम के लिए बोलते तो थे, लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग थे, उनके हिसाब से थे, और मैं काम करता था मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो टेक्निकली तो यहां पर दोनों ही थोड़े थोड़े गलत थे। खैर, इस चीज को जज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को सिखाना भी जरूरी है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाल के, तो उनका वो वाला पॉइंट में भी रहा होगा। बट आप अगर जो चाहते हो कि आपका काम उसी तरीके से हो जैसा आप चाहते हैं, उतने ही परफेक्शन के साथ में, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम, तो आप खुद करिए या खुद उसकी जिम्मेदारी लीजिए, औरों को अपने सामने लगा करके काम करवाइए। तो बस ये ध्यान रखिए कि खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है, खुद के खाने से ही भूख मरती है, खुद के कपड़े पहनने से ही तन ढकता है। खुद पर डिपेंडेंट रहें, खुद से एक्सपेक्टेशंस रहें, दूसरों से उम्मीदें जितनी कम होंगी आपका दिल टूटने का चांस उतना कम होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। भरोसा करें तो खुद पे करें।

आपके अंदर का टैलेंट क्या है ये सिर्फ आपको ही पता है। हमें किस काम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है ये सिर्फ आपको ही पता है। दूसरे जो लोग

वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के टैलेंट को तो आपको खुद ही पहचानना होगा। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दो कि आपको उस काम को कितना बेहतर से बेहतर तरीके से करना है या आप कर सकते हैं। प्लानिंग करो कितना क्रिएटिव तरीके से उस काम को कर सकते हो। देखो जो भी करो दिल और शिद्दत से करो, उसके बाद जमाना खुद ही आपके लिए तालियां मारेगा। लेकिन उससे पहले अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो।

0: Walk Talk Radio.
1: जिंदगी में अगर एक बार भरोसा टूट जाए ना, फिर चाहे आप लाख कोशिश कर लो, वो भरोसा आप दोबारा कायम या फिर जीत नहीं सकते। भरोसा किसी भी काम को लेकर हो सकता है। ऑफिस में बॉस का आपके ऊपर भरोसा, आपके लाइफ पार्टनर का आपके ऊपर भरोसा, खुद के सपनों को पूरा करने का भरोसा, किसी भी चीज को पाने का भरोसा। लाइफ में भरोसे की अहमियत अक्सर टूट जाने के बाद ही पता चलती है। इसीलिए लाइफ में आप कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, लेकिन भरोसा मत टूटने देना, भरोसे पर कायम रहना। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब सामने वालों को आपके भरोसे की अहमियत के बारे में पता चलेगा।

हाय, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिस पर दुनिया चल रही है, एक ऐसी चीज जो बड़े से बड़े झगड़े को यूं खत्म करा सकती है, एक ऐसी चीज जो अगर जो हारने वाला कर दे तो जीतने वाले का जश्न थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, एक ऐसी चीज जो रिश्तों को मजबूत कर सकती है। स्माइल की बात हो रही है, वो मुस्कुराहट है, इसमें इतनी ताकत है। हम कितने ही गम में हो, हम कितने ही परेशान हो, अगर जो हम स्माइल करेंगे तो जमाने को एक पॉजिटिव संदेश जाएगा। इनफैक्ट हम खुद भी अच्छा फील करेंगे, हमारा वो जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कभी परेशानी में मुस्कुरा के देखिए जनाब, रीजन हो तब तो जमाना मुस्कुराता है। सेलिब्रेट करिए, बहुत ही छोटी सी जिंदगी है, लेकिन अफसोस हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और कितनी छोटी है, इसका रियलाइजेशन हमको तब होता है जब हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हों में होते हैं। फिर जब हम काउंट करते हैं ना कि हमने क्या किया, तो समझ आता है कि क्या फायदा यार। एक बात बताओ, अभी आपको लगता होगा ना जो आपकी स्कूल लाइफ थी कितनी अच्छी थी यार, लेकिन स्कूल लाइफ में क्या करते थे हम? स्कूल लाइफ में हम इस लाइफ के आने का इंतजार करते थे कि हम जब पैसे कमाएंगे, हमारे पास में पैसा होगा, फ्रीडम होगा, हम जब चाहे दोस्तों के पास जा सकेंगे, उनके यहां पर रुकने के लिए हमें मम्मी पापा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम घूम सकेंगे, हमें तब ये चाहिए था। अब हमें वो चाहिए। हर एक फेज हसीन है, चाहे वो बचपना हो, चाहे वो जवानी और बैचलरहुड हो, या फिर शादीशुदा जिंदगी हो, हर चीज के अपने मजे हैं, हर चीज का अपना फील है। उस फील को महसूस करिए और मुस्कुराइए और खुश रहिए, हर पल को सेलिब्रेट करो। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं ये जरूरी नहीं है। मुस्कुराइए क्योंकि आप दुनिया में हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि न जाने कितने सारे लोग नहीं हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आपको भरपेट रोटी मिल रही है, न जाने कितने लोगों को नहीं मिल रही है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में कुछ पैसा है, बहुतों के पास नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में अपने हैं, उनसे पूछिए जिनके पास में अपने नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में आपका लाइफ पार्टनर है, बहुत सारे लोग आज भी अधूरे जी रहे हैं। 50 रीजन है मुस्कुराने के और खुश होने के, और कौन से रीजन चाहिए हमको? वो इमेजिनरी आर्टिफिशियल रीजन जो कि कुछ टाइम के लिए होते हैं, तो हम गलत हैं। हमको सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। मुस्कुराइए, बेवजह मुस्कुराइए, ठोकर लगे मुस्कुराइए, दुख हो मुस्कुराइए, कोई गलत करके जाए मुस्कुराइए, आपके साथ में गलत हो जाए मुस्कुराइए, आप अच्छा करिए मुस्कुराइए, आपके साथ में कोई और बुरा करके चला जाए मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी जो हंसी है, आपकी जो मुस्कुराहट है, ये आपसे है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है, यूनान के जो किंग थे वो किसी बात से अपने मंत्री से नाराज हो गए, और नाराजगी में उन्होंने मंत्री के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। कहा कि शाम को 6 बजे कैसे भी करके वजीर को फांसी दे देनी चाहिए। जब उनको फांसी की सजा दी गई थी, वजीर उस वक्त दरबार में नहीं थे। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जाकर के वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मानकर के सैनिक की एक टुकड़ी पहुंची वजीर के घर और उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए तो जाकर के देखा कि वहां पर तो एकदम जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का बर्थडे था, उसके घर पर रिश्तेदार थे, दोस्त थे, खूब चहल पहल थी, म्यूजिक बज रहा था, नाच गाना चल रहा था, पकवानों की खुशबू फैली हुई थी, कुल मिलाकर के माहौल बड़ा ही अच्छा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर दिया कि वजीर को आज शाम के 6 बजे फांसी दे दी जाएगी, और जैसे ही ये सुना वहां पर जितने भी लोग थे वो हैरान रह गए। फौरन म्यूजिक रुक गया, नाच गाना रुक गया, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले सभी उदास हो गए। तभी कमरे में से वजीर की आवाज गूंजी, बोले, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने फांसी के लिए शाम के 6 बजे तक का वक्त दिया है, तब तक तो हम सब सेलिब्रेट कर सकते, मेरा बर्थडे आज। और उसके बाद में दोस्तों, रिश्तेदारों

कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई और तुम जश्न मनाना चाहते हो। तो वजीर ने किसी तरह से सबको समझाया और एक बार फिर से जश्न शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, घर वालों को बुरा लग रहा था, लेकिन वजीर की खुशी के लिए सभी लोग जश्न में शामिल हो गए। म्यूजिक बजने लगा, डांस होने लगा, खाना पीना चलने लगा। ये बात सैनिकों ने सम्राट तक पहुंचाई। सम्राट पूरा माजरा समझने के लिए वजीर के घर पे पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि सब लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो भी हैरान। उन्होंने कहा, ये क्या है, तुमको पता है ना कि मैंने तुमको फांसी दी है, वजीर से उन्होंने पूछा, और तुम सेलिब्रेट कर रहे हो। वजीर बड़े ही अदब से बोला कि हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम के 6 बजे का मुकर्रर किया, और इस तरह से मुझे शाम के 6 बजे तक का वक्त मिल गया। अगर आप मुझे ये वक्त नहीं देते तो मैं अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये सेलिब्रेशन कैसे कर पाता। फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास आज शाम तक का वक्त है, और मैं ये क्यों जाया करूं, इसको रोने में बिता दूं मैं। मेरे पास जितना भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। वजीर ने कहा। तो ये सुनकर के राजा ने एकदम से वजीर को गले लगा लिया, कहा कि ये कमाल की बात बोली तुमने, मोटिवेट कर दिया। मतलब जिस इंसान को वक्त की कदर है, वो जिंदगी का हर एक लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसको मौत कैसे दी जा सकती है, ये तो औरों के लिए इंस्पिरेशन है। तुम्हें जीने का पूरा हक है, और तुम्हारी बातों ने हमारा न सिर्फ दिल खुश किया है बल्कि हमको एक नई सीख दी है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए रोते रहते हैं। हमने तुमको मौत की सजा सुनाई लेकिन उसके बाद में भी तुम परेशान नहीं हुए, तुम्हारी फांसी की सजा माफ। राजा ने कहा। वजीर खुश, रिश्तेदार खुश, दोस्त खुश, फिर से जश्न, और अब रियल जश्न शुरू हो गया क्योंकि उनकी जिंदगी बच गई। समझिए आप इस चीज को कि जिंदगी खूबसूरत है लेकिन इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हालांकि ये जरूर है कि जिंदगी में कई एक बार ऐसा वक्त आता है जबकि बहुत ज्यादा मुश्किलें हमारे सामने होती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और ऐसे में हम जिंदगी जीना छोड़ देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मुश्किलों से हारे नहीं, मुस्कुराहट के साथ में उनका सामना करें। जो भी समय आपके पास में बहुत लिमिटेड है उसका पूरा सदुपयोग करें, जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, ये हमेशा ध्यान रखें। पिज्जा घर में आता है तो जम के खाते हैं ना उसको, एंजॉय करके। वैसे खत्म होने से पहले जिंदगी को भरपूर जी लो, आपके हिस्से की जिंदगी कोई और नहीं जी सकता, और ये मुश्किलें तो आती रहेंगी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट ये मुस्कुराहट गई या रो करके आपने वक्त गुजारा उसका कोई सेंस नहीं है। एक दिन जाना सब नहीं है, तो उसको लेकर के परेशान होने का क्या मतलब। वो होता है ना जब हम किसी ऐसे इंसान से आखिरी बार मिलते हैं जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, और हमको पता है कि अब इससे दूर होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, तो जो भी कुछ लम्हे हैं उनको हम भरपूर जी लें, या तो उसके साथ में, या फिर परेशान होकर के रो करके बिता दें, हमारे ऊपर है। बेहतर ये होगा कि जो भी लम्हे उसके साथ में मिले हैं उनको भरपूर जिया जाए, प्यार के साथ में सारे अरमान पूरे किए जाए, क्योंकि रोना तो बाद में भी है ना, उससे दूर जाने के बाद में। बस वैसे ही जो भी लम्हे आपके पास में हैं उन्हें भरपूर जिए, ये बहुत जरूरी है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, लाइफ में बैलेंस रहना है तो सबसे पहले तो अपने खुशी और गम के इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। जैसे जब हमारा कोई काम सही हो जाता है तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वहीं अगर हमारा काम खराब हो जाए तो इतना बुरा लगता है कि हम सबको छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं। बस यही तो वो गलती है जो हम अक्सर कर बैठते हैं। अगर हम इन इमोशंस को कंट्रोल करके अपने काम पर कंसिस्टेंट रहें तो हम और हमारी कामयाबी कहीं नहीं अटकती। तो बैलेंस्ड रहिए और सुकून में रहिए।

0: रेडियो।
1: घायल तो यहाँ पर हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जी हाँ, चोट किसको नहीं लगती, फेलियर कौन नहीं होता, जिंदगी में परेशानियां किसकी लाइफ में नहीं आती, लेकिन उन सब का सामना करके, उसका एक्सपीरियंस करके, अपनी गलतियों से सबक लेकर जो फिर एक नई तैयारी के साथ उठता है, फिर आगे बढ़ता है, वही इंसान है।
0: Walk Talk Radio.
2: Yeah. Be cool, Ross, baby. Lost in your love.

0: यार बैठे नाड़ दिंदा नहीं अटेंशन मैं कोई परी महफिल च तेरा ही ख्याल लेंदे आ
1: fucked up

जिंदगी बड़ी आसान है, लेकिन इसको जीना कैसे है, बस उसको सीखने की जरूरत है। कई प्रॉब्लम्स भी आएंगी और कई खुशियां भी आएंगी, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, बस इसको सीखने की जरूरत है।

देखो दोस्त, अगर किसी को कुछ देना हो ना तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: धोखा भी तो उसी को मिलता है जो इजिली दूसरों पर भरोसा करता है। बिना किसी को जाने पहचाने किसी पर विश्वास करना जरूरी नहीं है कि आपके मुंह के सामने तारीफ करने वाले पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करें। इसीलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उस इंसान के बारे में जानना पहचानना बहुत जरूरी है कि वो इंसान वाकई आपको समझता है या फिर आपको यूज कर रहा है। और जिस दिन आप ये जान लोगे आप खुद को कभी भी कोसोगे नहीं।

0: वॉक टॉक,
1: छोटी सी है जिंदगी, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। कोशिश ये करिए कि अपनी लाइफ के हर पल को खुशनुमा बनाइए, लेकिन ये कैसे होगा जब आप अपने माइंड को टेंशन फ्री रखेंगे। तो जो भी टेंशन आपकी लाइफ में चल रही है, उनका सलूशन ढूंढ के उनको खत्म करिए और लाइफ को खुश होकर जी लीजिए।

0: रेडियो।
1: परिवर्तन और संघर्ष से डरने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। परिवर्तन इस संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, सुबेरे हुई है शाम होगी, कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदलती। लेकिन अगर हम हार्डकोर हो जाते हैं, किसी बात पे अड़ जाते हैं, तो दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है, बदलिए और देखिए, आप खुद नहीं बदलेंगे, आप अपने आसपास की सिचुएशन को भी बदलने का मौका देंगे। संघर्ष से डरना, पीछे रह जाना, हमेशा डरते रहना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हिम्मत करिए और फेस करिए अपनी उस प्रॉब्लम को, ऐसा फेस करिए कि प्रॉब्लम भी आपसे डर जाए, और देखिए जिन चीजों से आपको डर लग रहा था वो कितनी आसानी से दूर हो जाती है। कोशिश तो करके देखिए।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है, बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद का है।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: हमारी जिंदगी में कई पल ऐसे आते हैं जब हम अपने किसी न किसी अपने से कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, पर पता नहीं क्या सोचकर नहीं कह पाते। पता नहीं क्या सोचकर हम रुक जाते हैं। झिझक हमारे अंदर रहती है कि अगर हमने सामने वाले को वो मन की बात कह दी तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। लेकिन इस सोच के चलते वक्त बीत जाता है, इंसान भी चला जाता है और रह जाता है तो सिर्फ एक रिग्रेट कि हमने तब वो बात क्यों नहीं कही, क्योंकि अब वो इंसान ना हमारे सामने है ना हमारे पास है कि हम उससे अपने दिल की बात कह दे। दोस्त, एक दिन हम सब अपनी अपनी चुप्पियों को लेकर ऐसे ही रह जाएंगे और हमारा सबसे आखिरी ख्याल ये होगा कि हमें उस वक्त बोल देना चाहिए था। तो झिझकिए मत, अपनी बात को बेबाकी के साथ रखिए और खुश रहिए।
0: Tune in for a better life.

0: अगर आपकी लाइफ में जितना स्ट्रगल होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। राहों में बस कहीं तुम भटक मत जाना, चलते चलते कहीं तुम थक मत जाना। ठान लिया है ना अगर मंजिल को पाना, बस मुसाफिर बनकर चलते रहो, कदम से कदम आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि जिंदगी में स्ट्रगल जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। और हर इंसान सफल होने के लिए ही कड़ी मेहनत करता है, कड़ी धूप में चलता है।
1: Walk down.

0: ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।
1: मैं बॉडी बनाता हूँ तेरे लिए, मैं अंडे शंडे खाता हूँ तेरे लिए, मैं बाइक पे आता

जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। Walk Talk Radio.

तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज की दुनिया में बहुत से दोगले लोग पाए जाते हैं जो अगर आपके दोस्त बन जाए तो दुश्मनों की भी कमी नहीं महसूस होने देते। इसीलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से बचे रहें और हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं और आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: कोई नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, तू भीड़ से अलग चलकर दिखा।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।
0: वक्त

0: रेडियो।
1: प्रयास करने का एक सबूत होती हैं गलतियां। मेहनत पर एतबार करने वालों को अपने काम में खुदा नजर आता है। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा।
0: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

पता है बड़े बड़े लोगों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सबको इंस्पायर करती है। जैसे वो हमेशा आने वाले 10 साल की प्लानिंग पहले ही कर देते हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ जाना है वो पहले से ही पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। अगर यही क्वालिटी आपके अंदर या हमारे अंदर आ जाए सोचो उसके बाद क्या होगा। जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करे हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, उनके अंदर भी तो यही क्वालिटी थी।

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

0: कभी सोचा है कि हम चैलेंजेस लेने से क्यों घबराते हैं? नहीं दोस्तों, नॉलेज कभी भी एक दायरे में रहने से नहीं बढ़ती, नॉलेज तो एक्सपेरिमेंट से बढ़ती है। तो अगर आपके पास चैलेंज फेस करने का मौका मिलता है तो घबराए नहीं, क्योंकि उन्हीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके ही आप वो गेन करेंगे जो आप दुनिया को बता पाएंगे, दुनिया को प्रूव कर पाएंगे। याद रखें कि ज्ञान हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ता है, ना कि चुनौतियों से दूर भागने से। और हो सकता है कि आपका कमाया हुआ यही ज्ञान कल के दिन किसी और के काम आ जाए।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: कोई टूटे तो उसे बनाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अगर ये आपको आ गया ना, तो आपके रिश्ते बहुत आगे तक जाएंगे।
2: वॉक टॉक रेडियो।

0: दोस्तों, यदि अपने सपनों को पूरा करते हुए आप कहीं इस उम्मीद में हैं कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला या आपका कोई खास अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके ही सपनों को पूरा करने में लग जाए, तो शायद ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। तो अपने गोल्स के लिए किसी और के भरोसे न रहें, क्योंकि आपके सक्सेस और आपके फेलियर के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

रेडियो। नाम उन्हीं का होता है जो बस्ती से निकलकर हस्ती बन जाते हैं। आप कहीं भी हैं, ये मत सोचिए कि मैं लो बैकग्राउंड से हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप क्या बन सकते हैं ये आपकी मेहनत तय करती है। तो उठिए, मेहनत करिए और अपने एम को पाने में लग जाइए।

0: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है, बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद का है।

जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे ये दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा, तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख के दे पाएगा कि तू हार जाएगा। डर से मत डरो यार, कुछ अलग करो और जिंदगी में कुछ बड़ा करो, इस डर को हरा दो और सब हासिल कर लो।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मैं कर्नल अजय कोठिया हूँ। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी होती है, कोई एक्सक्लूसिव फीलिंग होती है, तो आप वॉक टॉक रेडियो में आए और यहाँ पे आकर के अपना आइडिया शेयर करें और डाउनलोड करें वॉक टॉक रेडियो, बहुत सारे लोगों की अच्छी जानकारियों को जानने के लिए।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली, यानी कि आपका देवानंद जूनियर। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk. Walk Talk Radio.
1: Come, shall we do a radio talk with a radio called Say What? Walk Talk. Hi, मैं हूँ अनुष्का. I'm a singer, songwriter and rapper. और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर.
2: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी. वॉक टॉक रेडियो.
3: वॉक टॉक रेडियो. वॉक

वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: मैं तो थक ही गया।
1: अमिताभ बच्चन का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं सिर्फ उनकी आवाज निकाल रहा हूँ, उनके आसपास भी आप नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि ये आवाज निकाल के ना मैं कुछ कुछ उनके आसपास पहुंच जाता हूँ। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला राजा। मेरे शो कहानी वाला में मैं कहानी आपके लिए लेकर आता हूँ, और बच्चन साहब की आवाज से आज मैंने जो शुरुआत करी है अपने शो की, वो इसीलिए क्योंकि आज की कहानी उनकी जिंदगी से जुड़ी कहानी है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लाइफ लेसन है जो उन्हें दिया था उनके पिता ने, यानी कि महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन, जिनकी लिखी मधुशाला तो आपने कई बार सुनी है। उनकी जिंदगी ने कुछ ऐसा दिया अमिताभ बच्चन साहब को जो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। आपको पता होगा कि बच्चन साहब ने अपने जमाने में बहुत स्ट्रगल किया। जैसे बताया जाता है कि 11-12 फ्लॉप फिल्में आने के बाद उन्हें एक बड़ी फिल्म ऑफर हुई, जंजीर, या फिर ऑल इंडिया रेडियो पर जब वो गए थे रेडियो जॉकी बनने तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, या 80s के दौर का वो महानायक 90s आने के बाद अचानक से अपनी जगह बचाने के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था। आप मानिए ना मानिए, एक वक्त ऐसा था जब बच्चन साहब ने अपने घर से यश चोपड़ा जी के घर तक, जो उनके पड़ोस में इलाका करते थे उस समय, नंगे पांव जाकर उनसे काम मांगा था। कहा था कि मुझे काम की सख्त जरूरत है, क्योंकि उनकी बनाई हुई कंपनी कर्ज में थी, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, उन्होंने म्यूजिक कैसेट्स में अपना एक वेंचर शुरू किया था, बिग बी म्यूजिक, ABCL नाम से एक कंपनी शुरू की थी जिससे वो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, और हर तरफ नुकसान हो रहा था और कर्ज बढ़ता जा रहा था। बच्चन साहब खुद कहते हैं कि उन्होंने उसके बाद हर एडवर्टाइजमेंट के लिए हाँ कहा, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते थे। पर ये उनके स्ट्रगल की कहानी नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। जो कहानी मैं सुना रहा हूँ वो है उस दौर की कहानी जब वो कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, या कहिए स्कूल के दिनों की बात। शेरवुड में वो पढ़ते थे, और शेरवुड में जब थिएटर वो कर रहे थे तब उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मौका मिला था। वो नाटक का मेन किरदार था, वो चाहते थे कि उसमें जी जान लगा दे, उस किरदार को ऐसा निभाएं कि लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। प्ले होने से कुछ दिन पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और अमिताभ बच्चन साहब का फ्रैक्चर हो गया। वो बेड रिडन थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, और वहां से उस वक्त निकल पाना मुमकिन नहीं था। जहां वो पढ़ते थे वहां, ये मान लीजिए कि एक पहाड़ी के छोटे से हिस्से पर ऊपर की तरफ उनका कॉलेज था, जहां लाउडस्पीकर पे कुछ होता था तो नीचे के हिस्से में आवाज आया करती थी, और नीचे उनका हॉस्पिटल था, तो उन्हें उस प्ले की आवाज

आ रही थी। उन्हें पता चल रहा था कि वो उस प्ले का हिस्सा नहीं है, कोई और उनका किरदार निभा रहा है, और ये बात उन्हें बड़ी दुख दे रही थी, परेशान कर रही थी। रोना आ रहा था, हाथ से चीज फिसल गई, आप चाहते थे वो नहीं हुआ, और जो हुआ कितना बुरा हुआ। तब बाबूजी आए उनसे मिलने, हरिवंश राय बच्चन, और उनका दुख कम करने के लिए बाबूजी ने कहा कि देखो जो हुआ वो अच्छा और जो नहीं हुआ वो और अच्छा, क्योंकि जो हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल थी, यानी तुम जो चाहते थे वो हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी पर खुदा की मर्जी उसमें शामिल थी, यानी ऊपर वाले की मर्जी थी उसमें। तो वो ऊपर वाला जो है वो नहीं चाहता, इसलिए वो चीज नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो कोई कारण होगा। वो कारण कब पता चलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमेशा ये याद रखो कि जिंदगी में जो हुआ वो अच्छा और जो नहीं हुआ वो और अच्छा, क्योंकि जो नहीं हुआ वो खुदा की मर्जी है। याद रखिएगा, कभी भी डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में आया है, उसे हैंडल करना है, तो हमेशा जो हुआ वो अच्छा, जो नहीं हुआ वो और अच्छा। बड़ी छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ा कमाल कर गई, बच्चन साहब के लिए तो करी गई, हमारे लिए भी कर जाएगी। अब सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा थोड़ी देर में एक और कहानी लेकर। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: मैं कर्नल अजय कोटिया हूँ। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी होती है, कोई एक्सक्लूसिव फीलिंग होती है, तो आप वॉक टॉक रेडियो में आए और यहाँ पे आकर के अपना आइडिया शेयर करें और डाउनलोड करें वॉक टॉक रेडियो, बहुत सारे लोगों की अच्छी जानकारियों को जानने के लिए।
0: वॉक टॉक रेडियो।

पैनिक अटैक जानते हैं क्या होता है? पैनिक अटैक ये वो चीज होती है जो आपको तब आती है जब आपकी लाइफ से कुछ छिन रहा हो, कुछ छूट रहा हो, वक्त कम पड़ गया हो, कोई डेडलाइन आ गई हो, या एक इमरजेंसी की सिचुएशन है और आपको उसे हैंडल करना है। तो अक्सर मेरा मानना है शायद 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैनिक अटैक आ जाता है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो महेंद्र सिंह धोनी की तरह कैप्टन कूल रह पाते हैं, इतने सारे शोर, इतनी सारी प्रेशर में भी अपना खेल स्मूथ और ओरिजिनल रख पाते हैं। सिचुएशन से जिनकी जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ता वो कैप्टन कूल कहलाते हैं। असल आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत। शो चल रहा है कहानी वाला, और अब जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये उस सिचुएशन की है जब पैनिक अटैक आता है ना, तो हमें पता नहीं होता करना क्या है। हम यहां वहां हेडलेस चिकन की तरह घूमते तो रहते हैं, लेकिन वो डेडलाइन कैसे मीट करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में सोल्यूशन नहीं मिलता। तो उसे लेकर मैं एक कहानी लाया हूं। ये कहानी एक किसान की कहानी है, किसान की घड़ी की कहानी है। सुनिए। तो एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास जो अनाज की कोठी थी उसमें काम कर रहा था। काम करने के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वो घड़ी उसके पिताजी ने, जब पहली बार वो खेत पर हल चलाने आया था, जब उसने पहली बार अच्छा काम करके दिखाया था, तो पिताजी ने खुश होकर वो घड़ी खरीद के उसे दी थी। जब किसान को घड़ी मिली थी ना, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि उस जमाने में घड़ी एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था, हर एक के हाथ में नहीं होती थी। जिसके हाथ में है उसका वक्त अच्छा चल रहा है, ये बात वो घड़ी साबित कर देती थी। घड़ी को लेकर एक छोटा सा किस्सा है कि दो लोग थे, दो दोस्त थे, दोनों ने हाथ में घड़ी पहनी थी। तो एक के हाथ में एक मामूली सी घड़ी थी, दूसरे के हाथ में एक बहुत स्टाइलिश ब्रांडेड घड़ी। तो दूसरे ने, जो दोस्त था जिसने मामूली घड़ी पहनी थी, उसने मजाक में कहा कि यार देख, मेरी 200 रुपए की है, तेरी 2000 की, लेकिन वक्त तो सेम बताती है। तो जिसकी 2000 की घड़ी थी उसने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो घड़ी ये बता रही है कि तेरा वक्त कैसा चल रहा है, और ये घड़ी ये बता रही है कि मेरा वक्त कैसा चल रहा है। सोच सोच का फर्क है। वापस आते हैं हमारी किसान की घड़ी पर। तो किसान की वो जो बहुत ही खास घड़ी थी, जो उसके फादर ने उसे गिफ्ट करी थी, उसके पापा ने, वो खो गई। और उसका बड़ा अटैचमेंट था उस घड़ी से, उस स्टेटस सिंबल के साथ साथ में उसके पापा की निशानी भी थी। उसने वो घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, स्कोटी का हर कोना कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। वहां बहुत सारा अनाज था, बोरियां थी, एक छोटा सा कमरा था, अंधेरा था, लेकिन घड़ी नहीं मिली। आखिरकार वो बिल्कुल निराश हो गया और कोठी के बाहर आ गया। वहां देखा तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने बच्चों को पास बुलाकर अपने पिताजी की वो घड़ी खोजने का काम सौंपा। उसने कहा कि जो घड़ी ढूंढ देगा उसको मैं इनाम दूंगा। इनाम का लालच था तो बच्चे लगे घड़ी ढूंढने। कोठी के अंदर जाकर बच्चों ने घड़ी ढूंढने के लिए अपनी जान लगा दी। इधर उधर, यहाँ वहां, हर जगह खोजने पर घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक गए, उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की उम्मीद खो दी थी। बच्चों के जाने के बाद वो कोठरी में उदास बैठा रहा। तभी एक बच्चा वापस आया। उसने किसान से बोला कि वो एक बार फिर से ढूंढने की कोशिश करेगा। किसान ने कहा, ढूंढ लो, पर अब मुझे देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो किसान को जाने की जल्दी भी थी। बच्चा जो था वो कोठी के अंदर गया, और कुछ देर बाद वो अकेला ही था उस कोठी में। उस वक्त कोठी बंद की अंधेरे में, कुछ देर बाद वो वहां से बाहर आया और उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वो घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ, और उसने पूछा कि आखिर तुम कैसे ढूंढ पाए इसे, जब कोई और बच्चा नहीं ढूंढ पाया, मैं भी नहीं ढूंढ पाया, तो तुम्हें कैसे मिली। पूछने पर बच्चे ने कहा कि कोठी के अंदर जाकर ना वो एकदम चुपचाप अंधेरे में जाकर एक कोने में खड़ा हो गया, और बस ध्यान लगाकर सुनने लगा। उस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे उसका इंतजार कर रहा था, और आखिर वो सुनाई दी। उसी डायरेक्शन में ढूंढा तो पता चला कि अनाज का एक बोरा था, उस बोरे के पीछे की तरफ एक आला था, एक शेल्फ। उस शेल्फ में वो घड़ी पहुंच गई थी किसी तरह से। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी, इनाम दिया, और उस बच्चे ने किसान की उस घड़ी के साथ में हमें दे दिया एक छोटा सा लेसन, एक कहानी के फॉर्म में। शांति, पीस हमारे मन और हमारे दिमाग दोनों को ना फोकस्ड फॉर्म में ले आती है, उसे एकाग्र कर देती है। जब हमारे मन की स्थिति एकाग्रचित होंगे, जब हम एक डायरेक्शन पर फोकस कर पाएंगे, तब जिंदगी में फैसले लेना आसान होगा। ऐसे ही जब कोई पैनिक सिचुएशन आएगी, उसमें जब आप फोकस्ड होकर डिसीजन लेंगे, आपका जो मन है वो आपके काबू में रहेगा। अगर अंदर एक शांति होगी तो आप घड़ी की टिक टिक सुन पाएंगे, आप वो सही डायरेक्शन ढूंढ पाएंगे जहां पहुंचकर आप अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। तो जिंदगी में परेशानियां बहुत आएंगी, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी, जिंदगी में ऐसे पैनिक सिचुएशंस बहुत आएंगे जब आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। 2 मिनट रुककर अपने मन के अंदर ना वो एकाग्र चित्त वाला भाव लाने की कोशिश करना, वो शांति, वो पीस लाने की कोशिश करना, देन यू विल फाइंड आउट द वे, यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन वेयर टू गो। समझे? सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो, यहाँ पर हम जिंदगी बदलने की कहानियां सुना रहे हैं आपको। शो का नाम है कहानी वाला, मैं हूँ कहानी वाला रजत, और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: हाय, लगी तो नहीं?
1: आई एम गुड, आई एम गुड।
0: चलो मैं सिखाती हूँ।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है। बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
2: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
1: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद का है।

कभी कभी कुछ बातें जो किस्से कहानियों में नहीं समझ आती वो शेर शायरी कविताएं समझा देती हैं। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, एक ऐसी जगह जहां पर जिंदगी बदलने की छोटी सी कोशिश की जाती है। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूँ कहानी वाला रजत, शो का नाम कहानी वाला। किस्से कहानियां सुनाने के साथ साथ मुझे लगा कि आज कुछ शायरियां आपको सुना दूं जो जिंदगी पर लिखी हैं कुछ महान शायरों ने, द ग्रेट राइटर्स, जैसे जॉन एलिया साहब। उन्होंने लिखा, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कही। बशीर बद्र साहब ने लिखा है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और इमाम बख्श साहब ने कुछ ऐसा लिखा है जो आप बरसों से सुनते आए लेकिन आपको नाम नहीं पता था कि लिखा किसने। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये फिल्मों में डायलॉग्स थे ना, ऐसा लगता था किसी फिल्मी राइटर ने लिखा होगा। और फिराक गोरखपुरी साहब, एक बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट भी रहे, वो लिखते हैं कि मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं है। बहरहाल ये तो जिंदगी के नाम लिखी वो शायरियां हैं जो जिंदगी की डेफिनेशन बनाने में मदद करती हैं। तो वाकई मौत का इलाज है, जिंदगी का नहीं है। जिंदगी अपने दर्द देती है, अपने रास्ते भी बताती है, फिर भी हम इसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसी कोशिश में कहानी सुन लेते हैं। ये बेंगलुरु की कहानी। बेंगलुरु के गोल्फ क्लब में कैडी, आपको पता है गोल्फ में कैडी क्या होता है? कैडी होता है खिलाड़ियों के पीछे बैग जो होता है ना उनका, वो गोल्फ जिसमें सारी स्टिक्स होती हैं, उनको उठाकर चलने वाला लड़का। तो जो कैडी का काम करता था उस लड़के की कहानी है। उसका नाम है चिन्ना स्वामी मनियप्पा। तो ये लड़का जो कैडी का काम करता है, जिसके माँ बाप उस गोल्फ क्लब में मजदूरी किया करते थे, उसने कमाल करके दिखाया और वही कमाल कहानी बनी। कमाल था कि चिन्ना स्वामी मनियप्पा ने 11 अक्टूबर 2009 को $12.5 लाख की हीरो होंडा इंडियन ओपन चैंपियनशिप जीतकर सबका सर चकरा दिया था। जब डीएलएफ गुड़गांव गोल्फ क्लब के मैदान पर चिन्ना स्वामी ने साउथ कोरिया के सबसे प्रेस्टीजियस खिलाड़ी ली सुंग को हराया ना, तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। कर्नाटक के चिन्ना स्वामी मनियप्पा के बिना, उन्होंने बिना किसी कोच के अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह कॉम्पिटिशन जीत कर ये साबित कर दिया कि अगर आप पूरी लगन, पूरे डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस के साथ कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं। कमाल की बात है कि चिन्ना स्वामी आज तक कर्नाटक गोल्फ क्लब के मेंबर नहीं बन पाए। जैसा मैंने बताया था कि उनके माँ बाप कर्नाटक के उसी गोल्फ क्लब के मजदूर हुआ करते थे और आज बेटा वहाँ गोल्फ प्रैक्टिस करता है। चिन्ना स्वामी ने गोल्फ की बारीकियां कैडी का काम करते करते सीखी और वो प्रोफेशनल गोल्फर बन गए। मतलब ये वही हुआ कि कोई लड़का है जो किसी वर्कशॉप में मैकेनिक है और एक दिन उसी ने वो गाड़ी बनाई और वो उस वर्कशॉप को अब ओन करता है और वो गाड़ियां भी बनाता है। भाई हमें गर्व है एक ऐसे हिंदुस्तानी पर जिसने एक इंस्पायर किया हर एक शख्स को और बताया कि आर्थिक मजबूरी, फाइनेंशियल सेटबैक्स अगर आपकी लाइफ में रहे हैं तो वो चैलेंजेस नहीं है, आप उसको बड़े आराम से पार कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर एक कैडी गोल्फर बन सकता है, $12.5 लाख का एक गोल्फ चैंपियनशिप जीत सकता है, तो आप उससे बहुत बेटर सिचुएशन में हैं अपनी जिंदगी में। आप सोचिए आप क्या नहीं कर सकते। मुझे यकीन है आप कर सकते हैं, बस किसी ने आपको यह एहसास नहीं दिलाया कभी कि आप बहुत स्पेशल हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, यकीन मानिए। मैं हूं कहानी वाला रजत, कहानियां सुनाता हूं इसीलिए ताकि उन कहानियों में से कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में चला जाए जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग थॉट बनकर सामने आए। एक लाइफ चेंजिंग थॉट भी काफी है, शुरुआत तो बस सोच से होती है जनाब। सुधरे वॉक टॉक रेडियो, कहानियां सुनाऊंगा, कहानियों के साथ साथ दूंगा कुछ ऐसी एडवाइस जो शायद आपकी जिंदगी बदलने में आपके काम आए। मैं हूं कहानी वाला रजत, ये है वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक रेडियो। फ्रेंड्स, इफ यू आर गेटिंग स्केयर्ड एवरी टाइम व्हाइल टेकिंग अ स्टेप, यू विल नेवर बी एबल टू टेक दैट स्टेप। द ओनली थिंग व्हिच इज होल्डिंग यू बैक is that the scenario which you've created in your mind that I can't do it, which stops you. I would advise you, don't be your enemy. Just take that step forward, because as you move in your life, whatever the problems comes in, solutions are also there. It's only courage, determination and hardship which is needed. There is no easy path for everyone or anyone. It is the journey which has to be there. And the steps which has to be taken up. So take that step.
3: Walk Talk

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो जब अपनी टीनेज में रहे होंगे तो हर छोटी छोटी बात पर हमने अपने घर पे कितनी जिद की होगी ना। कभी आइसक्रीम वाले का भौंपू सुनते ही रोज आइसक्रीम खाने की जिद, बाजार गए तो महंगे अच्छे कपड़े लेने की जिद, हर बार नए नए जूते खरीदने की जिद। तब माँ बाप की कही बातों के मायने हमें समझ नहीं आते थे, लेकिन आज जब हम उस जगह पहुंचते हैं, उस स्टेज पर पहुंचते हैं, तो वो सारी बातें हम समझ पाते हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो बात आपको पसंद नहीं आ रही वो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्या पता उसी बात में आपका ही भला छुपा हो।
0: Tune in for a better life.
2: Tune in for a better life.
3: On the stage, right now.

कुछ कहानियां इसलिए नहीं जरूरी होती कि वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐड कर देती हैं या आपको एक जिंदगी का लेवल अप करने का मौका देती हैं। कुछ कहानियां इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि वो आपको वो चीजें याद दिलाती हैं जो आप भूल गए, और शायद उन्हें याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत, और कहानियां सुनाना मेरा काम है, ये तो जानते ही हैं आप। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानियां होती हैं। तो अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी है एक घंटा। शाम का वक्त था, ऑफिस से घर आने के बाद पापा जो थे वो बहुत ज्यादा बिजी थे ऑफिस की फाइल्स में, तो टेबल पर बैठ गए और पूरा ध्यान फाइल्स में था। तभी उनका 7 साल का बेटा उनके पास आया, रात के 9 बजे थे। बोला, पापा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो बिना फाइलों से नजर हटाए पापा बिजी थे, पापा ने बोला, हाँ पूछो। उसने, पापा आप एक घंटे का कितना कमा लेते हैं? बहुत अजीब सवाल था, पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे, क्यों बेकार के सवाल पूछ के मेरा टाइम खराब कर रहे हो, देखते नहीं मैं काम कर रहा हूँ? पापा मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए ना आप एक घंटे का कितना कमा लेते हैं। तो बेटा जिद करने लगा। पापा ने कहा, 500 रुपए। ओह 500 रुपए। तो बेटा सर झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर उठकर बोला, पापा आप मुझे 300 रुपए उधार दे देंगे? ये सुनना था कि पापा को गुस्सा आ गया। वो पापा को बोले, बेटे को बोले कि अच्छा तो तुम इसीलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई खिलौना खरीदना है या कोई चीज लेनी है? अब एक शब्द बिना कहे ना अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारे फालतू डिमांड्स पूरी करता रहूं, बस जाओ। बेटे का चेहरा उतर गया, भारी कदमों से वो वहां से चला गया। पापा कुछ देर तक तो बेटे की बात पर नाराज रहे और काम में लग गए। काम खत्म हुआ, तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। पापा की नाराजगी भी खत्म हो गई, उनको लगा कि बेटे के लिए वो काफी रूड रहे। वो सोचने लगे कि बेटे ने यार सच में कोई जरूरी चीज हो सकता है उसे खरीदनी हो तभी 300 रुपए मांगे, क्योंकि वो पहले कभी पैसे नहीं मांगता इस तरह से। फिर वो अपने बेटे के कमरे में गए, देखा तो उनका जो बेटा था वो बिस्तर पर लेटा था। तो उन्होंने पूछा कि सो गए क्या बेटा? तो उठकर बोला, नहीं पापा मैं तो जागा हूँ। तो बोले कि बेटा मैं काम की वजह से थोड़ा परेशान था, पर तुम बुरा मत मानना, मेरा गुस्सा तुम पर निकल गया, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये 300 रुपए लो, जो टाइम उस टाइम तुम मुझसे मांग रहे थे ना ये लो। उसने कहा कि थैंक यू पापा। 300 रुपए एक तरफ रखकर उसने अपने तकिए के नीचे से कुछ नोट निकाले और उन्हें गिनने लगा। पापा ने देखा कि इसके पास पैसे हैं फिर भी मांग रहा है, फिर

गुस्सा हो गया। बोले जब तुम्हारे पास पहले से पैसे थे तो मुझसे क्यों मांग रहे थे? तो उसने कहा पापा मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे ना, अब हैं। ये सब मिला के और वो 300 रुपए मिला के पापा पूरे 500 हो गए। ये लीजिए 500 रुपए, क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप कल घर जल्दी आना ना, अपन डिनर साथ में करेंगे और काम मत करना कम से कम उस 1 घंटे में। बेटे की बात सुन के पापा शॉक थे। हम पैसे कमाने की जद्दोजहद में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारी जो फैमिली है ये पीछे छूट जाती है। हमारे पास अपने फैमिली हमारे रिलेटिव्स के साथ बिताने के लिए वक्त नहीं है। ये वक्त धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है और ये बीता समय कभी लौटेगा नहीं। ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है, लेकिन फैमिली में क्या कोई हमें रिप्लेस कर पाएगा? अब सोचिए कि आपको किसे ज्यादा वक्त देना है, ऑफिस, फैमिली, पैसे या काम? सोचिएगा इस पर। मैं हूँ कहानी वाला रजत, कुछ कहानियां आपको सुनाता हूँ। बस यूं ही बैठे रहिए और मेरे साथ मेरी कहानियां एंजॉय करते रहिए। वॉक टॉक रेडियो पर ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टे ट्यून्ड ऑन वॉक टॉक रेडियो।

बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आज की आखिरी कहानी है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत। कहानी वाला शो पर लेकर आया हूं एक कहानी एक लड़के की। ये कहानी ये सिखाती है हमको कि जिंदगी में ना नथिंग कैन बी, यू कैन नेवर बी लेट फॉर समथिंग, इन अ वे इट्स नेवर टू लेट। कैसे, कहानी सुनते हैं। एक लड़का जो जब 5 साल का था तब उसके फादर की डेथ हो गई। माँ नौकरी पर जाती थी तो वो घर पर खाना बनाता। अब वो लड़का 7th क्लास तक स्कूल गया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, माँ ने दूसरी शादी कर ली और ये जो लड़का था ये घर से भाग गया। तो शुरुआती जिंदगी में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। कभी स्टीम बोट में नौकरी की, फिर एक इंश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन बनने की कोशिश की, फिर रेल रोड में फायरमैन का काम किया। 16 साल की उम्र हुई ना तो अपनी उम्र गलत बताकर वो आर्मी में शामिल हो गया, क्यूबा में नौकरी करने लगे। 1-2 साल में वहां से भी उनकी छुट्टी हुई। 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और बताते हैं कि कुछ साल बाद ही उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उनके पास काम नहीं था, वो बेरोजगार हो गए थे या फिर पैसे कमाने के जरिए नहीं थे। उनकी एक बेटी भी थी, वो चाहते थे कि बेटी को अपने पास रखे चाहे वाइफ उन्हें छोड़ जाए तो भी। तो उन्होंने अपनी बेटी को ही किडनैप करने की कोशिश की, बट दैट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट। अब सवाल ये हुआ कि उन्हें अपनी वाइफ को मनाना पड़ा कि तुम वापस घर आ जाओ। तुम्हारी वाइफ ने कहा तुम काम शुरू करो, तो उनके पास करने के लिए काम नहीं था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या काम करें। फाइनली उन्हें पता चला कि वो एक ही चीज सबसे अच्छी करते हैं और वो खाना बनाने का काम, जो बचपन में किया करते थे ना वो, और उसमें भी चिकन बहुत कमाल का बनाते हैं। तो 40 साल की उम्र में वो चिकन बनाते थे और जो उनके सर्विस स्टेशन पे या जहां

पर वो चिकन बनाते थे, वहां रुकता था, वो उनका चिकन जरूर खाता था। अब तब वो पॉपुलर तो हो रहे थे, पर उनके पास कोई रेस्टोरेंट नहीं था। चिकन की क्वालिटी ऐसी कमाल की बनाने लगे, उनकी बिक्री बढ़ने लगी और फिर वो 142 सीटर होटल के मेन शेफ बन गए। तब ये बहुत बड़ी बात थी। वहीं पर उन्होंने चिकन पकाते पकाते ना एक नया तरीका ईजाद किया, जैसे प्रेशर फ्रायर चिकन कहने लगे लोग। अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि 60 साल की उम्र ना रिटायरमेंट की उम्र होती है। इस शख्स ने अपनी रिटायरमेंट की उम्र से पहले कई बार हाथ पांव मारे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, कोई एक ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, पर किस्मत ने उनका साथ ही नहीं दिया। फिर एक मौका ऐसा आया कि उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी ना वेस्ट हो गई है, वो अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए, एक शेफ रहे उससे ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए। तब उनकी जो वाइफ थी वो उन्हें छोड़कर जा चुकी थी और पैसा जो था वो कमाया, लेकिन जब नौकरी छोड़ी तो उन्हें सरकार की तरफ से $105 की एक पेंशन मिली, जिसके बाद ये साबित हो गया कि यार मैंने शायद अपनी जिंदगी में वो किया ही नहीं जो मुझे करना था। वो एक आम सी जिंदगी, एक बिलो एवरेज जिंदगी लेकर अपनी जिंदगी खत्म करने वाले थे। उनको लग रहा था कि बस अब मैं अपनी वसीयत लिख देता हूँ, जो मेरे पास है वो मेरी फैमिली को मिल जाए, मेरा कोई भरोसा नहीं। 60 साल की उम्र में उन्होंने जब अपनी वसीयत लिखने का फैसला किया, ही रोट दैट डॉक्यूमेंट, और लिखते लिखते उन्होंने लिखा कि कितना मुश्किल था अपनी वाइफ को उनके लिए मनाना, फिर भी वो मना कर वापस लाए सिर्फ इस दम पर कि वो बहुत अच्छे कुक थे, तो उन्हें खाना बनाना तो आता था, उन्होंने तो चिकन की नई रेसिपी भी ईजाद की थी, क्यों ना वो उसे बेचे। वही लिखते लिखते उन्हें जब ख्याल आया तो उन्होंने रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। ऐसे ही रूमर्स भी हैं और लोग कहते भी हैं कि उन्होंने 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए थे और हर एक ने उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, हम आपकी रेसिपी नहीं ले सकते। धीरे धीरे करके जब वो इतनी बार ना सुनते गए, तब फाइनली एक रेस्टोरेंट, सोचिए 1000 रिजेक्शंस झेलने के बाद एक रेस्टोरेंट ऐसा था जो तैयार हुआ कि हाँ हम आपकी रेसिपी को ट्राई करें। उन्होंने वो चिकन वहां पर सेल किया और वो पॉपुलर हो गया। इस बिजनेस की शुरुआत, इस चिकन को बेचने की शुरुआत उन्होंने केंटकी में की थी। उनका बिजनेस जबरदस्त पॉपुलैरिटी के आसमान को छू रहा था। केंटकी के जो गवर्नर थे रूबी लफून, 1935 में उन्होंने इस शख्स को एक उपाधि दी, एक टाइटल दिया, केंटकी कर्नल, क्योंकि कभी ये फौज में रहे थे। तो केंटकी कर्नल सॉन्डर्स ने शुरुआत की KFC की, केंटकी फ्राइड चिकन। आपने देखा होगा ना वो KFC के बकेट्स जो लोग लिए बैठे रहते हैं KFC के कॉर्नर्स पर, जिनका वो लिप स्मैकिंग टेस्ट, वो डिलिशियस स्वाद, वो जो भी, अगर आप चिकन लवर हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट थिंग, दैट जूसी फ्राइड चिकन जो वहां पर सर्व होता है, इट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एक ऐसी यूनिक रेसिपी है जिसकी वजह से KFC की जब शुरुआत हुई, तब मतलब आप सोचिए 1964 में $2 मिलियन में KFC का हिस्सा कर्नल ने 1964 में बेचा था। कर्नल ने कनाडा में अपनी फ्रेंचाइजी बेची और खूब पैसा कमाया, मतलब इतना पैसा जो बाकी की पूरी जिंदगी के लिए काफी था, लेकिन इस चीज की शुरुआत 60 साल की उम्र में हुई। ये कितनी बड़ी बात है कि इस शख्स ने अपनी ढलती हुई उम्र को अपने हार जाने का कारण नहीं माना और जीतने के लिए कोशिश करी उस चीज के दम पर जो उसके लिए सबसे खास थी, कुकिंग। ऐसे ही कोई एक आपकी यूनिक स्ट्रेंथ होगी जो आपके लिए खास है, जो आपको खास बना सकती है, आप बस उसका इस्तेमाल करके देखिए, मैं कह रहा हूं जिंदगी बदल जाएगी। हमने सुनी है आज कर्नल सॉन्डर्स की कहानी। इनका पूरा नाम है हार्लन डेविड सॉन्डर्स। कर्नल इन्हें एक उपनाम मिला था, एक तरह का टाइटल मिला था फ्रॉम द गवर्नर ऑफ केंटकी, जहां पर इन्होंने शुरुआत की थी केंटकी फ्राइड चिकन की। केंटकी को KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन के लिए हमेशा सदियों तक जाना जाएगा। 5 साल की उम्र में वो लड़का जब अपने घर पे खाना बनाता था, जब उसकी माँ नौकरी पर जाती थी, तब उसने नहीं सोचा था कि एक दिन यही चीज उसके इतने काम आएगी जो KFC बनकर दुनिया के सामने आएगी। हमें नहीं पता कि पजल के कौन से पीस से कौन सी पिक्चर बनने वाली है, पर ये छोटे छोटे हिस्से, वो छोटी छोटी कोशिशें हैं जो हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बनाने की। वॉक टॉक रेडियो पर कहानी वाला के साथ आज कहानियों का सफर बस यहीं तक। मेरे जाने का वक्त हो चला है, मैं भी चलता हूँ, फिर भी यहीं मिलता हूँ वॉक टॉक रेडियो पर, जो आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूँ कहानी वाला रजत, जल्द फिर मिलेंगे।

झीली वो रातों में, गहरी सी अपनी वो यादों में मैं रहा, अनकही सी बातों में, मीठी सी वो मुलाकातों में मैं रहा। बहुत सहा मेरे सारे जख्मों को दिए तूने बहुत दवा, लोग साले अपनों को देते रहते बहुत धक्का, बहुत खफा इन सपनों से बहुत खफा। तू भूल जाती झपकों में अपनों को, बंद कमरों में बैठा के देता हूँ गर्मों को, कुछ शर्तों पे रहना होता लड़कों को, कहते कि दर्द नहीं होता सारे मर्दों को, पर वो रोते अपने खो के, मिलते धोके आते जो के पर ना सोते क्यों, तुझे क्या तू तो मेरी हो के यू, मैं किस वफा की उम्मीद रखूं, तेरे ताने सुन लेता तो गाना ये आज मेरे साथ ना रहता, काश बहाने ना देता तो तू शायद आज मेरे साथ ही रहता, काश ये काश का जिक्र ना रहता, सियाही भी पन्नों से बस कफा रहता, और आज भी खुद को मैं कहता ही रहता तू साथ में हो।

0: Radio.
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: in for a better life.
1: अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते।
2: Mock Duck Radio, tune in for a better life.

0: तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज की दुनिया में बहुत से दोगले लोग पाए जाते हैं जो अगर आपके दोस्त बन जाए तो दुश्मनों की भी कमी नहीं महसूस होने देते। इसीलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से बचे रहें और हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं और आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे एफर्ट से आपका गोल धीरे धीरे पूरा होता है। हर दिन की मेहनत काउंट होती है। एक एक दिन जब आपने अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया, आपके दोस्त घूम रहे थे लेकिन आप अपने गोल को पाने के लिए काम कर रहे थे, यही तो टेस्ट है मेरे दोस्त। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन पूरे मन से पूरी लगन से लगे रहना, और जब आखिरकार वो गोल आप अचीव करोगे तो ट्रस्ट मी, माउंट एवरेस्ट चढ़ना और वो गोल अचीव करना एक ही जैसी फीलिंग होगी।
1: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
2: कुछ करके दिखाने की चाह रखने वाले रास्ते में आने वाले पहाड़ों से नहीं डरते। कुछ ऐसी ही बुलंद हौसले रखने वाले एक इंडियन, जिनके बारे में हमने अपनी किताबों में भी पढ़ा है, अनसंग चैंपियंस में आज मैं उनकी कहानी लाई हूँ, जिन्होंने एवरेस्ट के साथ साथ हमारे दिलों पे भी एक हिम्मत की छाप छोड़ दी। कहानी है बछेंद्री पाल की, उत्तराखंड में जन्मी एक ऑर्डिनरी लेडी की, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट से हम देशवासियों को सिखाया कि जो आपकी ट्रू कॉलिंग है वो आपको किसी भी तरह से अपने पास बुला ही लेती है। बछेंद्री जी का जन्म भारत की देवभूमि यानी उत्तराखंड में नाकोरी गांव में 1954 में हुआ था। उनके पिताजी श्री कृष्ण सिंह पाल जी एक किराने की दुकान चलाते थे। बछेंद्री जी एक बैकवर्ड गांव से बिलोंग करती हैं। आज के टाइम पे इतनी अवेयरनेस के बाद भी गांव के लोगों की मेंटेलिटी थोड़ा नैरो ही होती है, तो सोचिए उस समय कितना मुश्किल रहा होगा अपने मन की इच्छा पूरी करना और सोसाइटी के संग चलना। बछेंद्री जी को पढ़ाई से बहुत प्यार था। गांव में लड़कों को तो पढ़ाया जाता था, पर लड़कियों के लिए 10वीं पार करना भी बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी। बछेंद्री जी को लोगों ने पढ़ने से बहुत रोका टोका, फिर भी बछेंद्री जी जिद्दी थी कि उन्हें पढ़ना है, तो उन्होंने घर पे खुद से ही पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही घर के कामों में भी हाथ बटाती थी। अपनी एक कजन सिस्टर जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की थी, उनसे बुक्स लेके बछेंद्री घर पे खुद से पढ़ाई करती थी। उनका डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं थी। फाइनेंशियल स्ट्रेन कम करने और अपनी पढ़ाई सपोर्ट करने के लिए वो 5-5 रुपए के लिए लोगों के कपड़े सिला करती थी। एजुकेशनल बैकग्राउंड उनके गांव में उनके जानने वालों का कुछ भी नहीं था, तो उन्हें बिल्कुल गाइडेंस नहीं मिली। कोई बताने वाला तक नहीं था कि उनको क्या कोर्स करना चाहिए,

और उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं होता था। बछेंद्री जी भी बढ़ रही थी डॉक्टर बनने की तरफ, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होने लगा कि उनका इंक्लिनेशन स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा है। वो कॉलेज में भी स्पोर्ट्स चैंपियन थी और फिर उन्होंने अपनी एजुकेशन लाइन शिफ्ट करी। बछेंद्री ने एमए किया संस्कृत में और देहरादून के डीएवी कॉलेज से बीएड भी किया, और वो अपने गांव से पहली लड़की थी जिन्होंने डिग्री हासिल की थी। एजुकेशन खत्म होने के बाद बछेंद्री जॉब ढूंढ रही थी और एक साल तक बेरोजगार बैठी रही। उनको एमए बीएड के अराउंड ही जॉब चाहिए थी। कहते हैं कि वो बहुत कठिन समय था उनके लिए, क्योंकि इतनी मुश्किलों से लड़कर पैसे इकट्ठा करके पढ़ाई पूरी करी, लेकिन उसके बावजूद उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। लोगों से ताने भी पड़ने लगे कि पढ़ाई लिखाई करके घर पे बैठी हैं। उस दौरान बछेंद्री की मुलाकात कर्नल प्रेमचंद से हुई, जो एक रिनाउंड माउंटेनियर थे। उन्होंने बछेंद्री को सजेस्ट किया कि तुम स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो और पढ़ी लिखी भी हो, तो तुम माउंटेनियरिंग को एज अ करियर क्यों नहीं चुन लेती। वो माउंटेनियरिंग का कोर्स करने के लिए बछेंद्री को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं थी, उनके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो बछेंद्री ने अप्लाई किया और बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करना शुरू कर दिया। इसी बीच बछेंद्री को एक चिट्ठी आई इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से कि वो प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए सिलेक्ट हो गई हैं, और बछेंद्री को उसका विलिंगनेस का रिस्पॉन्स भेजना था, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लकीली उन्हें वहां से फिर एक रिमाइंडर आया, तो अब वो चिट्ठी लेके गई अपने कोच के पास और उन्होंने समझाया बछेंद्री को कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा डोर नॉक कर रही है, इसे मत जाने दो। यहाँ से संघर्ष शुरू हुआ उनका एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी का। बछेंद्री कहती हैं कि उस समय वो 100% फोकस्ड हो चुकी थी और उन्हें एवरेस्ट किसी भी कीमत पे चढ़ना था। जब हम कुछ भी बड़ा करने लगते हैं तो हमारे रास्तों में मुश्किलें तो आती ही हैं। जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी तो गांव के लोग उन्हें ताने सुनाने लगे। पिताजी की तरफ से उनको ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन उनकी माँ को नहीं पसंद था उनका ऐसे पहाड़ों पे जॉगिंग जाना, लोगों के ताने सुनना। इसलिए कोई ये ना बोले कि बछेंद्री टाइम वेस्ट कर रही है, वो पहाड़ों से लकड़ियाँ चुन के ले आती थी। इससे दोनों काम हो जाते थे, उनकी प्रैक्टिस भी और घर का काम भी। बछेंद्री काफी जिद्दी थी अपने गोल्स के लिए। जैसे उन्हें पढ़ाई पूरी करनी थी वो उनका पहला गोल था, वो पूरा करके दिखाया। फिर उन्हें एवरेस्ट पार करना था, वो भी पूरी लगन के साथ कर रही थी। लाइफ में ना, आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे दूर चली जाती है। जैसे ही आप उसे जाने देते हो और फोकस शिफ्ट करते हो तो वो चीज आपके लिए वर्कआउट कर जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ बछेंद्री के साथ। जैसे ही प्रैक्टिस का थोड़ा फोकस शिफ्ट हुआ, उनको आया टाटा से जॉब ऑफर। उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। उनके छोटे से गांव में ऐसा ऑफर आना, वो भी किसी लड़की के लिए, बहुत ही सम्मान की बात थी। गांव की तरफ से जो सोशल प्रेशर पड़ रहा था उस पे रोक लग गई थी। फिर उन्होंने अपनी ट्रू कॉलिंग सुनी। निकल पड़ी बछेंद्री एवरेस्ट के सफर पे। चढ़ते हुए भी सफर बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन वो ऑलरेडी लाइफ का एक एवरेस्ट पार कर चुकी थी, पढ़ाई करके, जॉब करके। तो इस एवरेस्ट को पार करने के लिए उनमें पूरी क्षमता थी। एवरेस्ट चढ़ते समय एक बार आधी रात को उन्हें एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आई। पहले उन्हें लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन फिर समझ आया कि उनकी बॉडी पे इतना वेट पड़ रहा है और वो एवलांच के नीचे दब गई हैं। एक पल के लिए उन्होंने मान लिया कि अब बच पाना मुश्किल है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके टेंट पार्टनर के पास नाइफ था और नाइफ के कारण दोनों बच गए। अपनी जान बचाकर उन्होंने अपने साथ वालों को भी वहां से निकाला। आसान तो बिल्कुल भी नहीं था यह सफर। माउंटेनियरिंग बहुत ब्रेवरी स्पोर्ट है, और छोटे से गांव से आई हमारी आज की चैंपियन ने माउंट एवरेस्ट के साथ साथ लाइफ के भी एवरेस्ट का सामना किया और पद्मश्री, पद्मभूषण और अर्जुन अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स अपने नाम किए। देश के हर उस सिटीजन के लिए जिन्हें लगता है कि उनके पास एक्सपोजर नहीं है लाइफ में, उन सब के लिए एक मिसाल बनी बछेंद्री पाल। ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी। ऐसी ही कुछ और कहानियों के साथ लौटेंगे ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो।
Tune in for a better life.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: हम हमेशा उपवास रखते हैं खाने का, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? उपवास लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। सिर्फ अपनी बॉडी को डिटॉक्स मत करिए, अपने मन को भी करिए। अपने दिमाग से जो आपके बेकार थॉट्स हैं, उनको भी निकालिए।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

से डरे उजाले जिनके मुंह पे तो ये सूरज भी जले। मांगी मन्नते भी काफी जन्नत है जहाँ की तू अमर रहे सदा ही बातें बाकी। सफर में काटे काफी गम को हम बाटे तो ये दिल क्यों मांगे माफी। क्यों खुश होता तेरी खुशी के साथ क्यों।

कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

मेरे दोस्त, सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे, तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में, तू चाहे वो वक्त ले ले।

0: रेडियो।
1: कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।

बात है 2018 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप्स की। सबकी नजरें थी ट्रैक पे भागते हुए खिलाड़ियों पर और उन्हीं खिलाड़ियों में भाग रही थी हिंदुस्तान की बेटी, जिसको उस समय शायद ही कोई जानता था, या यूं कहें कि शायद ही किसी को पता था कि ऐसी कोई लड़की भारत को वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट करने भी गई है। रेस खत्म होते ही इतिहास रचने की खुशी मनाती हुई और भारत का नाम ऊंचा करने वाली उस चैंपियन की बात कर रही हूँ मैं आज आपके साथ कविता, और शो का नाम है अनसंग चैंपियंस, जहां मैं आपके लिए रोज लेकर आती हूं दुनिया के ऐसे दमदार चैंपियंस की कहानियां, जिन्होंने अपने सपनों के सामने दुनिया की किसी भी मुश्किल को कभी ना आने दिया और मिसाल बने हम सबके लिए अपने जोश और जुनून से। आज हम शो में बात करेंगे भारत के लिए 2018 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला गोल्ड लाकर इतिहास रचने वाली हिमा दास की। अब तक हिमा दास कई सारे मेडल्स देश के लिए ला चुकी हैं और ये असम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हिमा ने मात्र 18 साल की उम्र में इतिहास रचने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक भारत का नाम बहुत से इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में रोशन करके हमें गर्व करने का मौका दिया है। हिमा के मन में बचपन से इंडियन जर्सी पहनने का जुनून था। वो सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानती थी और ये अक्सर उनको अपने इंटरव्यूज में कहते सुना गया है। हिमा की माने तो सचिन ही उनकी इंस्पिरेशन है, जिनके कारण उनके मन में इंडियन जर्सी पहनने का सपना घर कर गया था। यूं तो हिमा खेलना सिर्फ इसलिए चाहती थी क्योंकि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी और साथ ही साथ उनको लगता था कि स्पोर्ट्स की वजह से उनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। पर जब उन्होंने सचिन को जर्सी में देखा तो वो इंडियन जर्सी पहनना उनका लक्ष्य बन गया था। वो एक ऐसा सपना था जो हिमा किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती थी। हिमा दास के जन्म और घर की बात करें तो हिमा का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के नागांव जिले के ढिंग गांव में हुआ था और इसी वजह से वो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती हैं। हिमा एक फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो 6 भाई बहन हैं। हिमा को बचपन से स्पोर्ट्स में रुचि थी। उनके पापा भी फुटबॉल प्लेयर रहे हैं और काफी क्लब्स के लिए वो फुटबॉल खेलते थे, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इसे आगे ना ले जा सके। उनसे इंस्पायर होकर ही हिमा ने फुटबॉल खेलना शुरू किया और यही एक कारण है कि उनको अपने पिता का हमेशा सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि वो खुद एक स्पोर्ट्समैन थे और हिमा को समझ सकते थे। हिमा फुटबॉल तो अच्छा खेलती ही थी और उसमें आगे भी जाना चाहती थी, पर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फुटबॉल छोड़कर ट्रैक स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाया? चलो ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हिमा ने ट्रैक गेम्स को ज्वाइन किया और इतनी छोटी सी उम्र में इतना काम कर लिया। हिमा को स्पोर्ट्स में खूब दिलचस्पी थी और वो स्कूल के हर एक इवेंट में भी भाग लेती थी। रेसिंग, शॉटपुट, लॉन्ग जंप और बाकी और सब में गोल्ड हासिल करती थी, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी थी। हिमा के पास ना ही फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा ग्राउंड होता था और ना ही अच्छे जूते, इसलिए वो अपने खेत में गांव के बच्चों के साथ खेला करती थी। कुछ समय बाद स्कूलों में प्रतियोगिताएं खत्म हो गईं। तब उनके स्कूल में एक योगा का नोटिस आया। ये एक महीने का कैंप था और सुबह 4:30 बजे से 6 बजे तक हिमा रोज इसमें जाती थी। हिमा योग को जिस डिसिप्लिन से फॉलो किया करती थी, उसी डिसिप्लिन को देख के हिमा के पीटी टीचर ने उन्हें एथलीट बनने का सुझाव दिया। उनका सुझाव मानकर हिमा ने इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। जिस तरह के बैकग्राउंड से वो आती थी, उन्हें डर था कि इस मुकाबले में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, पर पहुंचने पर हिमा को रियलाइज हुआ कि उनके पास भागने के लिए स्पाइक्स वाले जूते भी नहीं थे। हिमा ने जूतों की परवाह ना करते हुए रेस में पार्टिसिपेट किया और वो अपने साधारण जूतों में भागी और नागांव डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर हिमा दास डिस्ट्रिक्ट खेलती रही और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे स्ट्रगल करते करते धीरे धीरे हिमा ने अपने सपने को पाने की शुरुआत की। अब हिमा ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपना नाम बना लिया था, पर ऐसे जाने माने डिस्ट्रिक्ट के मैचेस तो साल में एक ही बार होते थे, तो अब सवाल ये था कि बाकी के समय क्या करें। ढिंग गांव में इतनी प्रैक्टिस के ज्यादा साधन तो नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोबारा से क्लब में जाकर फुटबॉल खेलना शुरू किया,
ताकि उनका खेल से संबंध बना रहे। कुछ समय बाद 2017 आसाम गवर्नमेंट की तरफ से एक महीने के लिए फंड रेजिंग कैंप का आयोजन किया गया, तो हिमा ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने वहां मन लगाकर अभ्यास किया। हिमा के इस लगन और अभ्यास को फंड रेजिंग कैंप में दो शख्स गौर से नोटिस कर रहे थे। वो शख्स थे निपुण दास जी और अभिजीत जी। उन्होंने हिमा को गुवाहाटी आने को कहा क्योंकि वो हिमा की प्रतिभा जान गए थे। इस सुझाव को लेकर हिमा वापस अपने घर गई और उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस विषय पर चर्चा की। इस बात से उनकी माँ ज्यादा खुश नहीं थी, पर उनके पापा का उनको पूरा सहयोग था। उनके पिता रंजीत दास जी जानते थे कि एक प्लेयर का दिल कैसा होता है। वो हिमा का जज्बा समझते थे और आपको तो पता है माँ का दिल कैसा नरम होता है। वो नहीं चाहती थी कि हिमा उनसे दूर जाए, पर हिमा के जुनून ने अपनी माँ को भी मना ही लिया। जेब में सिर्फ 350 रुपए लेकर हिमा अपने गांव से गुवाहाटी को चली। हिमा मात्र 17 साल की थी। उनका इस जगह रहने का कोई ठिकाना न था। काफी दिक्कतों के बाद निपुण दास जी और अभिजीत जी ने गुवाहाटी के एक डॉक्टर के सहयोग से हिमा के रहने और खाने का इंतजाम किया। गुवाहाटी में 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद हिमा को खेलने के लिए हैदराबाद जाने का मौका मिला। उनका जो बचपन से सपना था कि वो एक दिन इंडियन जर्सी पहने, वो आखिर पूरा हो गया था। हैदराबाद में जूनियर यूथ एशियन चैंपियनशिप की एक सिलेक्शन लिस्ट निकली और उसमें बैंकॉक जाने की टीम में हिमा का भी नाम आया। हिमा फिर बैंकॉक गई। वहाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, पर हिमा वहाँ 6th पोजीशन पे आई। साहिर सी बात है, वहाँ का कंपटीशन लेवल भी बहुत हायर रहा होगा, लेकिन हिमा 6th आने से बिल्कुल निराश नहीं हुई, क्योंकि वो जूनियर यूथ एशिया चैंपियनशिप में जरूर 6th आई थी, पर इंडिया से तो वो पहली लड़की थी जिसका सिलेक्शन हुआ।

था और इस बात की खुशी हिमा को कई ज्यादा थी। और इस इंडियन जर्सी पहनने का और इंडिया को रिप्रेजेंट करने की इच्छा का पहला कदम पूरा हुआ। जूनियर यूथ एशियन चैंपियनशिप के बाद हिमा वापस गुवाहाटी जाकर प्रैक्टिस करने लगी। तब उनके कोच निपुण जी ने हिमा को कहा कि अब सीनियर लेवल की तैयारियां शुरू करो। तो 18 साल की हिमा ने सीनियर लेवल की ट्रेनिंग शुरू कर दी और चेन्नई जाकर सीनियर लेवल पर परफॉर्म किया। इस कॉम्पिटिशन में हिमा सबसे छोटी थी और अपने से उम्र और तजुर्बे में बड़े प्रतियोगियों को देख के हिमा डर सी गई और ठीक परफॉर्म नहीं कर पाई। उस परफॉर्मेंस को देखकर उनके कोच से उनको काफी डांट पड़ी और डांट का असर कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन हिमा ने फिर गोल्ड लाके दिखाया। इस रेस को फेडरेशन के मेंबर्स भी परख रहे थे। कुछ समय बाद निपुण दास जी को फेडरेशन मेंबर्स ने कॉल करके कहा कि हिमा को इंडियन टीम भेज दो। हिमा की लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट था। हिमा काफी खुश थी। हिमा ने लगन के साथ इंडियन टीम के सीनियर से ट्रेनिंग ले, पटियाला, पोलैंड और भी अलग अलग जगहों पर जाकर ट्रेनिंग ले और इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में बैक टू बैक इतिहास रचा। उनकी इस उपलब्धि के बाद एडिडास जैसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड ने उनको घर आते ही अपना ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया ही, साथ ही साथ उनके नाम के कस्टमाइज शूज भी बनवाए। जरा सोचिए कैसा रहा होगा वो पल एक लड़की के लिए जिसके लिए बचपन में कभी शूज अफोर्ड करना ही एक स्ट्रगल था, जो अपने साधारण जूतों पर एडिडास लिखा करती थी। आज वो उसी ब्रांड की एम्बेसडर बन गई हैं। 2019 का जुलाई का महीना हिमा का रहा। 20 दिनों के अंतराल में 5 गोल्ड मेडल एक बड़ी उपलब्धि हिमा ने देश के लिए हासिल करी। हिमा दास ने अपने हुनर के बलबूते पर फेमिना, वोग जैसी मैगजीन के कवर पर अपना चमकता चेहरा पहुंचाया। ये वो मैगजीन्स हैं जिसपे खूबसूरती के मानक तय होते हैं। ऐसे मुकाम पर हिमा सिर्फ अपनी काबिलियत से पहुंची हैं। हिमा दास की कहानी हमें बताती है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लें तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ खुद को पहचानने की और मेहनत की। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको पसंद आई होगी। फिर से लाऊंगी कल एक और ऐसी कहानी। मैं कविता, शो का नाम है अनसंग चैंपियंस और सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो।
1: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।
0: वॉक टॉक रेडियो।
2: Thank you.

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में, जिसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। कोशिश इतनी सी है कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ पाए। है वैसे, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले लोगों में से एक हैं। लेकिन स्टिल कभी कभी होता है ना ऐसा कि बहुत ज्यादा अपन लो फील करते हैं, या हमको थोड़ा सा लगता है कि यार हमारे साथ में कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी हार मानता है, किस में कितना पेशेंस है। और जितना ज्यादा पेशेंस है ना हमारे अंदर, या जितना ज्यादा हम कहते हैं ना कि धैर्य रखने वाले लोगों में से हैं, उतनी ही हमारी जिंदगी इजी गोइंग रहेगी। क्योंकि ऐसे लोगों को हड़बड़ी नहीं होती। हालांकि बहुत ज्यादा धैर्य भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो जल्दबाजी भी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं वही वाली चीज कि हर एक चीज स्वादानुसार होनी चाहिए, मिर्च हो या नमक। हद से ज्यादा चीनी भी चीज को कड़वा बना सकती है, भले ही उसका टेस्ट मीठा होता हो। तो वो वाली चीज है, पेशेंस भी एक लिमिट का होना चाहिए, और इंपेशेंट भी अगर आप हैं तो एक लिमिट तक होना चाहिए। इंपेशेंट कुछ चीजों को लेकर के होना चाहिए। आप यूं ही हर एक चीज को ओके ठीक है आ जाएगी, कल को आपको एकदम से ब्लड की जरूरत है और आप आराम से धैर्य से बैठे हैं, कभी कोई आएगा तो मिल जाए, वो नहीं चल सकता ना। ऑपरेशन अगर जो अभी होना है तो ब्लड अभी चाहिए, वहां आपका धैर्य काम नहीं आएगा। वहां पर आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जाके लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो इंपेशेंट होना भी थोड़ा सा जरूरी है। एट द सेम टाइम जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, इनके साथ में किस तरह से सर्वाइव करना है, इनके साथ में जिंदगी जीना किस तरह से सीखना है, ये हमें ही देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इस दुनिया में कोई भी बीमारी नहीं है। इतनी सारी बीमारियां आई, नई नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और उनके साथ में हम कहीं ना कहीं जिंदगी को जीना सीख रहे हैं। जैसे अभी देख लीजिए ना, अनलॉक के फेज चल रहे हैं। अभी हम कोरोना के साथ में अपनी जिंदगी को सेटल करने की कोशिश में हैं। इनफैक्ट काफी हद तक कर चुके हैं। प्रॉपर सेफ्टी के साथ में हम बाहर निकल रहे हैं, हम हमारी रूटीन लाइफ को वापस लेकर के आ रहे हैं, और यही तो एक तरीका है। ये कोरोना जैसी चुनौतियां हैं, इनके साथ में अपनी जिंदगी में किस तरह से एडजस्ट करना है, ये हम ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी नीड बन चुकी है। ठीक वैसे ही हमारी मंजिल तक पहुंचने में जो मुश्किलें हैं, उनके साथ में हमको आगे बढ़ना सीखना होगा। हम ये चाहें कि नहीं यार मुश्किलें ही नहीं आए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जिस रास्ते में कोई मोड़ नहीं होते, वो रास्ता कहीं के लिए नहीं जाता। तो अगर जो कहीं जाना है तो रास्ते में मोड़ तो होंगे ही होंगे। रास्ते के गड्ढे भी जरूरी हैं जनाब, वरना अक्सर हम अपना ध्यान इधर उधर भटका लेते हैं। तो आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि ये जो चैलेंजेस हैं, ये हमारी जिंदगी में कितने जरूरी हैं, वरना उनका क्या असर हो सकता है। तो जापानीज का क्या है कि इनको ना मछलियां सालों से बहुत ज्यादा पसंद है। इनका जो फूड है, इनकी जो डाइट है, उसका एक ऐसा पार्ट है जिनको ये शामिल करते ही करते हैं। और जो फ्रेश मछलियां हैं, उनका टेस्ट इन लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों को खाते हैं या जानते हैं, तो उनका टेस्ट आप यूं पकड़ लेते हैं। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है। तो ऐसे ही इनके साथ में भी हुआ कि जो मछलियां हैं, उनको मछुआरे समुद्र के बीच में से जाकर के लेके आते थे, लेकिन जब तक वो आती थी, शहर के अंदर आती थी, तब तक वो मर जाती थी, बासी हो गई। अब समस्या ये है कि वो फ्रेश मछलियों वाला टेस्ट तो उसमें आ ही नहीं रहा, तो लोगों ने बासी मछलियां खरीदना कम कर दिया। तो जो मछुआरे थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए ताकि लोग और ज्यादा खरीदें, ये बासी ना हो। तो मछुआरों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हमारी बोट में फ्रीजर लगा देते हैं, वो मछलियां पकड़ते उनको फ्रीजर में डाल देते हैं, ताकि वो लंबे समय तक ताजी बनी रहती। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का भी टेस्ट पहचान लिया, उनको वो फ्रेश वाली मिली नहीं रही, उतनी टेस्टी नहीं है ये। तो ऐसे में लोगों ने उनको भी खरीदना कम कर दिया। मछुआरे फिर से एक बार टेंशन में कि अब क्या करें। फिर से उनकी पूरी मीटिंग हुई, बाकायदा सोचा, आइडियाज लिए गए, एक सोल्यूशन मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में एक फिश टैंक बनवा लिया, मछलियां पकड़ते और उन्हें पानी से भरे हुए फिश टैंक में डाल देते, और इस तरह से ताजी और जिंदा मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन अब इसमें भी समस्या, फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक तो इधर उधर चलती, लेकिन जगह ज्यादा नहीं थी तो एक ही जगह रुक जाती। अब जब तक मछुआरे किनारे तक पहुंचते, वो सांस तो ले रही होती, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली समुद्र में वो खुले में इधर उधर घूम रही हैं, तो न तो उनके अंदर वो एनर्जी है, तो उनका जो टेस्ट है वो भी बदल जाता, और लोगों ने चेक करके ये भी अंतर पहचान लिया कि ये ताजी तो नहीं है। मछुआरों को समझ नहीं आ रहा ये क्या करें क्या, टेंशन में आ गए वो, पूरा उनका एसोसिएशन, पूरा यूनियन बैठ करके डिसाइड कर रहा था कि क्या करें क्या करें, लोगों को बोलें कि हम फ्रेश नहीं दे पाएंगे। तो अचानक से एक छोटा सा बच्चा साइड से बोला, उसने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको प्रॉब्लम ये है ना कि फिश टैंक में मछलियां एक जगह रुक जाती हैं और इस वजह से उनकी उनका जो टेस्ट है वो बदल जाता है। अब एक काम करिए, एक छोटी सी शार्क लीजिए और उन मछलियों के बीच में डाल दीजिए। लोगों ने ये सुना, उनको आइडिया अच्छा लगा, और उसके बाद में उन्होंने यही किया। उन्होंने फिश टैंक में मछलियां डालने के बाद एक शार्क उसमें डालनी शुरू कर दी।
अब वो जो शार्क थी वो फिश टैंक के अंदर की कुछ मछलियों को खा तो जाती थी, थोड़ा सा नुकसान होता था, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी उनमें एनर्जी और ताजगी बनी रहती थी, क्योंकि शार्क है, उनसे बचने के लिए मछलियां भागती रहती थी, शार्क उनके पीछे, वो इधर उधर भाग रही है, डर के मारे पूरे समय इधर उधर मछलियां भाग रही है। यानी कि टैंक में है वो, लेकिन फिर भी फ्रेश है, और लोगों ने बड़े चाव से उनको लेना, खरीदना और खाना शुरू किया। उस छोटे से बच्चे की सजेशन की वजह से जापानीज मछुआरे जो थे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया। और यही तो हमारी जिंदगी में होता है, हमारी जिंदगी में भी ये शार्क के रूप में जो चैलेंजेस है ना, ये जब तक नहीं आते हम ऐसे ही बेजान पड़े रहते हैं, सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन जिंदा दिली हमें होती ही नहीं है, एक ही रूटीन में बंद के रह जाते हैं। 9 से 5, ये 9 से 5 इतना ज्यादा बोरिंग क्यों माना जाता है? क्योंकि लाइफ में कुछ और डिफरेंट है नहीं। सुबह उठकर के ऑफिस जाना, ऑफिस में पूरे दिन काम करना, शाम को वापस आना, सो जाना, खाना खाके और वही रिपीट करना। इसीलिए तो वीकेंड्स दिए गए, ताकि हमारा रूटीन थोड़ा सा चेंज होता रहे, हम हमारी जिंदगी में कुछ नया करें, उन मछलियों की तरह बस एक धर्रे पर ना चले। और यही ट्राई करिए, चैलेंजेस हैं तो उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एट द सेम टाइम एक जगह मत पड़े रहिए, बोरिंग हो जाती है जिंदगी। और छोटी सी जिंदगी, एंजॉय करो इसको जो पल मिले। कुछ लोग होते हैं ना जो एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस में देते हैं, बैठे हैं आराम से वीडियोस देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, बाहर इतनी बड़ी दुनिया है, बाहर इतने सारे लोग हैं, निकलिए, दुनिया को देखिए, जिए। वैसे भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट हम ऑफिस के अंदर ही दे रहे हैं, 24 घंटे में से हर दिन 9 घंटे ऑफिस के अंदर। इससे ज्यादा वक्त मत दो, स्मार्टली काम करो, टाइम पर काम निपटाओ और निकलो। और ये चैलेंजेस जो है इनको एक्सेप्ट करो, इनके साथ में रहना सीखो, इनके साथ में आगे बढ़ना सीखो, और उसके बाद में जो जीत होगी वो हमारी होगी। और ये हमें क्यों लगता है कि चैलेंजेस सिर्फ हमारी जिंदगी में है? जितनी बड़ी मंजिल उतने बड़े चैलेंजेस। जो हमारी मंजिल है ना, वो भी उस समय पर जाते ही सफर हो जाएगा, यकीन मानिए। अगले एपिसोड में बात करेंगे इसी बारे में, मंजिल और सफर में क्या डिफरेंस है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड।

0: आपके और आपकी सफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी है। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी कबूल हो जाएंगे।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमारी जिंदगी कभी भी कुछ मिनटों की मेहमान नहीं होती जो गिनती के पलों में बदल जाए। पर हाँ, अगर आप अपने फैसले कुछ मिनटों के आधार पर लेते हैं तो वो आपकी जिंदगी को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपनी लाइफ के छोटे या बड़े फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

वेलकम बैक, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो, एक कोशिश छोटी सी आपको मोटिवेट रखने की, आपको पॉजिटिव रखने की, और आपकी जिंदगी की जो समस्याएं हैं कोशिश करते हैं कि उनका हल थोड़ा सा मिल सके, ताकि आपकी जो स्माइल है ये खूबसूरत वाली ये यूं ही बरकरार रहे, आपका चेहरा खिला खिला रहे और सेल्फी के लिए एक्स्ट्रा पाउट की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही स्माइल आप कर सके। सो बेसिकली आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मंजिल और सफर के बीच के अंतर की। एक बात समझिए, एक छोटी सी बात, कि हमारा जो आज है ये भी एक दिन कल हो जाएगा, और हमारा आने वाला जो कल है वो भी किसी दिन आज होगा, और वो भी गुजरा हुआ कल हो जाएगा। This is how it works. I mean, यही तो है पूरा प्रोसेस। हर किसी ने लाइफ में ना अपने टारगेट सेट कर रखे हैं, गोल सेट कर रखा है। हमको लगता है कि हमारी मंजिल, एक तो ना मुझे मंजिल वाली चीजें कभी समझ नहीं आती, क्योंकि इस दुनिया में ना ट्रस्ट में मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। मैं दुनिया से बिल्कुल ही उलट बोल रहा हूं, लेकिन अब मैं प्रूव करूंगा मेरी बात को कि मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये एक इमेजिनरी दुनिया है जो हमने सोच ली है कि मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। मुकाम बोल सकते हो आप, लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल का मतलब ये हुआ कि अब आपका सफर हो गया है खत्म, आप पहुंच गए आपको जहां जाना था। सपोज आपको दूध लेने के लिए जाना है और आपको दुकान तक जाना है, आपकी दुकान है आपकी मंजिल, उसके बाद खत्म हो गया आगे का प्रोसेस। चलिए ठीक है, इग्नोर कर दीजिए। ऑफिस से आपको घर पहुंचना है, घर आपकी मंजिल है, आप घर पहुंच गए, आप घर रुक जाइए, सफर का अंत हो गया, ये है मंजिल। तो क्या हमारी जिंदगी में सच में कोई मंजिल है? नहीं, मुकाम बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि मुकाम किसी भी चीज का एंड पॉइंट नहीं है। मुकाम के साथ में भी जर्नी तो कंटिन्यू है। मंजिल हम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ना हमने अलग अलग कुछ गोल सेट किए होते हैं। किसी इंसान का गोल है कि उसके अकाउंट में कम से कम इतना पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, किसी इंसान का गोल है कि उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, किसी इंसान का गोल है कि उसको मैनेजरियल पोजीशन पर जाना है, मैनेजर बनना है, किसी इंसान का गोल कुछ और है। हर किसी के गोल अलग हैं, वो गोल तक पहुंचने को हम मंजिल मिलना तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एंड पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट वहां से एक अलग सफर शुरू होता है, थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार सफर शुरू होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज मेरा सपना है कि मुझे अपना एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जो कि इस शहर में सबसे बड़ा हो, जिसके बहुत सारे कंज्यूमर्स हों। मैंने बिजनेस खड़ा कर लिया, मैं वहां तक पहुंच गया, क्या मुझे मेरी मंजिल मिल गई? नहीं, सफर तो जाने मन अब शुरू हुआ है, बड़े चैलेंजेस तो अब आएंगे। छोटे रास्तों पर आप आराम से चल सकते हैं, बड़े रास्तों पर ज्यादा केयरफुली चलना पड़ता है। वही वाली बात कि जितने बड़े गोल्स होते हैं उतने बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। तो मंजिल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, मुकाम होते हैं। तो मुकाम के पीछे भागिए, मंजिल के पीछे नहीं, क्योंकि आप वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही आपके फिर गोल बदल जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा ना, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो बड़े छोटे छोटे से गोल्स होते हैं हमारे, बड़ी ही छोटी छोटी सी मंजिल होती है। जब तक हमारी जॉब नहीं लगी होती, हमको लगता है 15-20 हजार की कोई जॉब मिल जाए जिसमें हम हमारे खर्चे पूरे कर सकें,

होता है ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, मुझे मेरे घर वालों से पैसे नहीं लेना पड़े, मेरी जिम की फीस, मेरा पेट्रोल, मेरा ये वो, हमारी बस इतनी सी ख्वाहिश होती है। जब 15-20 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाती है, फिर हमको लगता है यार 50-60 हज़ार तो हूँ कम से कम, यहाँ तक पहुँचते हैं तो फिर लाखों में होने लगता है। धीरे धीरे धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और जैसे जैसे हम हमारे गोल्स को अचीव करते जाते हैं, हमारे नए गोल सेट होते जाते हैं। कभी हमारा सपना सिर्फ साइकिल का होता था, फिर बाइक का हो गया जब साइकिल मिल गई, तो फिर जब बाइक मिल गई तो कार का हो गया, जब कार मिल गई तो फिर ऑडी BMW का हो गया। बदलती जाती हैं चीजें, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि इच्छाओं को खत्म करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छाएं खत्म हो गई ना तो जिंदगी से रंग चले जाएंगे। हमारी इच्छाएं हैं और हम उन्हीं को पाने की या पूरी करने की कोशिश करते हैं, और वही तो फन है जिंदगी का। वरना एक पेड़ को देख लीजिए ना, बड़ा होता है, एक ही जगह रहता है और वैसा ही खत्म हो जाता है, सालों साल तक वही चलता रहता है प्रोसेस। उसकी जिंदगी में डिफरेंट कुछ नहीं है, सीजन आता है, फल आते हैं, लोगों को फल देता है, वापस पतझड़। हमारी जिंदगी, हम इंसानों की जिंदगी अलग है, क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में इतने सारे रंग हैं। जानवर हैं, उनके कोई ऐसे गोल्स नहीं है, उनका बस एक सर्कल चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है कि उनको खाना है, सोना है, खाना है, सोना है। मतलब इस एपिसोड में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक तो मंजिल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, मंजिल है ही नहीं कोई, पूरी जिंदगी सफर में जाती है और फाइनली गुजर जाते हैं हम। मिली है आज तक किसी को मंजिल? आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से जो मंजिल है, सफर वहां पर भी है। रास्तों की तरह जो एंड पॉइंट सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, जहां सड़क खत्म हो रही है, आपको लग रहा है कि ये खत्म है यहां पर सड़क, वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो वो एंड पॉइंट और आगे बढ़ जाता है और सड़क कहीं और खत्म हो रही होती है, बट असल में सड़क कहीं खत्म होती ही नहीं। यही बात है कि मंजिल जैसी कोई चीज नहीं है, मुकाम होते हैं, और उन मुकाम की लड़ाई है हमारी ये पूरी जिंदगी जो हम लड़ते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। दूसरा, इच्छाएं खत्म नहीं होनी चाहिए, जीने का मजा आना खत्म हो जाता है, आप प्रोग्रेस करना बंद कर देते हैं, आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। लोग इसको लालच बोलते हैं, बट मुझे लगता है ये लालच नहीं है, ये पुश है। हम अगर जो सोचेंगे नहीं, उसके सपने नहीं देखेंगे, तो उसको पाएंगे कैसे? और कोई बुराई नहीं है इसमें, आज मेरे पास बाइक है, मुझे कार की चाहत है, आज मेरे पास कार है तो मुझे, अब सपोज मेरे पास हैचबैक है, मुझे SUV चाहिए या फिर मुझे जीप चाहिए, तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, मैं पैसे इकट्ठा करूंगा, और वही तो फन है। ये लालच नहीं है, ये आगे बढ़ने का एक जुनून है, एक पुश है जो हमें पीछे से मिल रहा है और जो बहुत जरूरी है। तो अपनी इच्छाओं को बरकरार रखिए, मंजिल की लड़ाई मत लड़िए, मुकाम की लड़ाई लड़िए, क्योंकि मंजिल है ही नहीं इस दुनिया में। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए भी कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपको समझ आए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस भी हालात में है, हंसिए और मुस्कुराइए। एक बात बताइए, आज आपका बुरा वक्त चल रहा है या कुछ ऐसा हुआ जो आपके हिसाब से सही नहीं है? आपके हिसाब से इसलिए मैंने थोड़ा सा जोर देके बोला है क्योंकि कुछ चीजें हमारे लिए सही होती हैं जो आज गलत हैं। हम आज देख नहीं सकते उनका पॉजिटिव साइड, जिस तरह से दवा कड़वी होती है लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इफेक्ट है वो हमारे भले के लिए है, ठीक वैसे ही आज की मुश्किलें, आज का बुरा वक्त किसी ना किसी के अच्छे दिन के लिए ही बना हुआ है। वो उस वक्त जाके हमको रियलाइज होता है कि अच्छा यार ये हुआ, अच्छा ही हुआ। तो इसलिए आज का जो बुरा वक्त है, क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर टेंशन किस बात की, और अगर नहीं कर सकते तो भी टेंशन किस बात की। जीरो से शुरू किया था आपने, यहां तक खुद के बलबूते पर पहुंचे हो, ये याद रखना। और जब आप यहां तक पहुंच सकते हो ना, तो कितने ही नीचे गिर जाओ, आप फिर से वापस उतना ही ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। फेलियर्स को कभी भी दिल पे मत लेना, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, स्टे ट्यून्ड।

0: रेडियो।
1: जीवन में कितने भी परेशानियां क्यों ना आए, कितने भी दिक्कतें क्यों ना हो, तुम कभी कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज के तपन से समुद्र कभी सूखा नहीं करते।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

वेलकम बैक, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। कैसे हैं आप? पहले से ज्यादा खूबसूरत? ऑफ कोर्स होंगे यार। ट्रांसफॉर्मर्स की कोशिश भी यही है कि थोड़े से आप स्माइल करते रहिए, और ये स्माइल है ना, ये बेस्ट मेकअप है इन दिस वर्ल्ड। आप थोड़ा सा स्माइल करिए, आप यूं ही खूबसूरत लगने लगते हैं। एक कहावत मेरे आसपास के जितने भी बुजुर्ग हैं वो जरूर कहा करते थे, मैंने बचपन में ये कहावत बड़ी सुनी है, तो वो ये बोला करते थे कि अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है। बेसिकली इस कहावत का मतलब ये था कि आपको जो काम करना है आप खुद करो, तभी आप उसको बेहतर कर पाओगे। अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है, किसी और के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो आप जैसा चाहते हो वैसा काम कोई और करके दे नहीं सकता। अगर आप किसी काम को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो तो कोशिश करो कि उसको खुद करो, क्योंकि जब आप खुद करोगे तो अपने तरीके से कर पाओगे। किसी और पर डिपेंडेंट रहोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। एक कहानी सुनाता हूं इससे जुड़ी हुई। तो एक बार एक गांव में किसान रहता था। उसके गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था उसका। फसल बोने के कुछ दिनों के बाद में उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ वक्त बीता, चिड़िया ने वहां पर दो अंडे दे दिए। उन अंडों में से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आए और बड़े मजे से आराम से वो खेत में रह रहे हैं। कुछ महीनों के बाद में फसल की कटाई का वक्त आ गया। तब तक वो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों को ये टेंशन कि अब उनको इस खेत को छोड़कर के जाना पड़ेगा, क्योंकि अब फसल की कटाई होगी तो उनका घोंसला वैसे ही बिगड़ना है। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को ये कहते हुए सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसको खेत में भेजूंगा ताकि वो फसल कट सके। और ये सुनकर के चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो बच्चों ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे किसान आया था और वो ये बोल रहा था कि अपने पड़ोसी को भेजेगा और ये फसल कटवाएगा। आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पर, हमें रात में ही किसी दूसरी जगह के लिए निकल लेना चाहिए।

चिड़िया ने कहा, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। इसके बाद में आराम से वो सो गए और चिड़िया की बात एकदम सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को किसान फिर से खेत में आया। खेत को जैसे का तैसा देख करके बुदबुदाने लगा कि यार ये पड़ोसी तो नहीं आया, ऐसा करता हूं कल अपने किसी रिश्तेदार को यहां पर भेजता हूं, वो फसल काटेगा। चिड़िया के बच्चों ने फिर से सुनी। चिड़िया जब वापस लौट करके आई, उसको फिर से बताया कि ये किसान आज बोल रहा था कि मैं किसी रिश्तेदार को भेजूंगा। चिड़िया फिर से मुस्कुराई, बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज की रात तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन किसान का रिश्तेदार नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान कि उसकी माँ जो बोल रही है उसकी सब बातें सही साबित हो रही हैं, ऐसे कैसे पता है इसको कि वो आएगा या नहीं आएगा। अगले दिन शाम को फिर से किसान खेत में पहुंचा। खेत की फसल देखी तो वैसी की वैसी खड़ी हुई। बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं है, कल मैं खुद आकर के अपनी फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात सुनी। जब उनकी माँ लौट के आई तो उन्होंने बताया कि आज किसान ये बोल रहा था कि कल मैं खुद आकर के अपनी कटाई करूंगा। तो चिड़िया बोली, बच्चों अब समय आ गया है इस खेत को छोड़ने का, हम आज की रात ही ये खेत छोड़कर के दूसरी जगह चले जाएंगे। अब दोनों बच्चे हैरान कि इस बार में ऐसा क्या है जो माने खेत छोड़ने को कहा है। उन बच्चों ने चिड़िया से पूछा कि आपको कैसे पता कि वो अब आएगा ही आएगा, दो बार उसने और भी बोला था तब भी तो नहीं आया कोई। तो चिड़िया ने कहा कि देखो, पिछली दो बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट था, उसने दूसरों को कह करके अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और इसीलिए वो जरूर आएगा। और उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़कर के कहीं और चले गए। अगले दिन किसान आया, उसने अपनी कटाई शुरू कर दी। कहने का मतलब, दूसरों से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि तय समय पर खत्म हो और परफेक्शन के साथ में हो, वैसा ही जैसा आप चाहते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करता है। ये चीजें हमारे पापाओं से बहुत सीखने को मिलती हैं। अक्सर वो ताने मारने में कह देते हैं ना कि तुमसे काम करने से बेहतर है हम खुद ही कर लें। तो उसका रीजन भी यही है, क्योंकि जैसा काम वो चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। कभी आपने नोटिस किया है घर में ऐसा होता है, जो हमारे दादाजी होते हैं या बड़े लोग होते हैं, पापा जी चाचा जी, वो लोग हमसे काम करने को बोलते हैं, एंड ये बचपन में ज्यादा होता है। हमारा किया हुआ काम उनको पसंद ही नहीं आता है, कुछ ना कुछ कमी वो निकाल ही लेते हैं। मेरे दादाजी के साथ में ऐसा था, वो मुझे किसी काम के लिए बोला करते थे, मैं करता था, उनको पसंद ही नहीं आता था, चार कमियां निकाल के मेरा माथा खराब, एक तो काम करो ऊपर से इनकी मीन मेक सुनो, हर एक बात में कमी निकालने की क्या जरूरत है, कभी तो कोई अच्छा काम करा ही होगा ना मैंने। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, आज इतना बड़ा हुआ हूं, तो मुझे रियलाइज हुआ है कि वो हमको काम के लिए बोलते तो थे लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग थे, उनके हिसाब से थे, और मैं काम करता था मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो टेक्निकली तो यहां पर दोनों ही थोड़े थोड़े गलत थे। खैर, इस चीज को जज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को सिखाना भी जरूरी है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाल के, तो उनका वो वाला पॉइंट में भी रहा होगा। बट आप अगर जो चाहते हो कि आपका काम उसी तरीके से हो जैसा आप चाहते हैं, उतने ही परफेक्शन के साथ में, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम, तो आप खुद करिए या खुद उसकी जिम्मेदारी लीजिए, औरों को अपने सामने लगा करके काम करवाइए। तो बस ये ध्यान रखिए कि खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है, खुद के खाने से ही भूख मरती है, खुद के कपड़े पहनने से ही तन ढकता है। खुद पर डिपेंडेंट रहें, खुद से एक्सपेक्टेशंस रहें, दूसरों से उम्मीदें जितनी कम होंगी आपका दिल टूटने का चांस उतना कम होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। भरोसा करें तो खुद पे करें।

0: रेडियो।
1: आपके अंदर का टैलेंट क्या है ये सिर्फ आपको ही पता है। हमें किस काम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है ये सिर्फ आपको ही पता है। दूसरे जो लोग हैं वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के टैलेंट को तो आपको खुद ही पहचानना होगा। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दो कि आपको उस काम को कितना बेहतर से बेहतर तरीके से करना है या आप कर सकते हैं। प्लानिंग करो कितना क्रिएटिव तरीके से उस काम को कर सकते हो। देखो जो भी करो दिल और शिद्दत से करो, उसके बाद जमाना खुद ही आपके लिए तालियां मारेगा। लेकिन उससे पहले अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो।

0: Walk Talk Radio.
1: जिंदगी में अगर एक बार भरोसा टूट जाए ना, फिर चाहे आप लाख कोशिश कर लो, वो भरोसा आप दोबारा कायम या फिर जीत नहीं सकते। भरोसा किसी भी काम को लेकर हो सकता है। ऑफिस में बॉस का आपके ऊपर भरोसा, आपके लाइफ पार्टनर का आपके ऊपर भरोसा, खुद के सपनों को पूरा करने का भरोसा, किसी भी चीज को पाने का भरोसा। लाइफ में भरोसे की अहमियत अक्सर टूट जाने के बाद ही पता चलती है। इसीलिए लाइफ में आप कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, लेकिन भरोसा मत टूटने देना, भरोसे पर कायम रहना। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब सामने वालों को आपके भरोसे की अहमियत के बारे में पता चलेगा।
0: Walk down.

हाय, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिस पर दुनिया चल रही है, एक ऐसी चीज जो बड़े से बड़े झगड़े को यूं खत्म करा सकती है, एक ऐसी चीज जो अगर जो हारने वाला कर दे तो जीतने वाले का जश्न थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, एक ऐसी चीज जो रिश्तों को मजबूत कर सकती है। स्माइल की बात हो रही है, ये वो मुस्कुराहट है, इसमें इतनी ताकत है। हम कितने ही गम में हो, हम कितने ही परेशान हो, अगर जो हम स्माइल करेंगे तो जमाने को एक पॉजिटिव संदेश जाएगा। इनफैक्ट हम खुद भी अच्छा फील करेंगे, हमारा वो जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कभी परेशानी में मुस्कुरा के देखिए जनाब, रीजन हो तब तो जमाना मुस्कुराता है। सेलिब्रेट करिए, बहुत ही छोटी सी जिंदगी है, लेकिन अफसोस हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और कितनी छोटी है, इसका रियलाइजेशन हमको तब होता है जब हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हों में होते हैं। फिर जब हम काउंट करते हैं ना कि हमने क्या किया, तो समझ आता है कि क्या फायदा यार। एक बात बताओ, अभी आपको लगता होगा ना जो आपकी स्कूल लाइफ थी कितनी अच्छी थी यार, लेकिन स्कूल लाइफ में क्या करते थे हम? स्कूल लाइफ में हम इस लाइफ के आने का इंतजार करते थे कि हम जब पैसे कमाएंगे, हमारे पास में पैसा होगा, फ्रीडम होगा, हम जब चाहे दोस्तों के पास जा सकेंगे, उनके यहां पर रुकने के लिए हमें मम्मी पापा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम घूम सकेंगे, हमें तब ये चाहिए था। अब हमें वो चाहिए। हर एक फेज हसीन है, चाहे वो बचपना हो, चाहे वो जवानी और बैचलरहुड हो, या फिर शादीशुदा जिंदगी हो, हर चीज के अपने मजे हैं, हर चीज का अपना फील है। उस फील को महसूस करिए और मुस्कुराइए और खुश रहिए, हर पल को सेलिब्रेट करो। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं ये जरूरी नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आप दुनिया में हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि न जाने कितने सारे लोग नहीं हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आपको भरपेट रोटी मिल रही है, न जाने कितने लोगों को नहीं मिल रही है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में कुछ पैसा है, बहुतों के पास नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में अपने हैं, उनसे पूछिए जिनके पास में अपने नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में आपका लाइफ पार्टनर है, बहुत सारे लोग आज भी अधूरे जी रहे हैं। 50 रीजन है मुस्कुराने के और खुश होने के, और कौन से रीजन चाहिए हमको? वो इमेजिनरी आर्टिफिशियल रीजन जो कि कुछ टाइम के लिए होते हैं, तो हम गलत हैं, हमको सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। मुस्कुराइए, बेवजह मुस्कुराइए, ठोकर लगे मुस्कुराइए, दुख हो मुस्कुराइए, कोई गलत करके जाए मुस्कुराइए, आपके साथ में गलत हो जाए मुस्कुराइए, आप अच्छा करिए मुस्कुराइए, आपके साथ में कोई और बुरा करके चला जाए मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी जो हंसी है, आपकी जो मुस्कुराहट है, ये आपसे है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है, यूनान के जो किंग थे वो किसी बात से अपने मंत्री से नाराज हो गए, और नाराजगी में उन्होंने मंत्री के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। कहा कि शाम को 6 बजे कैसे भी करके वजीर को फांसी दे देनी चाहिए। जब उनको फांसी की सजा दी गई थी, वजीर उस वक्त दरबार में नहीं थे। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जाकर के वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मानकर के सैनिक की एक टुकड़ी पहुंची वजीर के घर और उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए तो जाकर के देखा कि वहां पर तो एकदम जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का बर्थडे था, उसके घर पर रिश्तेदार थे, दोस्त थे, खूब चहल पहल थी, म्यूजिक बज रहा था, नाच गाना चल रहा था, पकवानों की खुशबू फैली हुई थी, कुल मिलाकर के माहौल बड़ा ही अच्छा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर दिया कि वजीर को आज शाम के 6 बजे फांसी दे दी जाएगी, और जैसे ही ये सुना, वहां पर जितने भी लोग थे वो हैरान रह गए। फौरन म्यूजिक रुक गया, नाच गाना रुक गया, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले सभी उदास हो गए। तभी कमरे में से वजीर की आवाज गूंजी, बोले, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने फांसी के लिए शाम के 6 बजे तक का वक्त दिया है, तब तक तो हम सब सेलिब्रेट कर सकते हैं, मेरा बर्थडे आज। और उसके बाद में दोस्तों और रिश्तेदारों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई और तुम जश्न मनाना चाहते हो। तो वजीर ने किसी तरह से सबको समझाया और एक बार फिर से जश्न शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, घर वालों को बुरा लग रहा था, लेकिन वजीर की खुशी के लिए सभी लोग जश्न में शामिल हो गए। म्यूजिक बजने लगा, डांस होने लगा, खाना पीना चलने लगा। ये बात सैनिकों ने सम्राट तक पहुंचाई। सम्राट पूरा माजरा समझने के लिए वजीर के घर पे पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि सब लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो भी हैरान। उन्होंने कहा, ये क्या है, तुमको पता है ना कि मैंने तुमको फांसी दी है, वजीर से उन्होंने पूछा, और तुम सेलिब्रेट कर रहे हो। वजीर बड़े ही अदब से बोला कि हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम के 6 बजे का मुकर्रर किया, और इस तरह से मुझे शाम के 6 बजे तक का वक्त मिल गया। अगर आप मुझे

जिंदगी बच गई। समझिए आप इस चीज को कि जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हालांकि ये जरूर है कि जिंदगी में कई एक बार ऐसा वक्त आता है जबकि बहुत ज्यादा मुश्किलें हमारे सामने होती हैं, हम परेशान हो जाते हैं और ऐसे में हम जिंदगी जीना छोड़ देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मुश्किलों से हारे नहीं, मुस्कुराहट के साथ में उनका सामना करें। जो भी समय आपके पास में बहुत लिमिटेड है उसका पूरा सदुपयोग करें, जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, ये हमेशा ध्यान रखें। पिज्जा घर में आता है तो जम के खाते हैं ना उसको एंजॉय करके। वैसे खत्म होने से पहले जिंदगी को भरपूर जी लो, आपके हिस्से की जिंदगी कोई और नहीं जी सकता और ये मुश्किलें तो आती रहेंगी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट ये मुस्कुराहट गई या रो करके आपने वक्त गुजारा उसका कोई सेंस नहीं है। एक दिन जाना सब नहीं है तो उसको लेकर के परेशान होने का क्या मतलब। वो होता है ना जब हम किसी ऐसे इंसान से आखिरी बार मिलते हैं जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, और हमको पता है कि अब इससे दूर होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, तो जो भी कुछ लम्हे हैं उनको हम भरपूर जी लें, या तो उसके साथ में या फिर परेशान होकर के रो करके बिता दें, हमारे ऊपर है। बेहतर ये होगा कि जो भी लम्हे उसके साथ में मिले हैं उनको भरपूर जिया जाए, प्यार के साथ में सारे अरमान पूरे किए जाए, क्योंकि रोना तो बाद में भी है ना, उससे दूर जाने के बाद में। बस वैसे ही जो भी लम्हे आपके पास में हैं उन्हें भरपूर जिए, ये बहुत जरूरी है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, लाइफ में बैलेंस रहना है तो सबसे पहले तो अपने खुशी और गम के इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। जैसे जब हमारा कोई काम सही हो जाता है तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वहीं अगर हमारा काम खराब हो जाए तो इतना बुरा लगता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं। बस यही तो वो गलती है जो हम अक्सर कर बैठते हैं। अगर हम इन इमोशंस को कंट्रोल करके अपने काम पर कंसिस्टेंट रहें तो हम और हमारी कामयाबी कहीं नहीं अटकती। तो बैलेंस्ड रहिए और सुकून में रहिए।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: घायल तो यहाँ पर हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जी हाँ, चोट किसको नहीं लगती, फेलियर कौन नहीं होता, जिंदगी में परेशानियां किसकी लाइफ में नहीं आती, लेकिन उन सब का सामना करके, उसका एक्सपीरियंस करके, अपनी गलतियों से सबक लेकर जो फिर एक नई तैयारी के साथ उठता है, फिर आगे बढ़ता है, वही इंसान है।
0: Walk Talk Radio.
2: Yeah, be cool, Ross, baby. Lost in your love.

यार बैठे नाड़ दिंदा नहीं अटेंशन मैं कोई परी महफिल च तेरा ही ख्याल लेंदे आ।

0: रेडियो।
1: जिंदगी बड़ी आसान है, लेकिन इसको जीना कैसे है, बस उसको सीखने की जरूरत है। कई प्रॉब्लम्स भी आएंगी और कई खुशियां भी आएंगी, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, बस इसको सीखने की जरूरत है।

देखो दोस्त, अगर किसी को कुछ देना हो ना, तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते।

धोखा भी तो उसी को मिलता है जो इजिली दूसरों पर भरोसा करता है। बिना किसी को जाने पहचाने किसी पर विश्वास करना जरूरी नहीं है कि आपके मुंह के सामने तारीफ करने वाले पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करें। इसीलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उस इंसान के बारे में जानना पहचानना बहुत जरूरी है कि वो इंसान वाकई आपको समझता है या फिर आपको यूज कर रहा है। और जिस दिन आप ये जान लोगे आप खुद को कभी भी कोसोगे नहीं।

0: वॉक टॉक,
1: छोटी सी है जिंदगी, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। कोशिश ये करिए कि अपनी लाइफ के हर पल को खुशनुमा बनाइए, लेकिन ये कैसे होगा जब आप अपने माइंड को टेंशन फ्री रखेंगे। तो जो भी टेंशन आपकी लाइफ में चल रही है, उनका सलूशन ढूंढ के उनको खत्म करिए और लाइफ को खुश होकर जी लीजिए।

0: परिवर्तन और संघर्ष से डरने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। परिवर्तन इस संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, सुबेरे हुई है शाम होगी, कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदलती। लेकिन अगर हम हार्डकोर हो जाते हैं, किसी बात पे अड़ जाते हैं, तो दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है, बदलिए और देखिए, आप खुद नहीं बदलेंगे, आप अपने आसपास की सिचुएशन को भी बदलने का मौका देंगे। संघर्ष से डरना, पीछे रह जाना, हमेशा डरते रहना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हिम्मत करिए और फेस करिए अपनी उस प्रॉब्लम को, ऐसा फेस करिए कि प्रॉब्लम भी आपसे डर जाए, और देखिए जिन चीजों से आपको डर लग रहा था वो कितनी आसानी से दूर हो जाती है। कोशिश तो करके देखिए।
1: वक्त

0: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है, बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद का है।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: हमारी जिंदगी में कई पल ऐसे आते हैं जब हम अपने किसी न किसी अपने से कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, पर पता नहीं क्या सोचकर नहीं कह पाते। पता नहीं क्या सोचकर हम रुक जाते हैं। झिझक हमारे अंदर रहती है कि अगर हमने सामने वाले को वो मन की बात कह दी तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। लेकिन इस सोच के चलते वक्त बीत जाता है, इंसान भी चला जाता है और रह जाता है तो सिर्फ एक रिग्रेट कि हमने तब वो बात क्यों नहीं कही, क्योंकि अब वो इंसान ना हमारे सामने है ना हमारे पास है कि हम उससे अपने दिल की बात कह दे। दोस्त, एक दिन हम सब अपनी अपनी चुप्पियों को लेकर ऐसे ही रह जाएंगे और हमारा सबसे आखिरी ख्याल ये होगा कि हमें उस वक्त बोल देना चाहिए था। तो झिझकिए मत, अपनी बात को बेबाकी के साथ रखिए और खुश रहिए।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: अगर आपकी लाइफ में जितना स्ट्रगल होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। राहों में बस कहीं तुम भटक मत जाना, चलते चलते कहीं तुम थक मत जाना। ठान लिया है ना अगर मंजिल को पाना, बस मुसाफिर बनकर चलते रहो, कदम से कदम आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि जिंदगी में स्ट्रगल जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। और हर इंसान सफल होने के लिए ही कड़ी मेहनत करता है, कड़ी धूप में चलता है।
1: Walk down.

0: ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।
1: मैं बॉडी बनाता हूँ तेरे लिए, मैं अंडे शंडे खाता हूँ तेरे लिए, मैं बाइक

जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।

तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज की दुनिया में बहुत से दोगले लोग पाए जाते हैं जो अगर आपके दोस्त बन जाए तो दुश्मनों की भी कमी नहीं महसूस होने देते। इसीलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से बचे रहें और हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं और आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: कोई नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, तू भीड़ से अलग चलकर दिखा।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।
0: वॉक टॉक

0: रेडियो।
1: प्रयास करने का एक सबूत होती हैं गलतियां। मेहनत पर एतबार करने वालों को अपने काम में खुदा नजर आता है। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा।
0: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: Walk Talk Radio.
1: उम्मीद कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत है।

पता है, बड़े बड़े लोगों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सबको इंस्पायर करती है। जैसे वो हमेशा आने वाले 10 साल की प्लानिंग पहले ही कर देते हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ जाना है वो पहले से ही पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। अगर यही क्वालिटी आपके अंदर या हमारे अंदर आ जाए, सोचो उसके बाद क्या होगा। जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करे हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, उनके अंदर भी तो यही क्वालिटी थी।

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

0: कभी सोचा है कि हम चैलेंजेस लेने से क्यों घबराते हैं? नहीं दोस्तों, नॉलेज कभी भी एक दायरे में रहने से नहीं बढ़ती, नॉलेज तो एक्सपेरिमेंट से बढ़ती है। तो अगर आपके पास चैलेंज फेस करने का मौका मिलता है तो घबराए नहीं, क्योंकि उन्हीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके ही आप वो गेन करेंगे जो आप दुनिया को बता पाएंगे, दुनिया को प्रूफ कर पाएंगे। याद रखें कि ज्ञान हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ता है, ना कि चुनौतियों से दूर भागने से। और हो सकता है कि आपका कमाया हुआ यही ज्ञान कल के दिन किसी और के काम आ जाए।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक रेडियो। योर फर्स्ट वर्कआउट विल बी बैड, योर फर्स्ट पॉडकास्ट विल बी बैड, योर फर्स्ट स्पीच विल बी बैड, योर फर्स्ट वीडियो विल बी बैड, योर फर्स्ट एनीथिंग विल बी बैड, बट यू कांट मेक इट 100 विदाउट मेकिंग योर फर्स्ट। सो पुट एवरीथिंग असाइड एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, नो मैटर वॉट हैपेंस, नो मैटर वॉट द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी, जस्ट कीप डूइंग इट विदाउट द फियर ऑफ फेलियर।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk.
3: Walk Talk Radio.
4: मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से, जो आपका खुद पे होगा।
3: Walk Talk.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप किसी को अपना दुख बताओगे तो सामने वाला आपको अपना 4 गुना दुख बताएगा। इसीलिए किसी को अपने दुख बताने से बेटर है आप उन्हें खुद ब खुद सॉल्व करें, तभी आप खुश रह पाओगे।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: दोस्तों, हर दिन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा काम करूं, कौन सा छोड़ दूं। करियर में आगे बढ़ते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि एक साथ हमें दो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं और तब ये मिक्स इमोशंस वाली सिचुएशन बन जाती है, जिसकी खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की कि दो अच्छे अवसर हमें मिले, दुख इस बात का कि दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। यहाँ कंफ्यूज होने के बजाय खुद पर भरोसा करके एक को चुन लो, क्योंकि दोस्त ऑप्शंस आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों आपकी काबिलियत से ही बनते हैं।
2: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी गप देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।
1: हमेशा रिश्तों की वैल्यू को समझना बड़ा जरूरी है। रिश्ते किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, भाई बहन का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, अपनों के साथ गहरा रिश्ता। उसकी वैल्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बुरे से बुरे वक्त में यही लोग काम आते हैं। यही है जो वाकई हमें अपना समझते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं। ऐसे रिश्तों की कद्र करना, वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लाइफ में इतना घुल मिल जाते हैं कि हमें समझ नहीं होती कि सही कौन है, गलत कौन है, अपने कौन है, पराए कौन है। जिनको हम अपना समझते हैं वो पराए निकलते हैं, और जिनको पराए समझते हैं वो कभी कभी अपना निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनों पर विश्वास करना और उनके साथ चलना बहुत ज़रूरी है।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: उम्मीद, कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है।

है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत है।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk.
3: Walk Talk Radio.
4: जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।
3: Walk Talk Radio.

0: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्रा, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: दूसरों की नकल कब तक करते रहोगे, दूसरों का हाथ पकड़कर आखिर कब तक चलते रहोगे। अगर लाइफ में खुद का कुछ करना है ना, तो खुद का एक रास्ता बनाए कि तुम्हें चलना कहाँ है और तुम्हारी मंजिल कहाँ है।

0: आपके पहले जोश भरे कदम से पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
4: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
3: वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio. Walk Talk.
2: Walk Talk Radio.
3: नाम उन्हीं का होता है जो बस्ती से निकलकर हस्ती बन जाते हैं। आप कहीं भी हैं, ये मत सोचिए कि मैं लो बैकग्राउंड से हूँ।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: ये है वॉक टॉक रेडियो,
4: वॉक टॉक रेडियो,
3: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ,
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
5: जिन लोगों को दूसरे के सुनने की आदत नहीं है, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं, आपको आगे बढ़ते देखने में बाकी हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको भटकाने की, तो आपसे मेरा यही कहना है कि सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो दोस्तों, क्योंकि यहां टांग खींचने वालों की कमी नहीं है।
3: Radio, tune in for a better life.

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk. ये है Walk Talk Radio. Walk Talk
1: Radio. दोस्तों, जिंदगी के हर पड़ाव में कुछ ना कुछ जरूर होना तय है। अब वो अच्छा होगा या बुरा, ये किसी को नहीं पता होता। लेकिन ये सोचकर हम आगे बढ़ना बंद तो नहीं कर सकते, इसलिए आगे बढ़ते जाइए। क्या पता बुरे दौर में भी क्या ऐसा हो जाए जो आपको कुछ अच्छे की तरफ मोड़ दे। दौर बुरा हो या अच्छा, हौसला मत हारिए। वक्त ही तो है, एक दिन सबका बदलता है।
0: Tune in for a better life.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।
2: पुराने दोस्त और स्कूल के दिन काफी प्रीशियस होते हैं हमारी जिंदगी में। स्कूल जहाँ से हमारे नए सफ़र की शुरुआत होती है, नए दोस्तों से मिलना, जहाँ हम ढेर सारी मस्तियाँ करते हैं, जहाँ हम हंसते भी हैं, खेलते भी हैं और सीखते भी हैं। लाइफ में चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें आज भी पता है हर सब्जेक्ट के टीचर का नाम, कौन सा टीचर हमारा फेवरेट था और किससे हमें सबसे ज़्यादा डांट पड़ती थी, किस किस तरह से गेम्स हम खेलते थे, हमारे स्कूल के दोस्त, वो सारी चीज़ें हमें हमेशा जो है याद रहती है। जिंदगी में सब कुछ आगे निकल जाता है, लेकिन स्कूल के वो पल हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं।
3: वॉक टॉक रेडियो।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो,
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: आपके पहले जोश भरे कदम से पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी।
4: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए। रुकना और वापस जाना, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए।

0: रेडियो।
1: जैसे को तैसा, ये कहावत हम सब ने सुनी होगी, लेकिन जरा खुद सोचो, अगर हम रियल लाइफ में भी ऐसा ही करें तो हम में और उस इंसान में जिसने हमारे साथ गलत किया है क्या फर्क रह जाएगा। ये जिंदगी बहुत छोटी है जनाब, माफ करना सीखो। एक इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी है माफ करना, और वो भी तब जब वो खुद सही और सामने वाला गलत हो। तो जैसे के साथ तैसा नहीं, बल्कि उसे माफ करो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो।
0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ही ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। Persistence over perfection is very important. अगर मैं आज persistent हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ, rather than being perfect, I think results आएंगे after some time. मुझे पूरा भरोसा रहता है if I am persistent. और perfection को अगर हम obviously कई days पे हमारा perfect output आता है, कई days पे थोड़ा कम अच्छा output आता है, कई days हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम humans है, सबके साथ होता है। But then रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर। अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं। सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है, तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम, देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग। सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं। देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज।

रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग। तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो। इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड। हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर। एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटिफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स। देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं, हमने reusable cloths जो कि जूट है वो maximum जगहों पे use करा। then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures, हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए। vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने banana leaves use किए, हमने jute use किया instead of flex। तो इस तरीके से हमने उनकी wedding को justice करने का try किया। this is one example of how we take inputs from the couple's personality and try to curate something out of it। Walk Talk Radio।

0: Walk Talk Radio.
1: मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से, जो आपका खुद पे होगा।
0: Walked up.

0: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। किसी भी ह्यूमन बीइंग का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है मेरे हिसाब से। जब व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तब मेरी मदर मेरे को खाना बनाना कहती थी कि सीखो एंड यू शुड नो हाउ टू कुक। मैं उन पे बहुत गुस्सा हुआ करती थी कि यू नो मम्मी आप भाई को क्यों नहीं कहते, आप मुझे ही क्यों कहते हो कि खाना बनाना सीखो। उस टाइम मैं बहुत गुस्सा हुआ करती थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग अवे फ्रॉम माय हाउस आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड फॉर योरसेल्फ। जितना यू नो तुम बाहर पैसा वेस्ट करते हो खाने पे, वो कितना बचता है इफ यू कुक योरसेल्फ। तुम कहीं पहाड़ों में कहीं अनकन्वेंशनल जगह पे चले जाओ, इफ यू हैव द बेसिक रॉ इंग्रेडिएंट्स तुम अपना पेट भर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से इंडिपेंडेंट होना एंड अपनी लाइफ को सस्टेन करना, खुद कमाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खुद के लिए खाना बनाना है। क्योंकि यू नो इतने सारे हम इंसिडेंट सुनते हैं जिसमें यू नो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है एंड यू नो फीमेल्स को अपने गांव से बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा। मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि अगर मैं एक भी फीमेल की लाइफ ऑल्टर कर पाऊँ वो मेरे लिए एक बहुत पुण्य का काम होगा। मेरी टीम में भी अगर आप देखें देर आर 80-90% फीमेल्स इन माई टीम, और उस चीज को अगर हम ध्यान में रखें और हम फीमेल्स को सपोर्ट करें, अपलिफ्ट करें, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि फीमेल रन ऑर्गेनाइजेशंस और फीमेल लेड ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेल रन। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ रिसर्च कि हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता है।
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: रॉक टॉक।
1: जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम नहीं बढ़ाते। अगर आप कहीं जा रहे हैं और सोचे कि बहुत दूर है और वहाँ के लिए आप निकल ही ना पाओ, तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम ही सही अपने एम की तरफ बढ़ाते हो, तो धीरे धीरे करके रास्ता पार हो ही जाएगा।
2: Tune in for a better life.